हर कोई कहता है कि ईश्वर नजर नहीं आता, लेकिन सच तो ये है कि संकट के समय कोई साथ नहीं देता, तब किसी न किसी रूप में भगवान ही साथ देता है। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: हरे कृष्णा, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा। आज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि भगवत गीता एक बहुत सुंदर चीज हमें बताती है। ये हमें बताती है कि आप जीवन में कभी भी आपका रिजल्ट आपके कंट्रोल में नहीं है, परंतु हमारे साथ एक छोटी सी परेशानी है कि हम रिजल्ट के लिए ही कार्य करते हैं और इसीलिए आगे जाके फ्रस्ट्रेशन मिलता है। जैसे कि किसान अपना खेत में बीज बो सकता है, परंतु वो

वर्षा नहीं ला सकता। इसीलिए हम अपने कर्म को बहुत ईमानदारी से कर सकते हैं, परंतु जो रिजल्ट है वो भगवान फाइनली हमें देते हैं। इसीलिए मैं आपसे एक छोटी सी बात कहूंगा, इसको हमेशा याद रखें कि डू योर बेस्ट एंड लेट कृष्णा डू द रेस्ट। हरे कृष्णा।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: हाय, मैं हूं रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: सुंदर स्त्री हीरा है, लेकिन नेक स्त्री हीरो का खजाना है, ये कहना है शादी का। नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। मैं हूं गगन और प्रोग्राम है शारदा सवेरा।

0: भाई, भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
0: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
2: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
1: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

गुस्ताखी माफ हो, अगर कोई अंग्रेज अफसर आता है तो आप बीलो मील भागे चले जाते हो तो मिलने के लिए, आप आगे आगे और मैं पीछे पीछे, कहीं ऐसा ना हो कि बाबा को मिलने के लिए मैं आगे आगे और आप

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: हरे कृष्णा, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। भगवत गीता हमें स्वास्थ्य के बारे में भी एक बहुत सुंदर बात बताती है। स्वस्थ शब्द का अर्थ क्या है? स्व में स्थित होना। इसीलिए अगर स्वास्थ्य सही से समझना है तो स्व की परिभाषा को समझना आवश्यक है। भगवत गीता हमें बताती है कि जो हमारा शरीर है ये एक समय बाद समाप्त हो जाएगा। इसीलिए ये शरीर हम नहीं है, ये केवल एक गाड़ी है और इसके ड्राइवर हम हैं, जो कि आत्मा है। अर्थात कि हम स्व से समझ सकते हैं कि स्व हम आत्मा के प्रकार हैं। सो भगवत गीता हमें बताती है स्वास्थ्य की सही परिभाषा। स्वास्थ्य अर्थात स्व में स्थित होना। स्व में स्थित होने के लिए हमें स्व को जानना बहुत आवश्यक है। स्व अर्थात मैं। अब ये मैं क्या है? अगर मैं को शरीर माने तो एक दिन ये शरीर समाप्त हो जाएगा। मैं को मन बुद्धि माने तब भी जीवन के समाप्त होने पे ये समाप्त हो जाएंगे। परंतु अगर इस स्व को हम आत्मा माने, जो कि कभी जिसका नाश नहीं होता, ऐसी आत्मा सही में स्व है। तो स्व में स्थित होने का अर्थ है कि हम आत्म साक्षात्कार के लिए कार्य करें। अर्थात कि अपने को जीवन के कर्तव्यों के साथ साथ अपनी आध्यात्मिक चेतना पर भी कार्य करें। इससे हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे, तनाव से मुक्त रहेंगे। हरे कृष्णा।

कैसे शुक्र करूं तेरी रहमतों का ऐ खुदा, मुझे मांगने का सलीका नहीं है पर तू देने की हर अदा जानता है। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर शारदा सवेरा।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: सो वेयर आर यू, द वर्ल्ड इज हियर एट शारदा University।
5: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।
4: राम राम दोस्त राम, सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ, वो गगन जो हमेशा गगन को छूने की बातें किया करता है, दिलों को जीतने की मैं कोशिश करता हूं अपने इस खास प्रोग्राम के माध्यम से। इसका नाम है बिंदास सुबह, बिंदास बोल, बिंदास बातें। मंडे टू सैटरडे सुबह 9 से 10 लाइव में रहता हूं आपके साथ और हमेशा कहता हूं कि सुरक्षित चले, सुरक्षित घर पहुंचे, सुरक्षित ऑफिस पहुंचे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। कहीं ना कहीं मैंने आज आपको इशारा कर दिया कि आज इसी विषय पर हम बात करने वाले हैं, विषय होगा रोड सेफ्टी। और जब रोड सेफ्टी का हम जिक्र करते हैं तो जिक्र होता है एक एक्सपर्ट का और जिक्र होता है जो इस क्षेत्र में महारत हासिल रखते हैं कि हम क्या करें क्या ना करें। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ रही है जो कि हरफन मौला हैं। आप हिंदुस्तान टाइम्स में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और रोड सेफ्टी के लिए बहुत बहुत बहुत काम किया है। खुश मिजाज इंसान है, हरफन मौला है, आप हैं अंकुर शरण जी। तो अंकुर जी, सुनो शारदा 90.8 FM पर आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम।
6: थैंक यू सर फॉर दिस अपॉर्चुनिटी एंड अ ग्रेट ऑनर।
4: थैंक यू सर, वेलकम। कैसा लग रहा है शारदा विश्वविद्यालय के इस आंगन में आकर? आपको
6: बहुत खूबसूरत सफर रहा, जब मैं एंटर किया इस कैंपस में लिटरली दिल खुश हो गया, क्योंकि जिस तरीके से ये यहाँ का वातावरण आप लोगों ने बनाया है, स्पेशली जो ग्रीन एनवायरमेंट आप लोगों ने जो क्रिएट किया है, दिस इज रियली अमेजिंग एंड ऑसम। ऐसा जस्ट कि अंकुर, तो भाई मैं तो पर्यावरण से बहुत जुड़ा हुआ हूँ और मैं चाहूंगा कि पर्यावरण से हर कोई जुड़े और कहीं ना कहीं अपना योगदान देता रहे।
4: माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात कम शब्दों में आपने रख दी और मैं इस बात को आगे लेकर जाना चाहूंगा। प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि एक पौधा अपने माँ के नाम जरूर लगाइए, इस धरा को हरा भरा करिए। और जब इस तरीके से इस आंगन का जिक्र हो रहा है, इस प्रांगण का जिक्र हो रहा है, तो जिक्र करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि हमारी जो टैग लाइन है सर, टैग लाइन ये है कि वेयर आर यू द वर्ल्ड इज हियर। और यही वजह है कि यहाँ बड़ी बड़ी फिल्मों की शूटिंग होती ही रहती है। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑन सुरशाद 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। और आज स्टूडियो में मेरे साथ एक खास मेहमान है। हिंदुस्तान टाइम्स में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वहां पर आप सर्विस कर रहे हैं और सर्विस कर रहे हैं जन सेवा यानी कि रोड सेफ्टी पर बहुत धरातल पर आप काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं इनके साथ जुड़ा हुआ हूं। आप हैं अंकुश शरण जी। और अंकुश शरण जी, एक लाइन है, बड़ी खूबसूरत लाइन है कि ए भाई जरा देख के चलो। ये लाइन है कहीं ना कहीं रोड सेफ्टी पर सटीक बैठती हैं। क्या कहना चाहेंगे रोड सेफ्टी के बारे में?
1: देखिए, रोड सेफ्टी एक अभिन्न अंग है हम सब का। हम चाहे जहां से भी आते हैं, जिस समाज को भी हम बिलोंग करते हैं, हम चाहे विद्यार्थी हैं, चाहे हम बुजुर्ग हैं, कुछ भी है, आप सब सड़क को यूज करते हैं। तो मुझे लगता है कि सड़क पे चलते हुए हमें हमेशा ध्यान में तो रहना चाहिए, साथ ही साथ बहुत जरूरी है कि रोड सेफ्टी की प्राथमिकता को हमें नजरअंदाज कभी भी नहीं करना चाहिए। चाहे हम स्कूटर चला रहे हो, टू व्हीलर हो, चाहे फोर व्हीलर हो, हम लोग देखते हैं कि लापरवाही कि हम लोग ने जिस एटीट्यूड में हम लोग रहते हैं, तो उसी एटीट्यूड के साथ अगर हम रोड पे चलते हैं तो डेफिनेटली उसका खामियाजा

अलार्म आपके दिमाग में घंटी बजेगी, नहीं यार मुझे ओवर स्पीड में नहीं चलना है, क्योंकि ओवर स्पीड में चलेंगे तो निश्चित तौर पर हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई घटना दुर्घटना हो जाएगी। और जब आप अपनी फैमिली के बारे में सोचेंगे तो आपको याद रहेगा कि नहीं, सुरक्षित चलना है, सुरक्षित घर या सुरक्षित ऑफिस पहुंचना है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑन योर सुरशादा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ।

0: एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। यह है ग्रेटर नोएडा का आपका अपना रेडियो स्टेशन। रेडियो स्टेशन एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन होने के नाते समुदाय की बातें करते हैं, ज्ञान विज्ञान पढ़ने पढ़ाने जिंदगी को जीने की बातें करते हैं और बातें करते हैं रोड सेफ्टी के बारे में। ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में जान लेना समझ लेना बहुत बहुत बहुत जरूरी है। एक छोटी सी गलती की वजह से एक्सीडेंट हो जाता है, आपका अंग भंग हो जाता है या कभी कभी आपकी मृत्यु तक हो जाती है। इस विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हुए हैं हिंदुस्तान टाइम से आप हैं अंकुर शरण जी। तो अंकुर जी एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद
0: सर। अभी मैंने जिक्र किया कि अंग भंग हो जाता है, कभी कभी मृत्यु तक हो जाती है, तो ऑन ग्राउंड में अगर बात करूं आपसे धरातल पर मैं जानूं कि किस तरीके हालातों को आप देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे और किस तरीके से लोगों को ध्यान रखना चाहिए।
1: देखिए हम लोगों ने रोड सेफ्टी के ऊपर बहुत काम किया है और शासन प्रशासन के साथ मिलकर जो भी हो सकता है हम लोग उसकी अवेयरनेस कैंपेन्स तो कर ही रहे हैं, लेकिन अब क्या है कि उसे धरातल पर लाना बहुत ज़रूरी हो गया है। हम लोग को चाहिए कि जो भी बातें हम लोग को बताई जाती है समझाई जाती है उन्हें हमें अपने दैनिक जीवन में उतारना है। वो सिर्फ

0: लिखित बातें या कोरी बातें नहीं है, उसे हम जितना ज्यादा गंभीरता से लेंगे अपनी लाइफ को हम बहुत अच्छी तरीके से चला सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी बीमारियां जो होती हैं उसका तो इलाज है, लेकिन हादसों का कोई इलाज नहीं है। उनका सिर्फ बचाव है कि जब हम सतर्क रहेंगे तो अपने आप को बचाएंगे। क्योंकि हम लोग ने देखा है कि जिस समय कोई भी एक्सीडेंट होता है, उस समय जो प्राइम टाइम जो होता है हम लोग का, राइट, गोल्डन आवर, उसके अंदर क्या हम
1: मॉर्निंग और इवनिंग टाइम,
0: नहीं, जो भी एक्सीडेंट हुआ उसके एक घंटे के अंदर,
1: अच्छा उस प्राइम टाइम की बात,
0: प्राइम टाइम, ओके, तो जो गोल्डन आवर होता है वो बहुत जरूरी होता है। लेकिन अब हम लोग क्या होते हैं कि भागा दौड़ी में इतने ज्यादा हो चुके हैं, हमें ध्यान ही नहीं रहता। तो आज चाहे हम किसी के ऊपर भी दोषारोपण करें, सबसे पहले हमें अपने ऊपर देखना है, अपनी स्पीड पे लगाम लगानी है, हमें समय पर पाबंद होके काम करना है। साथ ही साथ हमें ये देखना है कि हम मूक बधिर होके ना चले। मैं हमेशा से एक रोड सेफ्टी स्क्वाड बनाने से पहले मैं खुद एक वॉलंटियर रहा काफी समय तक। जब भी कभी मैं देखता रोड पर कोई एक्सीडेंट हुआ, तो जाने अनजाने मुझे, अगर मैं नहीं भी जानता हूं उनको, तब भी मैं अपनी गाड़ी से साइड लगाकर देखता। अगर गंभीर है तो इमिडिएटली फोन कर दिया। अगर दिल्ली एनसीआर के अंदर है तो हम लोग के पास एक अपनी टीम है, हम लोगों ने उस पर फोन करके ट्रैफिक के, हम लोगों ने अपने ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप्स बना रखे हैं नोएडा का, फरीदाबाद का, गुड़गांव का, एनसीआर लेवल का, कि जिसमें डीसीपी ट्रैफिक से लेकर हर वो आला अधिकारी जो भी ट्रैफिक से जुड़ा है वो उसके अंदर लोग जुड़े हुए हैं, ताकि हम लोग स्पीड में तुरंत कहीं पे भी कोई एक्सीडेंट होता है या कहीं ऐसा जाम लग जाता है जो कि अननेचुरल है
1: जी,
0: तो उसके बारे में भी तुरंत हम लोग बता देते हैं ताकि उसके ऊपर इमीडिएट एक्शन लिया जा सके।
1: क्या बात है। लिसनर्स, कहने का आशय यही है कि इसका अगर मैं क्रक्स निकालूं, इसका एक सारांश निकालूं, तो उस वक्त आप देख हुए अनदेखा न करेगा। हो सकता है कि बड़ा पछतावा होगा जब आपको पता चले कि उस वक्त जो एक्सीडेंट हुआ था आपने वहां देखा नहीं, मदद नहीं की, वो आपका कोई सगा संबंधी था, जिंदगी भर एक पछतावा रह जाता है। लेकिन आप देखिए और तुरंत पुलिस को सूचित करिए, पुलिस आपको परेशान नहीं करेगी, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक आदेश है कि पुलिस आपको परेशान नहीं करेगी। और दूसरी बात, आज मैं देख रहा हूं वर्तमान समय में सरकार प्राथमिक उपचार के लिए खर्च भी कर रही है, जो इस तरीके रोड एक्सीडेंट्स के केसेस तुरंत पहुंचते हैं क्योंकि कोई सगा संबंधी उस वक्त वहां होता नहीं है। अंकुश शरण जी, जो कि एक एक्सपर्ट के तौर पर रोड सेफ्टी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, इसके बारे में बातें करेंगे जरूर, मगर एक छोटे से अंतराल के बाद। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑन सुरशादा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। और स्टूडियो में मेरे साथ एक खास मेहमान के तौर पर जुड़े हुए हैं, आप हैं अंकुश शरण जी। बहुत अच्छे एक पत्रकार के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, रोड सेफ्टी के साथ जुड़े हुए हैं, हिंदुस्तान टाइम्स से एक नामी गिरामी आपका ये अखबार, उससे आप जुड़े हुए हैं। तो सर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया।
0: रोड सेफ्टी के बारे में आपने जिक्र किया था कि लोग मूक बधिर यानी कि चुप हो जाते हैं, आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं, कुछ एक्शन नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से पछतावा होता है कि काश मैं उस वक्त उस व्यक्ति की मदद कर देता जो कि मेरा सगा संबंधी था। जब ये शब्द आता है तो लोग दिमाग की बत्ती जलती है। मैं ये जानना समझना चाहता हूं कि ये एक्सीडेंट्स होते ही क्यों हैं, क्या एक वजह है कि हम सबको पता है कि ये हमारी एक लिमिट है, उस लिमिट को हम क्रॉस कर जाते हैं। ओवरटेक आप कर रहे होते हैं, हम कर रहे होते हैं, लेकिन हम अपनी लेन से ही क्रॉस कर रहे होते हैं। हम लोगों को देखते हैं कि रैश ड्राइविंग कर रहे होते हैं, इधर उधर से वो गाड़ी को ओवरटेक कर रहे होते हैं, एक्सीडेंट्स के बहुत ज्यादा केसेस हमारे सामने आते हैं। तो आपका अनुभव क्या कहता है?
1: देखिए, सबसे पहली बात तो है नेग्लिजेंस। ये एक ऐसा वर्ड है कि जो एक तो लैक ऑफ डिसिप्लिन एंड नेग्लिजेंस, इसी वजह से सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। हमें जब पता है कि आपके ऑफिस का टाइम 9 बजे है और आपके घर ऑफिस घर से ऑफिस पहुंचने में आपको 1 घंटा लगना है, तो आप 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा पहले आप निकलिए,
0: क्या बात,
1: ताकि आप उस जो पीक आवर्स है उससे बचा जा सके। अब लोग क्या करते हैं कि अक्सर मैंने देखा है कि लोग पहले तो लेट निकले और उसके बाद फिर वो सोचते हैं कि हम स्पीड पे ओवर स्पीडिंग करके, और क्योंकि जैसे फरीदाबाद से अब गुड़गांव जाते हैं तो पहाड़ी का रास्ता है, राइट, उस पे 60 से 80 स्पीड अलग अलग जगहों पे बनाई हुई है, लेकिन लोग अक्सर उस पे बहुत स्पीड में जाते हैं। अब क्या है कि उससे एक तो वो वन अरावली वन क्षेत्र भी है, कई बार उसमें गाय भैंस इस तरीके से बंदर वहाँ पे बहुत होते हैं, अचानक से कोई आ गया और अक्सर हम लोगों ने वहाँ पे एक्सीडेंट होते हुए देखा है। तो हम लोग हमेशा यही कहते हैं कि भाई इन्फोर्समेंट को आप इतना मत उकसाओ कि वहाँ पे स्ट्रिक्टनेस इस लेवल की कर दी जाए कि वो आप ही पे भारी पड़ जाए।
0: जी,
1: प्रशासन के तौर पर, क्योंकि हम लोग प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भी
0: जुड़े,
1: उनकी बातों को भी हम लोग लेकर आते हैं, क्योंकि इट्स अ जैसे कहते हैं ना, कॉइन के दो पहलू होते हैं, लाइक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उस तरीके से हम लोग ने ब्लेम तो तुरंत कर देते हैं कि भाई इनकी वजह से ये हुआ, लेकिन आप ये देखिए कि अगर हम सब डिसिप्लिन में अगर गाड़ी चलाएं, राइट, हमें ओवरटेक करने की बड़ी गंदी आदत है, और वही गंदी आदत जो है वो अब NCR से निकल के हम पहाड़ी क्षेत्रों में जब जाते हैं तो हम वही चीज करते हैं। तो सेम वे हम लोग की ये रडार पे हम लोग हमेशा देखते हैं लोगों को कि कौन कौन सी गाड़ियां अगर देहरादून के क्षेत्रों में गई हैं, तो हमारे पास वो सारा डेटा आता है कि देखिए सबसे ज्यादा NCR की जो गाड़ियां होती हैं वो जाके इस तरीके से कर देती हैं। तो हमें लगता है कि अभी डिसिप्लिन को मेंटेन रखना बहुत जरूरी है, थोड़ा पेशेंस रखिए और इन्फोर्समेंट खुद पे आप रखिए ताकि आप भी सुरक्षित रहें और सड़क भी सुरक्षित रहे।
0: क्या बात है, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात आपने हमारे लिसनर्स तक पहुंचा दिया। और बस हमेशा जब हम सारांश निकालते हैं, एक निचोड़ निकालते हैं, इस बात का सारांश या यूं कहें कि निचोड़ यही है, यकीन मानिए कि आपकी फैमिली, आपके माँ बाप भाई बहन, आपके छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे इंतजार कर रहे होते हैं दरवाजे पर। जब एक दस्तक होती है वो खुश हो जाते हैं कि मम्मी मम्मी पापा आ गए, लेकिन जब खबर आती है कि आज उस व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है और इस वजह से उसकी मृत्यु हो गई है, तो बहुत बहुत बहुत बुरा लगता है। ईश्वर के वास्ते, खुदा के वास्ते, जिनसे भी आप बेपनाह मोहब्बत करते हैं, और अक्सर से दो लाइनें मैं खुद कहा करता हूं कि ये जो जान है दरअसल आपकी जान नहीं है, इस जान पर आपके माँ बाप भाई बहन सबका हक है, तो उनकी जान की खातिर अपनी जान का ख्याल रखिए, तो निश्चित तौर पर सब अच्छा होगा, बेहतर होगा, सुरक्षित चले, सुरक्षित घर, सुरक्षित ऑफिस पहुंचे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड, ऑल योर सुरशादा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ।

0: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। विद मी मेरे यानी गगन के साथ सामुदायिक रेडियो स्टेशन का फर्ज यही है कि समुदाय में हमारे आसपास क्या खास हो रहा है उन बातों को हम जन जन तक पहुंचाएं। रोड सेफ्टी एक ऐसा विषय है जिसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है, लेकिन जाने अनजाने में लोग ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिसकी वजह से जिंदगी भर एक पछतावा रह जाता है कि काश मैंने यातायात के नियम कायदे कानून का अच्छी तरीके से पालन किया होता तो आज मैं सुरक्षित होता या अंग भंग नहीं होता। ये सारी बातें जिनको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। रोड सेफ्टी एक ऐसा विषय, इस विषय पर बात करने के लिए अंकुर शरण जी हिंदुस्तान टाइम्स से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो सर, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू सर।
0: ऑन रोड जब मैं देखता हूं तो मुझे पता है कि राइट हैंड की जो लेन है वो कार के लिए है। ओवरटेक करना है तो राइट हैंड से हम करें
1: जी।
0: लोग गलत दिशा से ओवरटेक कर रहे होते हैं। इसके विपरीत भी सर हमने ये देखा है कि बसें जो लेफ्ट में चलनी चाहिए थे या ट्रक भी लेफ्ट में चलना चाहिए था वो राइट हैंड में जाके चल रहा है। कैमरास लगे हुए हैं। शायद मैंने जो अनुभव किया है कि हम या पुलिस प्रशासन इंतजार करता है कि मेरे पास कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई है, कंप्लेन नहीं हुई है, या यूं कहें कि कभी कभी वो स्वतः संज्ञान लेते हैं। चूंकि आप रोड पर काम कर रहे हैं, आपका अनुभव वही बात निकलकर सामने आती है कि ये जो आपका एक्सपीरियंस है इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे, ये सही है गलत है या क्या सुधार की आवश्यकता है?
1: देखिए, हम लोगों ने सुना है ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण देने की जरूरत नहीं होती।
0: सही कहा।
1: हम लोग जब तक गाड़ी चला रहे हैं अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते हैं, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जिस दिन आप सोचिए हजारों लाखों गाड़ियां रोड पे दौड़ रही होती है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई गाड़ी भिड़ती है
0: जी,
1: एक्सीडेंट होता है
0: जी,
1: लोग लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं
0: जी,
1: उन सब को अगर हम लोगों ने जब देखा है तो सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि ओवरटेक अगर ये हुआ है, अगर गलत डायरेक्शन से हुआ है
0: जी,
1: तो पहले तो पेनल्टी उस इंसान के ऊपर आ जाती है कि जिसने ओवरटेक गलत तरीके से किया।
0: यानी कि जब एक्सीडेंट हुआ है तो सारा मतलब
1: ये सारा कुछ, क्योंकि एज पर जो रिकॉर्ड्स देखा जाता है, जब प्रत्यक्ष गवाही जब ली जाती है या एफआईआर दर्ज होता है, क्योंकि आप ये देखिए इंश्योरेंस आप लोग क्लेम करते हैं, अगर मैं मान लीजिए कि इंश्योरेंस वाला हूँ तो मैं भी तो देखूंगा ना कि भाई हमारी कंपनी अगर आपको इंश्योरेंस दे रही है तो कहीं आप गलत ड्राइव तो नहीं कर रहे हैं, कल आप वो मैल प्रैक्टिस में तो नहीं है कि आपने नशा किया हुआ है तो आप नल एंड वॉइड हो जाता है
0: जी।
1: गलत डायरेक्शन से आपने ओवरटेक किया तब वो नल एंड वॉइड हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसे ध्यान में रखने की जरूरत होती है। लेकिन आजकल क्या है कि हम लोगों ने अपना लाइसेंस बनवा लिया, हमारे हाथ में फोन आ गया, महंगी कारें आ गई, तो सोचा चलो अब तो ये रोड अपनी है।

0: रोड आपकी नहीं है, रोड एक समाज की है, समाज के भी आप अभिन्न हिस्सा हैं। जब हम लोगों ने देखा नितिन गडकरी साहब से जब मुलाकात हुई और एक युवा रोड सम्मेलन एक हुआ था उसके अंदर हमें उनसे मिलने का मौका मिला, तो वहां पे उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि देखिए हमारी सरकार ने बहुत अच्छे रोड्स तो बना दिए लेकिन इस पे चलने की जिम्मेदारी आप सबकी है,
1: बेशक
0: युवाओं की है।
1: बहुत सही।
0: अगर आपको बहुत रक्तदान देना है तो सड़क पे मत दें। हमारे साथ बहुत सारी ऐसी संस्थाएं जुड़ी हुई हैं जो कि आपसे रक्त मांग रही हैं। तरीके से दें ताकि किसी का भला हो सके। मेरे एक अजीज मित्र हेलमेट मैन ऑफ इंडिया राघवेंद्र जी,
1: जी जी,
0: उनकी भी कहानी ऐसी दिलचस्प है कि जब हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग आज दम तोड़ रहे रोड पर, तब उन्होंने किस तरीके से प्रतिबद्धता दिखाते हुए अपने एक जिगरी दोस्त की जब उनकी डेथ हुई ऑन रोड, उसके बाद उन्होंने उसको एक पॉजिटिव तरीके से लेते हुए देखा कि वो जो उनका दोस्त की डेथ हुई वो बिकॉज ऑफ वो हेलमेट उस समय नहीं पहने थे, वो इकलौते बेटे थे अपने माँ बाप के, और इस बात इस हादसे के बाद उन्होंने संकल्प लिया और आज वो हेलमेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से पूरे देश में प्रचलित हैं। और हम लोगों ने उनके साथ भी मिलकर रोड सेफ्टी स्क्वाड के साथ मिलकर बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज हम लोग प्लान कर रहे हैं, और अब आपके इस माध्यम से भी हम लोग चाहेंगे कि लोग सुरक्षित रहें। बस
1: क्या बात है, बहुत अच्छी चर्चा हो रही है लिसनर्स। मैं तो आशा करता हूँ कि बस ये छोटी छोटी बातें इनको नजरअंदाज ना करिए। माशाल्लाह जिंदगी बहुत बहुत बहुत खूबसूरत है। आप घूमना चाहते हैं, आप किसी शादी में शिरकत करना चाहते हैं, जिंदगी को आगे तक लेकर जाना चाहते हैं, अपने सपने को साकार करना चाहते हैं, तो भाई साहब ये तभी संभव होगा जब आप यातायात के नियम कायदे कानून का अच्छी तरीके से पालन करते हुए अपने गंतव्य अर्थात बोले तो डेस्टिनेशन पॉइंट पर पहुंचेंगे सुरक्षित, तो कहीं कोई दिक्कत परेशानी होगी नहीं। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। बातों का जो सिलसिला लगातार जारी है और एक अच्छे विषय पर हम बात कर रहे हैं और एक अच्छी बात हम बात करेंगे ब्रेक के उस पार, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि लोग रील के चक्कर में उनकी रेल बन जाती है। क्या है ये सवाल, जवाब क्या होगा, जानेंगे जरूर मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑल इन सुरशादा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ।

0: एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। रोड सेफ्टी पर आज हम बात कर रहे हैं और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ उपस्थित हैं रेडियो में हैं हमारे साथ हमारे अजीज दोस्त। हमारे साथ हैं अंकुर शरण जी जो कि हिंदुस्तान टाइम्स से ताल्लुक रखते हैं और रोड सेफ्टी पर धरातल पर प्रशासन से मिलकर प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो सर इस सराहनीय काम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत दिली दुआएं शुभकामनाएं आपके लिए।
1: बहुत बहुत शुक्रिया सर।
0: ब्रेक पर जाने से पहले मैंने एक सवाल आपके सामने छोड़ा था कि आजकल हम देखते हैं कि रील के चक्कर में लोगों की रेल बन जाती है, या तो वो एक साजिशन तौर पर ऐसा कर रहे होते हैं या उनको डर नहीं है कि सिर्फ 5,000 का चालान कटेगा या फिर 5,000 का चालान कोई बड़ी बात नहीं है, रील के चक्कर में मेरे पास व्यूज बहुत ज्यादा आएंगे, और कभी कभी ऐसी गलतियां कर जाते हैं कि उनके पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं होता, यूं कहें कि अंग भंग या वो खुद नहीं होते दुनिया में। क्या कहना चाहेंगे?
1: देखिए, व्यूज के चक्कर में दुनिया पागल हो रही है। अब अगर आपने रोड को भी आपने सोच लिया कि वहां पे भी हमें व्यूज लेना है, तो कहीं ऐसा ना हो कि आपका इंटरव्यू जो है वो अखबारों में छप जाए। अच्छे काम के लिए आप लोग छपें तो बहुत अच्छी बात होगी। तो युवाओं से एक ही एक अनुरोध है कि रील्स के चक्कर में ज्यादा ना पड़े। अगर आपको रील वाकई में बनाना है तो आप सड़क सुरक्षा के ऊपर बनाइए और बना के रोड सेफ्टी स्क्वाड को टैग कीजिए। हमारी संस्था है रोड सेफ्टी ओमनी फाउंडेशन, राइट, जो कि हरियाणा सरकार के साथ जुड़ी हुई है। बहुत सारा काम हम लोग फरीदाबाद, गुड़गांव, चंडीगढ़ में,
0: और आप कह सकते हैं गगन आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फरीदाबाद से मैं आता हूं।
1: आप तो हैं ही जुड़े।
0: थैंक यू सर।
1: तभी सर हम लोग को कोशिश रहती है कि हम युवाओं को किस तरीके से लीड बाय सेटिंग एग्जांपल्स दें। और अगर आप वाकई में अच्छी रील्स बनाना आपको आता है तो प्लीज क्यों ना आप सड़क सुरक्षा के ऊपर ऐसी रील्स बनाएं ताकि उसको हम अपने ऑफिशियल हैंडल्स पे डालें। हरियाणा पुलिस से लेकर ऐसे बहुत सारी संस्थाएं हैं जो आपकी चीजों को आगे प्रदर्शित करेगी और प्रॉपर चैनल्स के साथ प्रदर्शित करेगी, तो डेफिनेटली उसमें व्यूज भी मिलेंगे और आपको कहीं ना कहीं हम लोग सर्टिफिकेट्स और अवार्ड्स भी दिलवाएंगे।
0: क्या बात है, व्यूज भी मिलेंगे और आपकी न्यूज भी छपेगी अच्छी सकारात्मक दिशा में। सर वक्त का इशारा लगभग हो ही चुका है और मैं बहुत अच्छी अच्छी बातें रही, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि दोबारा जब भी आप इस तरफ आए तो जरूर आएगा, क्योंकि भाग दो हम करना चाहेंगे क्योंकि बातें बहुत ज्यादा है, समय मेरे पास कम है। एक छोटी सी वाकया को अक्सर हम लोग देख रहे होते हैं, आप भी हम भी, अननेसेसरी लोग क्या मानसिकता होती है उनको दिख रहा है कि वो 500 मीटर तक गाड़ियां खड़ी हुई हैं और पीछे से पैं पौ, यानी अनावश्यक तौर पर वो हॉर्न बजा रहे होते हैं। इस मानसिकता से लोग कैसे निकलें, कैसे वो अपने आप को एक सही दिशा में लेकर जाएं, उन लोगों के लिए या यूं कहें कि एक क्रक्स, एक संदेश क्या होगा हमारे लिसनर्स के लिए?
1: देखिए, मेंटल हेल्थ मैटर्स।
0: क्या बात है।
1: अगर आप मेंटली अनफिट हैं और अगर आपकी वजह से दूसरे परेशान हो रहे हैं तो निसंदेह लॉ ऑफ कर्मा आपको इस तरीके से वो मेंटल प्रेशर डाल देगा कि या तो आप गाड़ी चलाने लायक नहीं बचेंगे। और हम लोगों ने एक बड़ा सिद्धांत के ऊपर हम लोग काम करते हैं कि अगर आपने वाकई में एक इंसानियत दिखानी है तो आप वहां पे हॉकिंग का प्रयोग कीजिए जहां पे इसकी वाकई में आवश्यकता है। भारत में भी ऐसी बहुत सारी जगह है जहां पे बहुत ही डिसिप्लिन में लोग गाड़ी चलाते हैं और हॉकिंग, स्पेशली अगर आपको देखना है तो जाके आप चंडीगढ़ में जाके चलाइए गाड़ी, आपको समझ में आ जाएगा कि कितने तरीके से लोग वहां पे गाड़ी चलाते हैं।
0: सर ये दूर की बात आपने की है, अगर नियम कायदे कानून देखना है तो जनपद के आसपास देखें, सिर्फ वहीं नियम लगा।
1: आप ये देखिए कि अगर वही वाली बात है ना, स्ट्रिक्टनेस एंड एनफोर्समेंट, जब दिल्ली पुलिस आपके जब तत्पर खड़ी होती है, तत्पर है, तो आप बहुत ज्यादा
0: सीट बेल्ट लगा लेते हैं,
1: सीट बेल्ट खौफ में नजर आएंगे, डिसिप्लिन में रहते हैं, और ये डिसिप्लिन होना चाहिए,
0: होना ही चाहिए।
1: मैं तो ये चाहूंगा कि एनसीआर लेवल पे जहां पे भी अगर आपको पुलिस दिखती है, और पुलिस ही नहीं, आप खुद में कंट्रोल रखिए सारी चीजें, क्योंकि कोई देखे ना देखे ऊपर वाला देख रहा।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी चर्चा रही है सर आपके साथ और बहुत अच्छे आप वक्ता है। मैं तो ये कहूंगा कि आप इधर भी आकर, यानी कि एक ऐसे आरजे के तौर पर आप काम कर सकते हैं, क्योंकि वोकैबुलरी बहुत अच्छी, अच्छा ज्ञान है और अच्छी तरीके से कट टू कट बात आपने हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई है। कुछ और कहना चाह रहे हैं आप?
1: गगन जी, एक आपके माध्यम से मैं चाहूंगा जो भी लिसनर्स हैं, आज भारत को बहुत सारे वॉलंटियर्स की जरूरत है। लीडर्स तो हर कोई बनना चाहता है, लेकिन अगर आप सही माने में अगर वॉलंटियर बनते हैं और सड़क सुरक्षा के प्रति अगर आप जागरूक हैं भी और करना चाहते हैं, तो प्लीज आप शारदा को सुनिए 90.8 एफएम, और साथ ही में जो लिसनर्स आपको लगता है कि हाँ दे वांटेड टू बी पार्ट ऑफ आवर रोड सेफ्टी स्क्वाड, प्लीज डू कनेक्ट विद अस। हम लोग ट्विटर पे भी मौजूद है,
0: सो प्लीज टेल अस सर वो डिटेल्स क्या है, वो आईडी क्या है या कॉन्टेक्ट नंबर क्या है।
1: कि आप ट्विटर पे एक्स पे जाके रोड सेफ्टी स्क्वाड डालिएगा, हमारा पेज उसके अंदर आ जाएगा। साथ ही में जो लिखना चाहते हैं कुछ वो प्लीज लिख के दें, हम लोग ग्लोबल कन्फेडरेशन ऑफ एनजीओस के साथ मिलकर इसको पूरे भारतवर्ष में चीजें बढ़ा रहे हैं, प्रचार प्रसार के साथ माध्यम से आप लोग मीडिया सोशल मीडिया जिस भी तरीके से जुड़ना चाहते हैं प्लीज जुड़िए, ताकि लेट्स बी वोकल फॉर लोकल रोड सेफ्टी।
0: क्या बात है, बहुत बहुत दिल की गहराइयों से सर एक बार पुनः बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, क्योंकि समाज को आपकी आवश्यकता है और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और बस लिसनर्स यही कहूंगा कि समझदारी दिखाइए, अपने आप को बीमार मत प्रदर्शित करेगा ऑन रोड, जिस तरीके से हमारे गेस्ट ने ये बात रखी है कि कहीं ना कहीं मानसिक बीमारी आप दिखा रहे होते हैं, क्योंकि अनावश्यक तौर पर जब आप हॉर्न बजाते हैं और अनावश्यक तरीके से गाड़ी को जब आप ओवरटेक करते हैं, या कुल मिलाकर यही कहूं कि यातायात के नियमों का हमें अच्छी तरीके से पालन करना है, घर में ऑफिस में कहीं ना कोई कोई आपका इंतजार कर रहा है, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, जिंदगी आपका इंतजार कर रही है, तो बस खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और यातायात के नियमों का पालन करते हुए आप आगे बढ़ते रहिए। और बस सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना ये कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ, सोमवार से शनिवार सुबह 9 से 10 लाइव में रहता हूं आपके साथ। और इसके अलावा फीडबैक कमियां खूबियां जरूर बताएगा कि ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, 01204060205 अर्थात 120 40 60 205। इसके अलावा 90.8fm@sharda.ac.in पर भी आप हमें मेल के जरिए मेल जोल बढ़ा सकते हैं। वक्त का इशारा, मैं होता हूँ 9-11। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। नमस्कार।

0: Switching. Never put investments are subject to market risk. Read all skill related documents carefully.
1: Hi, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, specially designed for film, television, OTT production, animation, VFX, gaming design, public relation and advertising.
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

तू जाने है कहां ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो संग बाय लकी अली कंपोजर्स माइकी मैक्लेरी और सूरज कुलवडी लिरिसिस्ट कौसर मुनीर तू जाने है कहां सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: Hi, मैं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा at 90.8 FM।

0: भाई।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
0: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
1: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
0: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो
2: शारदा। बिल्कुल आपने सही सुना कि सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ मंडे टू सैटरडे 9 से 10 लाइव में रहता हूं आपके साथ और हमें

करेगा, मिर्च मसाले से अपने आप को बचा कर रखेगा और फुल बाजू के कपड़े पहन कर रखेगा। और भी डिटेल्स निकल कर सामने आ रही कि यानी कि मौसम का जो मिजाज है वो क्या कह रहा है। ग्रेटर नोएडा और दिल्ली एनसीआर में आसमान मुख्य रूप से आज बादल छाए रहेंगे या नहीं, सुनने वाला कि बादल छाए रहेंगे और रुक रुक कर गरज के साथ बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग यानी कि IMD ने नोएडा, गाजियाबाद और दिल्ली समेत पूरे NCR क्षेत्र के लिए बारिश और आंधी की चेतावनी उन्होंने जारी की है। और मैक्सिमम टेम्परेचर ग्रेटर नोएडा, नोएडा में रहने वाला है 33 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम वही 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास और ह्यूमिडिटी लगभग 76% तक रहने की आशंका जताई जा रही है। और बारिश का अलर्ट यानी कि दोपहर के बाद शाम के समय के मतलब आसपास और कई हिस्सों में तेज हवाओं चलने की संभावना है और तेज गरज चमक के साथ बौछारें गिरने की भी संभावना है, जो कि संभावना 55% आंकड़ा हमें ये बता रहा है। आने वाले दिनों में क्या खास होने वाला है, मौसम कैसा रहेगा, उसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ ट्रैफिक की अपडेट भी जो कि मौसम से ही रिलेटेड है। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑल यू सुरशाता 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। ऐसे मौसम में ये गाना तो बनता है ना, सिर्फ सुरशाता 90.8 FM पर। चाहे तो वॉल्यूम अप कर सकते हैं लेकिन गाड़ी पूरे होशो आवाज में चलाएगा। सुरक्षित चलिए, सुरक्षित घर पहुंचिए, सुरक्षित ऑफिस पहुंचिए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का वन एंड ओनली सिर्फ सुरशाता 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। टीबी हवा में फैलने वाला रोग है जो बिना मुंह ढके खांसने से और इधर उधर बलगम थूकने से फैलता है। आप बलगम को कागज के टुकड़े में थूक कर जला सकते हैं या एक राख भरे मटके में थूक कर जमीन

0: में दबा भी सकते हैं। इससे रोगाणु फैलने का कोई डर नहीं होता। अपनी खिड़कियां खुली रखें जिससे खूब सारी रोशनी और शुद्ध हवा अंदर आए। ऐसे वातावरण में टीबी रोगाणु ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकते। और हाँ, अपने इलाज का कोर्स समाप्त जरूर कीजिए। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
1: अधिक जानकारी के लिए 1800-11666 पर संपर्क करें।

0: क्या आपको पता है प्रसव के तुरंत बाद नवजात शिशु को माँ के सीने से लगाकर रखना चाहिए। ऐसा करने से नवजात शिशु का तापमान नियंत्रित रहता है, जो नवजात शिशु के लिए अच्छा होता है।
1: इस प्रक्रिया को कंगारू मदर केयर कहते हैं। प्रसव के बाद अस्पताल से घर वापस आने के बाद घर पर भी नवजात शिशु का तापमान नियंत्रित रखने के लिए उसे सीने से लगाकर रखना चाहिए।
0: कंगारू मदर केयर सीखने और इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप नजदीकी आशा या नर्स दीदी से संपर्क कर सकते हैं।
1: जब होगी सही देखभाल तभी तो आएंगी खुशियाँ बेमिसाल।
0: शिशु की सही देखभाल से फर्क पड़ता है। यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
2: ऐसे ही जन संदेश को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ। और स्टूडियो की घड़ी में 9:23 हो चुके हैं। 20 तारीख है यानी कि थर्सडे का दिन, गुरुवार का दिन। ईश्वर से, खुदा से, पिता परमेश्वर से यही दुआ यही प्रार्थना हर रोज रहती है कि हम सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें। और माँ का नवजात के साथ जो संबंध है, जो मधुर संबंध है, तो पहले 6 महीने तक हम सबका फर्ज बनता है कि हम अपने नवजात का ख्याल रखें, सिर्फ और सिर्फ आहार के रूप में माँ का दूध, है ना। चलिए हंसते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने मौसम के मिजाज के बारे में बात की थी, लेकिन अब क्या खास निकलकर हमारे सामने आ रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। आज 20 अगस्त 2026 यानी कि बृहस्पतिवार को ग्रेटर नोएडा और दिल्ली एनसीआर में ऑफिस और पीक आवर्स के दौरान जो मेन चौराहे हैं, एक्सप्रेसवे के पास वाहनों का जो यूँ कहें कि दबाव है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, और जिससे यातायात काफ़ी धीमा नज़र आ रहा है। परी चौक पर जाम की स्थिति को दूर करने के लिए आने वाले समय में नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर एक नया यू टर्न तैयार किया गया है, एक बात। दूसरी बात यह कि एक्सप्रेसवे पर वर्तमान में यातायात सामान्य गति से चल रहा है, हालांकि 148 सेक्टर 148 से 153 के बीच जो रोड है का थोड़ा कंजेस्टेड है, यानी कि सक्रिय होने की वजह से, अंडरपास होने की वजह से सुबह और शाम के समय जो ऑफिस लोग जा रहे हैं अपने दफ्तर के लिए निकल रहे हैं, तो 20 से 30 मिनट का एक एक्स्ट्रा समय लग सकता है, अतिरिक्त समय लग सकता है, क्योंकि अक्सर हमने महसूस किया है, है ना। और परीचौक और ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो बढ़ते वाहनों का जो दबाव है उसको नियंत्रित करने और जाम को कम करने के लिए ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी द्वारा एक्सप्रेसवे पर नया यू टर्न बना लिया गया है, और जिसके जल्द ही पूरी तरह सुचारू रूप से चलने की उम्मीद है। भीड़ के दबाव को कम करने के लिए हमारा फर्ज बनता है कि हम ट्रैफिक के नियम कायदे कानून का अच्छी तरीके से पालन करें, और बारिश के समय में जल भराव की स्थिति की वजह से हमें कुछ नजर नहीं आता तो बहुत स्लोली आप आगे बढ़ें, और नियमों को पालन करेंगे तो कहीं कोई जाम लगेगा नहीं। गुड मॉर्निंग, मैं हूं गगन आपके साथ सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर। तौबा कर लीजिएगा अगर हम कुछ गलत कर रहे तो, है ना। ब्यूटीफुल ट्रैक सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर। मैं हूं गगन आपके साथ 9:25 20 तारीख। सुरक्षित चलेगा, सुरक्षित घर, सुरक्षित ऑफिस पहुंचेगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। बैड न्यूज़ फिल्म का ब्यूटीफुल ट्रैक करण आहूजा की आवाज सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM।

0: इस अभियान का आह्वान, यदि है आपको टीबी के लक्षण तो जल्द जांच से ही होगा सबसे तेज समाधान। टीबी होने पर जल्द जांच से उपचार में आती है तेजी और गंभीर बीमारी का खतरा होता है कम। सुरक्षित होता है आपका परिवार और अन्य करीबी जन। कुछ समूहों में टीबी का खतरा अधिक होता है, जैसे वे लोग जिन्हें पिछले 5 वर्ष में टीबी हुआ हो, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु, धूम्रपान और शराब का सेवन करने वाले, कुपोषित, टीबी रोगी के साथ रहते हों, मधुमेह रोगी, एचआईवी से पीड़ित हो, तो टीबी के लक्षण होने पर अपने नजदीकी सरकारी या निजी अस्पताल या आयुष्मान आरोग्य मंदिर में निशुल्क जांच और उपचार पाएं। आइए हम सब साथ मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं।
1: टीबी फ्री इंडिया बनाने में सक्रिय भूमिका निभाएं।
0: डाउनलोड करें टीबी आरोग्य साथी ऐप, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: हाय नमस्कार, मैं हूं आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
3: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही वन एंड ओनली सुनो शारदा 90.8 एफएम, इस कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, एसएसएमएफई यानी कि शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट का ये पार्ट है। और जहां स्टूडेंट्स आते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, समझते हैं कि अर्जिंग कैसे होती है, एडिटिंग कैसे होती है, प्रोडक्शन कैसे होता है, कैसे हम लोगों से मिल सकते हैं, कैसे हम लोगों से बातचीत कर सकते हैं, कैसे अपना प्रभाव, जिस भी भाषा पर आपकी कमांड है वो हम प्रभाव छोड़ सकते हैं। चलिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और खास बात यह है कि इसलिए कहा जाता है कि शारदा विश्वविद्यालय की जो टैगलाइन है कि वेयर आर यू द वर्ल्ड इज हियर एट शारदा यूनिवर्सिटी। एक छत के नीचे बहुत सारे कोर्सेज आपको पढ़ने को समझने को मिलते हैं और यहाँ पर फुटबॉल बहुत अच्छी हो रही है, लोग आ रहे हैं, दूर दराज से एडमिशन शुरू हो चुके हैं। और बस ये कहूँगा कि आने वाले बैच के लिए बहुत बहुत दिली दुआएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मौसम का जो मिजाज है वो हर जगह बदलता हुआ नजर आ रहा है। सुनने में आ रहा है कि आज से लेकर 24 अगस्त तक हैवी रेन अलर्ट घोषित कर दिया गया है, यानी कि हिमालय से लेकर सेंट्रल इंडिया तक मॉनसून का जो रूप है, जो रौद्र रूप जिसे हम कहते हैं अक्सर, वो हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। उसके बारे में थोड़ी थोड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है, तो अगर आपका कोई कुशल क्षेम संबंधी वहां है, उसके बारे में कुशल क्षेम पूछना चाहते हैं तो आप उनके बारे में खैरियत पूछ सकते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश में भी भारी बारिश का अलर्ट घोषित किया गया, दिल्ली NCR में बादल छाए रहेंगे, बारिश की संभावना है। उत्तराखंड हिमाचल में भी मौसम बिगड़ता हुआ नजर आएगा, जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर में भी बारिश के हालात कुछ ऐसे ही रहने वाले हैं। और ये जो डेट है आने वाले समय में, यानी कि 24 अगस्त तक आपको हैवी बारिश देखने को मिलेगी। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपको बात ये भी बताई थी कि अगर ट्रैफिक एडवाइजरी आप जानना चाहते हैं, कहीं फंसे हुए, तो एक हेल्पलाइन नंबर है 9971009001। अगेन आई रिपीट, नोएडा ट्रैफिक पुलिस का ये नंबर है 9971009001। इस पर आप डिटेल हासिल कर सकते हैं। अजय बोल दो जो भी बोलियो। अच्छा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।

0: सुनो शारदा 90.8 FM और स्मार्ट खड़े हैं रणभूमि में लेकर जागरूकता की तीर कमान, जो ग्रेटर नोएडा से मिटा देंगे टीबी का नामो निशान। टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है। प्रत्येक टीबी के मरीज को उपचार के दौरान सरकार द्वारा 1,000 रूपए प्रतिमाह दिए जाते हैं, जिसके लिए मरीज का एक बैंक अकाउंट नंबर और आधार कार्ड होना जरूरी है। स्वास्थ्य सही लाभ कही, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
1: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

इस ब्यूटीफुल ट्रैक को सुनने के बाद एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ। 9:38 हो चुके हैं, 20 तारीख है हमारे आसपास और क्या खास है उसके बारे में जान लेना समझ लेना बहुत बहुत बहुत जरूरी है। 1 तारीख से यानी कि महीने की जो पहली 1 तारीख आती है तो बहुत कुछ चेंजेस यानी कि परिवर्तन होते हुए नजर आते हैं, चाहे वो बैंक की बात हो सिलेंडर की बात हो। लेकिन अब फिलहाल सुनने में आ रहा है कि 24 अगस्त से कुछ खास परिवर्तन होने जा रहा है। सिम से रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन है। DOT यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशंस ये बात कर रहा है और ये भारत सरकार के यानी कि संचार मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस के अधीन काम करता है। अब बात निकलकर ये सामने आ रही है जिसको सुनना समझना बहुत जरूरी है। 24 अगस्त से सिम कार्ड की जो एक तय लिमिट थी जो सीमा थी उस पर सख्ती बढ़ा दी है। यानी कि इस नियम के तहत व्यक्ति के पास अगर किसी पर्सन के पास 9 मैक्सिमम 9 यानी कि जम्मू कश्मीर ये स्टेट है, असम पूर्वोत्तर में 6 और वहां पर से ज्यादा सिम होने पर नया कनेक्शन मिलेगा और अतिरिक्त नंबरों को तुरंत सस्पेंड कर दिया जाएगा। अब डिटेल ये है कि 9 सिम की जो संख्या है जो सीमा है देश में एक व्यक्ति अपने नाम पर कुल 9 मैक्सिमम 9 सिम ले सकता है और मोबाइल कनेक्शन अब अगर ज्यादा लिमिट है तो वो आप क्रॉस कर रहे हैं तो दिक्कतें हो सकती हैं। तो जो वो एक तय सीमा है वो रख दी गई है और सरकार ने ये कोशिश की है कि टेलीकॉम कंपनियों को उन ग्राहकों की उन कस्टमर की तस्वीरें उपलब्ध कराएगी जो ये सीमा पूरी कर चुके हैं और यदि कोई व्यक्ति पहले ही 9 सिम ले चुका है तो 24 अगस्त से सिस्टम उसे नया सिम जारी करने से रोक देगा और यदि तय सीमा से अधिक कोई नया नंबर एक्टिव पाया गया तो उसे अतिरिक्त या आखिरी बार लिए गए नंबर को तुरंत सस्पेंड कर दिया जाएगा। इसमें मेरे कोई शब्द नहीं है, जो मेरे सामने बात आई जो एक ऑथेंटिक वेबसाइट के जरिए मैं आप तक पहुंचा रहा हूं तो इसके बारे में आप मालूमात हासिल कर सकते हैं और 24 अगस्त से क्या खास है वो मैंने आपको बता दिया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑल यू सो शारदा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ। जाना हैरान सा गेम चेंजर फिल्म का ब्यूटीफुल ट्रैक सिर्फ सो शारदा 90.8 FM पर। गुड मॉर्निंग, मैं हूं गगन आपके साथ।

इस ब्यूटीफुल ट्रैक को सुनने के बाद एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनुश्राता 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। चलिए बात करते हैं कि हमारे आसपास और क्या खास है, लेकिन उससे पहले नमस्कार 50 मिनट 20 तारीख यानी कि बृहस्पतिवार का दिन बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स की। स्पोर्ट्स में क्या खास हो रहा है उसके बारे में भी जान लेना समझ लेना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात आती है हॉकी वर्ल्ड कप में। भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया है, यानी कि नीदरलैंड्स के एम्स्टलवीन में जो गेम खेले जा रहे हैं FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय पुरुष टीम ने रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया है। तो लख बधाइयां। और मैं बात करना चाहूंगा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की, जो कि न्यू दिल्ली में ही आयोजित किया जा रहा है भारत की मेजबानी में। नई दिल्ली में जो चल रही है BWF यानी कि विश्व चैंपियनशिप 2026 में पीवी सिंधु और आयुष ने अपने मुकाबले जीतकर प्री क्वार्टर फाइनल में गृह प्रवेश कर लिया। तो इस बात के लिए इनको लख बधाई, बहुत बहुत दुआएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे बढ़ते क्रिकेट में भी कुछ अच्छी खबरें हमारे सामने आ रही है, यानी कि भारतीय टीम ने गोल में खेले गए पहले टेस्ट मैच में शानदार स्पिन गेंदबाजी, और वो गेंदबाजी रही मानव सुधार ने, 6 विकेट की बदौलत श्रीलंका को 165 रनों के बड़े अंतर से मात दे दी है। और उप कप्तान KL राहुल ने बताया कि बारिश आने से ठीक 5 मिनट पहले टीम ने यह ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली। तो लख बधाई। और क्या है खास उसके बारे में जान लेते हैं। खास बात यह कि ग्रेटर नोएडा, नोएडा में आप हैं हम हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि हम अपने शहर की बात ना करें। तो ग्रेटर नोएडा में बुलडोजर चला है, वहां चला है जहां अतिक्रमण है। कोई नहीं चाहता कि अतिक्रमण हो, लेकिन अतिक्रमण होता है तो शासन प्रशासन अपना काम करता है। और इसके अलावा DL परीक्षा में अगर आप फेल हो रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा यानी कि फीस देकर 6,000 रुपये फीस देकर नोएडा, ग्रेटर नोएडा में ये नया आदेश लागू किया गया। 1 महीने की ट्रेनिंग हुई, उसके बाद आपको फाइनली DL ड्राइविंग लाइसेंस आपको मिलेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑन सुरश्रादा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। गुड मॉर्निंग सुप्रभात, मैं हूँ गगन आपके साथ 9:52 मिनट 20 तारीख। गुड मॉर्निंग।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो, आखिर हुआ क्या तुम्हें?
5: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
4: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
5: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज़ पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
4: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो, तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
5: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
4: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
5: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
4: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
6: कम एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट व्हिच मेक्स यू इंडस्ट्री रेडी।
7: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
6: सो वेयर आर यू, द वर्ल्ड इज हियर at Sharda University.

0: Hi, this is Shalmali Kholgade and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। डेली रेजिमेन के अंतर्गत अब टीबी मरीज को 6 से 8 महीने रोज दवा लेनी होगी। जहाँ पहले एक दिन में कई गोलियाँ लेनी पड़ती थी, आज आपको अपने वजन के हिसाब से मात्र 2 से 5 गोलियाँ ही लेनी पड़ेंगी। और बच्चों के लिए पानी में घुलने वाली दवाइयाँ दी जाती हैं। आप अपना इलाज सहयोगी किसी को भी बना सकते हैं, दोस्त, घर वाले, पड़ोसी या अन्य। तो आइए मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।
3: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। चलिए बात करते हैं हेल्थ की। जो कहते हैं सच कहते हैं कि हेल्थ है तो सब कुछ है। आप अक्सर जिम जाते हैं, जिम जाने से पहले किन किन खास बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इसी के विषय में आज हम बात करने वाले हैं। जी हाँ, जिम अगर आप जा रहे हैं तो उससे पहले क्या आप खाएं क्या ना खाएं, इसी के विषय में आज हम आपको बताने वाले हैं। उन 5 फूड के विषय में जो आपकी बॉडी को लोहे जैसी मजबूत बॉडी बनाएंगे। जिम में ज्यादा देर तक एक्सरसाइज करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, जो हमें प्री वर्कआउट फूड से बड़े आसानी से मिल सकती है। इनसे सेहत भी अच्छी रहती है और आप खुद को फिट महसूस करते हैं। चलिए यही बात डिटेल में जानते हैं। जिम से पहले जरूर खाएं ये फूड, क्या है खास जानकारी बात करते हैं। जी हाँ, हमें अपने डाइट पैटर्न में तब बदलाव की जरूरत होती है जब हम जिम जा रहे होते हैं। हालांकि जिम के वक्त शरीर को ज्यादा एनर्जी और स्टेमिना की जरूरत होती है, इसलिए जिम करने से पहले प्री वर्कआउट फूड्स को लेने की सलाह दी जाती है। ये फूड्स स्टेमिना भी बढ़ाते हैं और एनर्जी भी डबल करते हैं। प्री वर्कआउट फूड्स हमेशा हेल्दी और पोषक तत्वों से भरपूर होना चाहिए, जिससे पर्याप्त मात्रा में एनर्जी शरीर को मिल सके। इससे एक्सरसाइज करने में भी अच्छे से मदद मिलती है, साथ ही मसल्स की रिकवरी भी सही तरीके से होती है। इतना ही नहीं, प्री वर्कआउट फूड्स में प्रोटीन और कार्ब्स का संतुलन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन दोनों के बीच का सही संतुलन होने से थकान नहीं होती। अगर आप भी जिम जाते हैं तो यहाँ हम आपको कुछ बेस्ट प्री वर्कआउट फूड्स के बारे में बता रहे हैं। ओट्स के विषय में बात करते हैं। ओट्स के बारे में तो हमने सुना ही है। फाइबर, कार्ब्स और अनगिनत पोषक तत्वों से भरपूर ओट्स सेहत के लिए बेहद अच्छा होता है। वर्कआउट से पहले ओट्स खाना फायदेमंद होता है। इससे लंबे समय तक शरीर में एनर्जी रहती है और अच्छे से एक्सरसाइज करने में मदद मिलती है। ओट्स में मौजूद विटामिन बी कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में बदल देता है। वर्कआउट करने से करीब आधे घंटे पहले अनप्रोसेस्ड ओट्स खाने की हिदायत दी जाती है। अब बात अंडे की। वर्कआउट करने से पहले अंडा खाना काफी फायदेमंद माना जाता है। इसमें अमीनो एसिड के साथ साथ प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में होता है, जिससे वर्कआउट करने में ज्यादा मदद मिलती है। अगर आप जिम जाने के 30 से 40 मिनट तक पहले 1 से 2 उबले अंडे या ऑमलेट खाते हैं तो एक्सरसाइज करने में ज्यादा एनर्जी मिल सकती है। बात स्मूदी। स्मूदी पोषक तत्वों का एक बड़ा स्रोत है। बेरी स्मूदी के साथ साथ ग्रीन स्मूदी भी काफी फायदेमंद होती है। इसे वर्कआउट से पहले लेने से कठिन एक्सरसाइज करने के लिए एनर्जी मिलती है। इसके अलावा ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, एवोकाडो, पत्तेदार सब्जियों की स्मूदी भी ट्राई कर सकते हैं। बात केला की। केले को भरपूर एनर्जी का स्रोत माना जाता है। इसके अलावा केले में कार्बोहाइड्रेट और पोटेशियम के भी अच्छे गुण होते हैं। इससे शरीर की नसों और मांसपेशियों को ठीक ढंग से काम करने में मदद मिलती है। केला खाने से डाइजेशन दुरुस्त रहता है। इतनी खूबियों के चलते केला बेस्ट प्री वर्कआउट फूड में से एक है। उबला हुआ चिकन। बात सामने ये आती है कि चिकन को डाइट का अहम हिस्सा माना जाता है। चिकन में मौजूद प्रोटीन शरीर के निर्माण के लिए बेहद जरूरी है। प्रोटीन मसल्स की रिकवरी में भी मदद करता है। थोड़ी सी काली मिर्च और स्वादानुसार नमक के साथ उबला हुआ चिकन एक अच्छा प्री वर्कआउट फूड में एक है। अब बात करते हैं एनर्जी बार की। जी हाँ, जिम में वर्कआउट करने वालों के पास एनर्जी बार जरूरी होना चाहिए। आप इसे अपने पास स्टोर करके रखने, केमिस्ट दुकान या फिर किसी सुपरमार्केट में इसे आराम से खरीद सकते हैं। एनर्जी से भरपूर एनर्जी बार में कार्बोहाइड्रेट के साथ

0: भाई, भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक,
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
1: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90

0: जन जन का रखें ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। सिर्फ खांसी टीबी का लक्षण नहीं, टीबी के और भी लक्षण हो सकते हैं। बलगम में खून आना, थकान, पुरानी बीमारी, रात में पसीना आना, वजन में गिरावट, हाल में हुए शारीरिक बदलाव, शरीर के किसी भी हिस्से में गांठ होना, सीने में दर्द, बुखार, बलगम वाली खांसी, तो आज ही जाँच कराएं। और अधिक जानकारी के लिए निश्चय संपर्क हेल्पलाइन नंबर 1800 11 4 6 टोल फ्री पर कॉल कर सकते हैं।
1: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
2: शिशु के 6 महीने के होने के बाद
3: शिशु का शरीर मांगे उपयुक्त आहार।
2: खाने में 1 चम्मच घी या तेल है जरूरी,
3: जिससे आपके शिशु को मिलेगी ऊर्जा पूरी।
2: गाढ़ा मिलेगा भोजन,
3: तभी मिलेगा शिशु को संपूर्ण पोषण।
4: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: द्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत। ओम शांति ही शांति ही शांति। दोस्तों इस श्लोक का अर्थ यही है कि हे ईश्वर पिता परमेश्वर, मेरी जो काया है वो निरोग आप रखें, आप हमें ऐसा आशीष दें, आप हमें ऐसा वर दें, ये ईश्वर से हमारी कामना है। लेकिन सच बात तो ये कि अगर हम अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे तो मुझे लगता है कि ईश्वर खुदा पिता परमेश्वर हमारी मदद करेगा। और कहा भी जाता है कि निरोगी काया अगर आपकी है तो यकीन मानिए कि दुनिया के सबसे बड़े दौलतमंद आदमी आप ही हैं। राम राम, दोस्तों सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम सेहत सही लाभकारी, और मैं हूं गगन आपके साथ। दोस्तों इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक बेहद जरूरी मुद्दे पर बात उठाने वाले हैं, किशोरों का यौन और प्रजनन स्वास्थ्य। वाकई एक गंभीर विषय है, अच्छा विषय है, और इसको जानना समझना बहुत जरूरी है और जागरूकता भी बहुत जरूरी है। दोस्तों 10 से लेकर 19 साल की उम्र में न सिर्फ शरीर बदलता है बल्कि मन में भी कई सवाल उठते हैं। ऐसे में सही जानकारी मिलना बहुत जरूरी है। तो चलिए जानते हैं कि इस उम्र में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या सुविधाएं मिलती हैं और किस तरह माता पिता, स्कूल, समाज और सरकार मिलकर बच्चों की मदद कर सकते हैं। दोस्तों इन सभी मुद्दों पर आज हमारे साथ बात करेंगे हमारे चिर परिचित हमारे भैया अर्थात सेहतिया सिंह जी। तो सेहतिया सिंह जी, सुरोशादा 90.8 FM पर आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद गगन जी। जैसे किसी बगीचे में सही समय पर पानी और खाद ना मिले तो पौधा सूख जाता है, वैसे ही किशोर उम्र में अगर सही जानकारी और सलाह ना मिले तो बच्चा उलझ सकता है। इसीलिए इस उम्र में सही बातें जानना और समझना बहुत ही जरूरी है। और आज मुझे लगा आपसे बात करके हम अपने प्यारे मित्रों के साथ ये जानकारी साझा कर पाएंगे।
0: भाई सेहतिया सिंह जी, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप। वैसे किशोरावस्था के दौरान शरीर और मन में क्या क्या बदलाव आते हैं, क्योंकि आप भी उम्र दराज हैं, आप भी उस दौर से गुजरे हैं, मेरे भी घर में बच्चे हैं, आपके भी घर में बच्चे हैं, हम समाज को देखते हैं। तो एक अनुभवी व्यक्ति होने के नाते इस सवाल का जवाब मैं आपसे जानना चाहता हूँ।
1: भाई ये बात आपने बिल्कुल सही कही, हम सभी के घरों में बच्चे हैं और वो उम्र के साथ ऐसी समस्याओं का सामना करते हैं जिन्हें कई बार वो आपस में या अपने बड़ों से साझा नहीं कर पाते। दरअसल जब बच्चा 10-11 साल का होता है तब से उसके शरीर में धीरे धीरे बदलाव शुरू हो जाते हैं। जैसे लड़कों की आवाज भारी होने लगती है, उनका कद एकदम तेजी से बढ़ता है, लड़कियों में मासिक धर्म यानी पीरियड्स शुरू हो जाती हैं। शरीर बदलेगा तो उसका असर मन पर भी पड़ेगा ही, कभी गुस्सा आएगा, कभी बिना बात के मन उदास हो जाएगा या अकेलापन लगेगा। ये सब एकदम नॉर्मल है, डरने की बात नहीं है।
0: वाकई बहुत अच्छी बात आप एक अनुभव के साथ हमारे साथ साझा कर रहे हैं। सेहतिया सिंह जी, एक अनुभव मैं भी साझा करना चाहूंगा इस बात पर आने से पहले जो हम स्क्रिप्ट के आधार पर पढ़ रहे हैं जी। मेरे एक मित्र थे साकिब साहब, उनके घर में कोई समस्या, मैं समझता हूँ खुलकर बात कर लेता हूँ, उनकी कोई एक महिला मित्र थी, उनके सामने कोई समस्या आई। चूंकि हम डॉक्टर से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, दो बातें हो सकती थी सर वहां पर, या तो मुझे हंसना चाहिए था या मुझे समझदारी दिखानी चाहिए थी, क्योंकि मुझे लगा कि उसने बिना बेझिझक मुझसे बातें की। तो वही समझदारी दिखाते हुए मैंने भी वही बात डॉक्टर साहब से जानकर पूछकर उस समस्या का हल उन तक पहुंचा दिया। आशय दोस्तों सिर्फ और सिर्फ यही कि हमें भी इसी प्रकार की समझदारी दिखाने की बहुत जरूरत है, और शायद ये जो कहानी है, ये जो स्क्रिप्ट है, आगे हमें यही बताएगी। लेकिन भैया अब मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि जब हम यौन और प्रजनन स्वास्थ्य की बातें करते हैं तो उसमें क्या क्या बातें आती हैं?
1: भाई देखो कई बातें हैं जिनके बारे में खुलकर बात करना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले तो ये समझ लो कि महावारी यानी पीरियड्स कोई बीमारी नहीं है बल्कि एक बिल्कुल स्वाभाविक प्रक्रिया है जो हर लड़की और औरत के शरीर में होती है। इसके बारे में सही जानकारी होना बहुत जरूरी है ताकि किसी को शर्म या डर ना लगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये अगर महिलाओं से संबंधित है तो इसके बारे में जानकारी केवल महिलाओं को ही हो, पुरुषों को भी इसके बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए, वरना कई प्रकार की भ्रांतियां मन में पल जाती हैं और उन्हें लेकर समाज में किसी तरह की कुंठा बन जाती है। ऐसा हमें समाज में नहीं होने देना चाहिए। अब बात आती है गर्भ ठहरने की यानी बच्चे होने की बात। आजकल ये जरूरी है कि लड़का और लड़की दोनों ये समझें कि बिना सोचे समझे जल्दी माता पिता बनना कई प्रकार की मुश्किलें बढ़ा सकता है। इसलिए बचाव के तरीके जैसे गर्म निरोधक उपाय की जानकारी सभी को होनी चाहिए। और सबसे अहम बात, किसी भी संबंध का फैसला सोच समझ कर ही लेना चाहिए। चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों को ना कहने का पूरा हक है और अपने शरीर के बारे में फैसला लेने का भी पूरा अधिकार है। ये समझना ही असली समझदारी है।
0: वाकई सेहतिया सिंह जी, आपने बहुत सच्ची अच्छी बात हमारे श्रोताओं तक आम भाषा में समझा दी। दोस्तों, इस बात को जानिए, समझिए और जो आपके करीब है, जो करीबी है, उसे जरूर शेयर करिए। समस्या अगर कुछ है तो निश्चित तौर पर उसका समाधान है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर किसी किशोर को डर लगे या शर्म आए या मन में कोई सवाल हो तो सेहतिया भैया उस वक्त उसे क्या करना चाहिए?
1: सवाल उठाना ही सबसे अच्छी बात है। ऐसे में संकोच नहीं करना चाहिए। अपने घर में माता पिता से, स्कूल में टीचर से या किसी ऐसे बड़े से बात करनी चाहिए जिस पर भरोसा हो। अगर डॉक्टर या काउंसलर से बात करने का मौका मिले तो बिना हिचक अपने सारे संदेह पूछ लेने चाहिए।
0: बाकी बहुत सच्ची अच्छी बात आपने फिर से दोबारा हमारे श्रोताओं तक पहुँचा दी। सेहतिया भैया, जब हम किशोरों की यौन और प्रजनन सेहत की बात करते हैं तो कई बार समाज की पुरानी सोच और परंपराएं ही रुकावट बन जाती हैं। जैसे लड़कियों पर जल्दी शादी करने का दबाव और लड़कों पर हमेशा रो मत मर्द बन का बोझ हमेशा रहता है। तो ऐसे माहौल में सही जानकारी और सही सुविधा कितनी जरूरी है?
1: बिल्कुल गगन जी, चाहे गाँव हो या शहर, ऐसी सोच हर जगह मिलती है। लड़की बड़ी हो गई तो लोग कहते हैं कि बोझ बन गई। लड़कों से कहा जाता है कि अब घर चलाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जब ऐसे ताने मिलेंगे तो बच्चे कैसे खुलकर बात करेंगे। इसलिए जरूरी है कि किशोरों को सही जानकारी दी जाए, वो भी उचित समय पर, और ये उन्हें अच्छे से समझाया जाए और उनकी बात सुनी भी जाए। किशोरों को डांटना नहीं है, उन्हें प्यार से समझाना है, उनकी बात सुननी है और उनका साथ भी देना है।
0: बिल्कुल आपने सही कहा कि उनकी बात सुननी है, समझनी है, और जो आपने कहा आखिर में कि उनको डांटना नहीं है। डांटने का मतलब सेहतिया भैया, मुझे लगता है कि बात का विरोध करना या बात को वहीं रोक देना है। लेकिन जब आप बात को सुनेंगे तो वो अपनी समस्या आपके सामने लेकर आएगा और मैं समझता हूँ कि वक्त रहते हुए उसका समाधान हो जाएगा। आगे बढ़ते। जी जी, कुछ कह रहे थे।
1: दरअसल हम कई बार बच्चों को डांट इसलिए देते हैं कि या तो हमारे पास उनके प्रश्नों का जवाब नहीं है या फिर हम उनसे इस विषय पर बात करने में झिझकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: जबकि ऐसा बिल्कुल होना नहीं चाहिए। क्योंकि यदि कोई किशोर अपने बड़ों से इस विषय पर बात करना चाहता है तब वह ये समझता है कि ये सबसे मेरे निकट हैं, इसलिए मुझे अपने मन की बात इनसे कह देनी चाहिए। वहीं इस समय पर अगर उन्हें डांट दिया जाए तो वे किसके पास जाएंगे?
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात आप कर रहे हैं और मुझे खुशी है कि एक अनुभव वाले व्यक्ति को हमने इस कार्यक्रम में बुलाया जो अपने अनुभव के साथ हमारे साथ ये बातें हम तक पहुंचा रहे हैं। सेहतिया भैया, हम देख रहे हैं कि कई जगह बहुत छोटी उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती है। ऐसा करने से उनकी सेहत पर क्या असर पड़ता है, और अगर किशोरी गर्भवती हो जाएं तो ये खतरनाक हो सकता है ना?
1: बिल्कुल, ये चिंता की बात है। अभी हाल ही में दिल्ली का एक केस सभी ने सुना होगा, इस विषय से संबंधित ही वह समस्या थी। खैर, आज के विषय पर बात करते हैं। शादी से लड़की के ऊपर बहुत बोझ आ जाता है, शरीर पर भी और मन पर भी। अगर कम उम्र में वो गर्भवती हो जाए तो माँ बच्चे दोनों पर खतरा आ सकता है। फिर लड़की की पढ़ाई, करियर, सपने सब पीछे छूट जाते हैं। जिंदगी बस घर गृहस्थी तक ही सिमट कर रह जाती है।
0: बिल्कुल आपने सही कहा। अब मैं आपसे ये जानना समझना चाहता हूँ कि अगर कोई लड़की गलती से गर्भवती हो जाए तो कई बार वो डर की वजह से, समाज की वजह से चोरी छुपे गर्भपात करवा लेती है। ये कितना खतरनाक है, क्योंकि मैं बहुत डर के ये सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, और जबकि मैं समझना भी चाहता हूँ, हमारे लिसनर्स भी समझना चाहते हैं कि ऐसे में सही कदम क्या होगा।
1: दरअसल जब किसी किशोरी को डर लगता है, शर्म आती है या सही जानकारी नहीं होती तो वो चुपचाप गलत जगह जाकर डॉक्टर की सलाह के बिना गर्भपात करवा लेती है। ऐसे में उसे नुकसान हो सकता है, जैसे इन्फेक्शन हो जाना, बहुत खून बह जाना, यहाँ तक कि जान भी जा सकती है। इसलिए सही जानकारी जरूरी है। अगर लड़की को सही सलाह और सुरक्षित इलाज मिले तो ऐसे हालात से उसे बिल्कुल बचाया जा सकता है।
0: बिल्कुल दोस्तों, आखिर की जो लाइन है उसको मैं रिपीट करना चाहूंगा, अर्थात दोहराना चाहूंगा, सही सलाह और सुरक्षित इलाज मिले तो ऐसे हालात से बचा जा सकता है जो हमारे सेहतिया भैया आपको बता रहे हैं। अब मैं आपसे समझना चाहूंगा सेहतिया भैया कि अब एक दूसरी समस्या पर हम बात करना चाहेंगे। आजकल किशोरों में यौन संक्रमण और HIV जैसी बीमारियों का खतरा क्यों बढ़ रहा है?
1: दरअसल किशोरावस्था में शरीर और मन में कई बदलाव आते हैं। वे बहुत सी नई बातों को समझने की कोशिश करते हैं। अगर उन्हें जरूरी जानकारी नहीं मिलती, जैसे कि सुरक्षित यौन संबंध क्या है या कंडोम का सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है, तो वे कभी कभी ऐसे काम कर सकते हैं जो सेहत के लिए ठीक नहीं होती। HIV और बाकी यौन संक्रमण असुरक्षित यौन संबंधों से फैलते हैं।
0: जी।
1: अगर किशोरों को ये नहीं पता कि इन बीमारियों से कैसे बचा जाए, तो वे अपनी सेहत को खतरे में डाल सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि उन्हें खुलकर सही और साफ जानकारी दी जाए।
0: बिल्कुल आपने सही कहा, और यही वजह है कि कहते ना कि घर प्राथमिक पाठशाला होती है, और यहाँ आप अपने माता पिता से यानी कि पेरेंट्स से अपनी बातों को डिस्कस कर सकते हैं। दूसरी बात सियातिया जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि संगत का बड़ा फर्क पड़ता है। अगर आपकी संगत अच्छी है तो निश्चित तौर पर आप आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ते हैं सियातिया जी, हम समझना चाहते हैं कि हमने किशोरों की शारीरिक सेहत और यौन स्वास्थ्य की बातें की हैं, लेकिन एक बात जो अक्सर पीछे छूट जाती है वो है मानसिक स्वास्थ्य। आजकल किशोरों में हम देख रहे हैं कि डिप्रेशन, चिंता और तनाव की दिक्कतें बढ़ रही हैं, तो सवाल यही है कि क्यों बढ़ रही हैं?
1: देखिए, किशोर नए माहौल में जाते हैं, दोस्त बनाते हैं, पढ़ाई का दबाव होता है, शरीर में बदलाव आता ही है, और ऊपर से समाज की उम्मीद कि तू लड़का है, रो नहीं सकता, या तू लड़की है, समझदारी से चल, ये बातें दिमाग पर बोझ डालती हैं। कोई लड़का या लड़की किसी बात को लेकर परेशान है लेकिन उसे बोलने की इजाजत नहीं है, तो क्या होगा? ये कुछ वैसा ही होगा जो अभी कुछ दिनों पहले दिल्ली के एक केस में हुआ, जहां पर लड़की ने घर वालों से अपने गर्भावस्था को छुपाए रखा और लंबे समय तक नहीं बताया। नतीजा, जब ये बात खुलकर सामने आ गई, तब उसके माँ बाप ने उसका साथ नहीं दिया, यहाँ तक कि आगरा ले जाकर उस बच्ची की पानी में डुबोकर हत्या कर दी। सोचिए, एक बाप जिसने उस बच्ची को पैदा किया, बड़ा किया, अपने हाथों से उसकी जान ले लेता है, कितना गलत है। लेकिन इस सिचुएशन सोचिए बनी क्यों? क्योंकि यदि उस पिता ने उस बच्ची की बात शुरुआत में सुनी होती, या उसे मौका दिया होता बात करने का, या माहौल घर में इतना खुला रखा होता, तो ऐसी मुसीबत घर में आती ही नहीं, या समय रहते इस बात को समझ लिया गया होता, और बच्ची का अगर गर्भपात कराने की आवश्यकता होती तो समय रहते इस पर कोई उचित निर्णय ले लिया गया होता। मगर क्योंकि हम परिवार में बच्चों को इतना बोलने की छूट ही नहीं देते, जिसके चलते वो एक बड़ी मुसीबत में पड़ जाते हैं। इसी के चलते कई बार किशोर रिश्तों को लेकर डरे रहते हैं और कोई उनकी बात नहीं सुनता, इससे उन्हें डर लगता है। उल्टा लोग कहते हैं कि चुप रहें, ऐसी बातें मत करें। इसलिए किशोर को सुनने और समझने की बहुत जरूरत है। अगर वो मदद लेते हैं तो ये कमजोरी नहीं है, समझदारी है। स्कूलों में काउंसलर हो, घर में प्यार से बात हो और हेल्थ सेंटर में उचित सलाह मिले, तो बहुत कुछ सुधर सकता है और बड़ी मुसीबतों से बचा जा सकता है।
0: भाई, आपने बहुत विस्तार से एक उदाहरण के साथ आपने एक बात रख दी, क्योंकि आप सामाजिक प्राणी हैं और आपने जो जिंदगी में देखा है, जो आस पड़ोस में देखा है, वो बात आपने सामने रख दी। तो मुझे लगता है कि सही कहा कि अगर वक्त रहते हुए समस्या का समाधान ढूंढना है तो समाधान बातचीत के माध्यम से ही निकाला जा सकता है। दोस्तों, किशोरों के सामने बहुत सारे सवाल होते हैं, जैसे शरीर में हो रहे बदलाव, रिश्तों की समझ और सही गलत का फर्क। क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे वे अपने फैसले समझदारी से ले सकें? जी सियातिया सिंह जी।
1: हाँ बिल्कुल, सबसे बढ़िया तरीका है कि बच्चों को समग्र यौन शिक्षा दी जाए। अब नाम सुनकर कुछ लोग सोचते हैं कि इसमें सिर्फ सेक्स की बातें होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें बच्चों को ये समझाया जाता है कि उनका शरीर कैसे बदलता है, उनके अधिकार क्या होते हैं, और रिश्तों में कैसे समझदारी और जिम्मेदारी से फैसले लिए जाने चाहिए। जैसे अगर किसी लड़की को स्कूल में बताया जाए कि पीरियड्स बिल्कुल सामान्य चीज है, इसे लेकर शर्माने की जरूरत कतई नहीं है, या किसी लड़के को सिखाया जाए कि कि अगर कोई ना कहे तो उसे मानना चाहिए। तो दोनों आगे चलकर ज्यादा समझदारी और इज्जत से रिश्ते निभाएंगे।
0: बिल्कुल आपने सही कहा कि बातों को मानना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए, ताकि रिश्ते मजबूती से हम लोग आगे निभा सकें। जो संबंध है पिता पुत्र का, माँ पुत्री का, या एक परिवार का एक दूसरे के साथ जो

0: संबंध बना हुआ है वो समझदारी से ही निभाया जा सकता है। दोस्तों, किशोरों को सही जानकारी और सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी है, लेकिन क्या गर्भ से बचने के उपाय यानी गर्भ निरोधक कॉन्ट्रासेप्टिव्स की जानकारी भी दी जानी चाहिए? सियतिया सिंह जी, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप?
1: बिल्कुल, एकदम दी ही जानी चाहिए। जब कोई किशोर या किशोरी यौन संबंध के बारे में सोचने लगते हैं तो उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी देना बहुत जरूरी है। गर्भ निरोधक साधन इस जानकारी का अहम हिस्सा है। अगर किसी को कुछ पता ही नहीं है और वे किसी रिश्ते में शारीरिक रूप से जुड़ जाएं, फिर अगर अनचाही प्रेगनेंसी हो तो उसकी पढ़ाई, करियर, पूरा भविष्य बिगड़ सकता है। उस लड़की की सेहत भी खतरे में पड़ सकती है। अब अगर पहले से उसे पता हो कि कंडोम क्या होता है, गर्भ निरोधक गोली कैसे काम करती है या फिर इमरजेंसी पिल कब लेनी चाहिए, इन बातों की जानकारी से फैसला समझदारी भरा होगा।
0: ये जो वार्तालाप है बहुत सही दिशा में जा रहा है दोस्तों। अब बात मैं ये समझना चाहता हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि अगर किशोरों को ये सब सिखाया या बताया गया तो वो कहीं ऐसा ना हो कि गलत रास्ते पर ना चल पड़े।
1: यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। जानकारी देना कोई गलत रास्ता सिखाना नहीं होता, बल्कि समझदार और जिम्मेदार बनाना होता है। अगर किशोरों को कुछ बताया ही नहीं गया तो वे कहीं और से, इंटरनेट या दोस्तों से अधूरी या गलत जानकारी लेकर उलझ सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है ना, अध जल गगरी छलकत जाए, यानी आधी अधूरी जानकारी ज्यादा नुकसानदायक होती है। लेकिन अगर स्कूल, घर या हेल्थ सेंटर में खुले मन से बात हो तो वे खुद को और दूसरों को भी सुरक्षित रख पाएंगे।
0: बिल्कुल सही कहा आपने सियतिया भैया जी। आपने बताया कि किशोरों को सही जानकारी और सही माहौल देना बहुत जरूरी है, लेकिन क्या सरकार की तरफ से भी कोई ऐसी पहल हुई है, इसके बारे में भी बताइए।
1: बिल्कुल भैया, सरकार ने इस पर काफी काम किया है। देखिए, एक योजना है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम यानी RKSK। इसके तहत किशोरों को सेहत, पोषण, मानसिक तनाव, यौन स्वास्थ्य और नशे से बचाया कैसे जाए, इसके बारे में उचित जानकारी दी जाती है।
0: तो इसको जरूर आप सुने, जाने, समझें, और जब आप जानेंगे समझेंगे मुझे लगता है तो फिर कोई दिक्कत परेशानी होगी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं आखिर इस योजना में क्या क्या सुविधा मिलती है। यदि कोई किशोर या किशोरी हेल्प लेना चाहे, अर्थात मदद लेना चाहे, तो उसके पास क्या क्या विकल्प होते हैं?
1: RKSK बहुत ही काम की चीज है। सरकार ने इसे खास तौर पर 10 से 19 साल के किशोरों के लिए शुरू किया है। इस योजना के कई हिस्से हैं। पहला है किशोर अनुकूल स्वास्थ्य क्लिनिक। ये सरकारी अस्पतालों में बनाए गए हैं, जहां किशोर अपनी समस्या खुलकर डॉक्टर या काउंसलर से कह सकते हैं। क्लिनिक में उन्हें उचित सलाह मिलती है। दूसरा है अनुपूरण कार्यक्रम। इसके तहत लड़के और लड़कियों को हफ्ते में एक बार आयरन की गोली दी जाती है, ताकि उनमें खून की कमी न हो। तीसरा है सहकर्मी शिक्षक योजना। इसमें गांव के ही कुछ लड़के लड़कियों को ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि वो अपने जैसे बाकी बच्चों की सेहत की बातें कर सके।
0: यानी कि गाइडेंस, मार्गदर्शन, ट्रेनिंग बहुत बहुत बहुत जरूरी है, और यही बात आप हमारे सेहतिया भैया से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। अगर ऐसा होता है सेहतिया सिंह जी, तो वो क्या होता है, क्यों होता है, अगर आप थोड़ा से विस्तार से बता सके।
1: हाँ, अब जैसे मेरे गांव की सीमा है, वो कक्षा 10 में पढ़ती है। RKSK से जुड़ने के बाद सीमा अपनी सहेलियों को मासिक धर्म, साफ सफाई और सुरक्षित यौन व्यवहार पर खुलकर बात करना सीखती है, जानकारी देती है। सहेलियां भी अपनी बात बिना झिझके सीमा से साझा करती हैं। चौथा है मासिक धर्म स्वच्छता योजना। इसमें सरकार सैनिटरी पैड्स खरीदने के लिए पैसे देती है, ताकि गांव की लड़कियां साफ सफाई से पीरियड्स संभाल सकें। पहले कई लड़कियां कपड़े का इस्तेमाल करती थीं, जिससे इन्फेक्शन हो जाता था। अब ये स्थिति धीरे धीरे बदल रही है। RKSK सिर्फ आम किशोरियों के लिए ही नहीं, बल्कि LGBTQ बच्चों जैसे लेस्बियन, गे, ट्रांसजेंडर्स के लिए भी है। डॉक्टर, ANM, काउंसलर, सबको ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि वे सभी की मदद बिना भेदभाव के करें।
0: यानी कि ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है और इसको जान लीजिए, समझ लीजिए कि हम क्या करें क्या ना करें। भैया अगर RKS के जैसा प्रोग्राम हर गांव हर स्कूल तक पहुंचाया जाए तो किशोर सिर्फ तंदुरुस्त नहीं होंगे बल्कि कॉन्फिडेंस से भर जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे आप?
1: आप सही कह रहे हैं। देखिए भैया एक और बढ़िया योजना है अर्श, इसका मतलब है एडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ, यानी किशोरों को उनकी उम्र के हिसाब से शरीर और सेहत से जुड़ी जरूरी बातें समझाना, जैसे कि शरीर में बदलाव क्यों होते हैं, पीरियड्स और यौन व प्रजनन से जुड़ी बातें क्या हैं, इन बातों को धीरे धीरे प्यार से खुलकर समझाया जाता है।
0: भाई ये तो बहुत बढ़िया जानकारी है, इसके बारे में और अगर हम कुछ बात कर सकें या कुछ और आप हमें आगे बता सकें तो प्लीज बताइए।
1: हाँ, अब सरिता की आप बीती आपको बता देता हूँ। 14 साल की सरिता पढ़ाई में बहुत तेज है। पहले जब कोई पीरियड्स या शरीर के बदलाव की बात करता था तो सरिता और उसकी सहेलियां नजरें चुरा लेती थी, शर्मा जाती थी। फिर एक दिन गांव में RKSK योजना के तहत किशोर स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। उस दिन ANM दीदी भी आई, उन्होंने लड़कियों से प्यार से बात की, बोली कि पीरियड्स आना कोई शर्म की बात नहीं है, ये तो शरीर का एक सामान्य हिस्सा है या प्रक्रिया है। फिर उन्होंने बताया कि कैसे साफ सफाई रखनी है, कौन सी आदतें अपनानी हैं। उस दिन की बातें सरिता के दिल और दिमाग में घर कर गईं। अब सरिता खुलकर बात करती है, अपनी सहेलियों को भी समझाती है।
0: बिल्कुल भैया, जब कोई इतनी गंभीर बात हो और खासकर सेहत को लेकर तो खुलकर बात करनी ही चाहिए। इसमें डर और शर्म करके अपना ही नहीं हम दूसरों का भी नुकसान कर रहे होते हैं।
1: लड़कियों की सेहत और पीरियड से रिलेटेड एक बहुत ही उम्दा क्वालिटी की एक बहुत ही अच्छी फिल्म है दोस्तों, नाम है पैडमैन। अगर हो सके तो कभी उसे देखिएगा, आपको समझ आएगा कि ये कितनी अच्छी जानकारी इस फिल्म के माध्यम से आम जनता के बीच में प्रसारित की गई है। खैर आज की बात करें तो सरिता की सहेली गीता कई दिनों से थकी थकी सी रहती थी, कुछ खाने का मन नहीं करता था, चक्कर आते रहते थे। फिर वह आंगनवाड़ी केंद्र गई तो वहां मौजूद ANM रेखा दीदी ने गीता से बात की, फिर उसकी जांच करवाई, पता चला कि उसे खून की कमी यानी एनीमिया है। अगर समय रहते पता न चलता तो परेशानी बढ़ सकती थी, लेकिन समय पर इलाज मिला और गीता स्वस्थ हो गई।
0: बिल्कुल सही बात है दोस्तों, समय पर इलाज मिलना बहुत बहुत बहुत जरूरी है। यानी कि एनीमिया, अगर शरीर में आपके खून की कमी है तो उसको एनीमिया कहा जाता है, और खून बढ़ाने के लिए हमारा खान पान अच्छा होना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं तो मतलब ये कि ये योजनाएं सच में जमीन पर असर कर रही हैं। ये मेरा सवाल है सिहतिया भैया जी आपसे, तो मैं समझना चाहूंगा क्या कहना चाहेंगे आप?
1: आपका सवाल बहुत ही अच्छा है, तो सुनिए सबसे प्रेरणादायक बात तो ये रही, पास के गांव की रीना की कहानी। रीना बहुत होनहार लड़की थी, 8वीं में पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा अंक लाए, लेकिन जब वो 16 साल की हुई तो घर वालों ने शादी की बात शुरू कर दी। बोली अब ज्यादा पढ़ाई का क्या फायदा, लड़की तो घर ही संभालेंगी। रीना ने हिम्मत जुटाई और अपनी आंगनवाड़ी दीदी और स्कूल की शिक्षिका से बात की। उन्होंने उसके माता पिता को समझाया कि 18 साल से पहले शादी करना न सिर्फ कानूनन गलत है बल्कि लड़की की सेहत और भविष्य के लिए भी नुकसानदेह है। उन्होंने यह भी बताया कि अब सरकार लड़कियों की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति और स्किल ट्रेनिंग देती है। धीरे धीरे परिवार मान गया, आज रीना इंटर की पढ़ाई कर रही है और आंगनवाड़ी में छोटे बच्चों को पढ़ाने में मदद करती है।
0: बिल्कुल दोस्तों, कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही कि अगर आपकी सोच अच्छी है, कुछ करना चाहते हैं अपने लिए, समाज के लिए और सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे तो जो कुछ आप सीखेंगे और समाज में आप देंगे तो वो एक दूसरे की मदद से कहीं ना कहीं हम आगे अपने देश में योगदान दे रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, जब सही जानकारी सही समय पर सही तरीके से मिले तो किशोर अपने फैसले खुद लेने लगते हैं। क्या कहना चाहेंगे?
1: किशोर छोटे बच्चे नहीं होते और ना ही वो पूरी तरह बड़े हो जाते हैं, वे बीच का सफर तय कर रहे होते हैं। ऐसे में उन्हें सुना जाना और साथ दिया जाना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल सही कहा भैया आपने, ये ठान लें कि हम किशोरों को टोकेंगे नहीं, उन्हें समझाएंगे, सुनेंगे, उनका साथ देंगे, क्योंकि जब जानकारी सही होगी, सोच खुली होगी, तभी सेहत भी अच्छी होगी। इसी उम्मीद के साथ मुझे इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे सेहत सही लाभ कई के अगले एपिसोड में। पर जाने से पहले हम एक शपथ लेते हैं, और शपथ से पहले बस यही कहना चाहूंगा कि इस जानकारी का लाभ उठाएगा, जैसा जैसा कहा गया है इस पर गौर फरमाएगा, डिस्कस करेगा यानी कि चर्चा करेगा अपने एक्सपर्ट के साथ जो इस जानकारी को, जिनको मालूमात है। डरेगा मत, घबराएगा मत। तो सेहतिया जी एक शपथ लेते हैं, पहले मैं बोलूंगा उसके बाद आप बोलेंगे।
1: बिल्कुल।
0: हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे।
1: हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे।
0: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
1: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
0: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
1: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
0: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
1: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
0: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
1: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
0: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें।
1: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें।
0: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
1: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
0: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
1: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
0: सेहत सही तो लाभ कई। जी हाँ, आरजे के रूप में मैं गगन आपके साथ जुड़ा रहा, और सेहतिया के रूप में हमारे साथ जुड़े रहे
1: शरद शर्मा।
0: तो ये विशेष कार्यक्रम आपको कैसा लगा? 01204060205 पर आप हमें कॉल कर बता सकते हैं। इसके अलावा 90.8 FM @sharda.ac.in पर मेल के माध्यम से मेल जोल बढ़ा सकते हैं, और शारदा विश्वविद्यालय के जो दरवाजे वो आप सबके लिए खुले हुए हैं। जब भी मन करे तो आप हमसे मुलाकात कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि विषय वाकई बहुत अच्छा था, गंभीर था और अच्छी तरीके से हमने आप तक पहुंचाया। फिलहाल वक्त का इशारा, मैं होता हूं 9:11। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। न टेंशन लेने की जरूरत, न किसी को टेंशन देने की आवश्यकता। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in। फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है, और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 0120406010 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8।
3: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
4: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। टीबी का पूरा और पक्का इलाज है, लेकिन इलाज में रुकावट करने से टीबी की दवा मरीज पर असर करना बंद कर देती है। इसलिए ड्रग रेसिस्टेंट टीबी की जांच करना आवश्यक है। DRTB की जांच आधुनिक मशीन CBNAT के द्वारा सरकारी और नोटिफाइड प्राइवेट टीबी मरीजों के लिए मुफ्त उपलब्ध है। इस जांच की रिपोर्ट केवल 2 घंटे में दी जाती है, जिससे DRTB और उसके सही उपचार का जल्द पता चल जाता है। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
3: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।
5: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
6: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना, दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको, हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें। यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मेरे यानी गगन के साथ। भाई जो कहते हैं सच कहते हैं कि जान है तो जहान है, सारी मुश्किलें आसान है। इसलिए हर एक मुश्किल को आसान बनाने के लिए हम आपके साथ जुड़ जाते हैं, अच्छी अच्छी हेल्थ की बातें आप तक पहुँचा रहे होते हैं। कोरोना का समय हम सबने देखा और जहाँ ऑक्सीजन की कमी की वजह से मारा मारी थी। अगर ये ऑक्सीजन हमें क्षण भर न मिले तो सच बात तो ये है कि जीवन समाप्त हो जाएगा। इस ऑक्सीजन का किस तरीके से हम ख्याल रख सकते हैं, किस तरीके से नेचर का ख्याल रख सकते हैं, कुछ ऐसी ही बातें। यानी कि शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर अगर आप 5 फल और सब्जियां खाएंगे तो शरीर को भरपूर रूप से मिलेगी आपको एनर्जी। जी हाँ, शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं, इसलिए ऑक्सीजन का स्तर बनाए रखना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं कि शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को कैसे कंट्रोल रखें। लेकिन इससे हटकर एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप पौधे लगाएंगे, किसी पौधे को सींचेंगे तो निश्चित तौर पर वो एक बड़ा वटवृक्ष का रूप धारण कर लेगा जो कि आगे चलकर आपको ऑक्सीजन देगा ही देगा। इसलिए पर्यावरण का ख्याल रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं तो बात सामने आती है ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने वाले कुछ फूड्स के बारे में जानते हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जिस तरह पानी की जरूरत होती है उसी तरह ऑक्सीजन भी बहुत जरूरी है। ये कोशिकाओं को बनाने के साथ साथ उनके बेहतर कार्यों में मददगार होती है। ऑक्सीजन हवा के जरिए शरीर को प्राप्त होता है। हम में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनके शरीर में ऑक्सीजन लेवल काफी कम होता है। ऐसे में ऑक्सीजन के स्तर को कंट्रोल करने के लिए आपको कुछ प्रयास की जरूरत है। शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को कंट्रोल करने के लिए आप कुछ खाद्य पदार्थों की मदद ले सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे कुछ खाद्य पदार्थों के बारे में। पालक से करें ऑक्सीजन की कमी दूर। कैसे जानते हैं? पालक स्वास्थ्य के लिए काफी हेल्दी होता है। ये न सिर्फ शरीर में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने में आपकी मदद कर सकता है बल्कि इससे आप शरीर में आयरन की कमी को भी दूर कर सकते हैं। जी हाँ, आयरन की मदद से शरीर में ऑक्सीजन का प्रभाव बेहतर होता है जिससे आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी दूर होती है। इसके साथ ही ये आपके शरीर की मांसपेशियों की मजबूती को भी बढ़ावा देता है। अब बात करते हैं शकरगंध से करें ऑक्सीजन की कमी दूर। कैसे? शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर आप शकरगंध का सेवन कर सकते हैं। शकरगंध एंटीऑक्सीडेंट्स का काफी अच्छा स्रोत है। इसकी मदद से आप शरीर के अंगों को सुरक्षित रख सकते हैं। इसके अलावा ये मैग्नीशियम और पोटेशियम का भी अच्छा स्रोत होता है जो शरीर में ऑक्सीजन की कमी से होने वाले नुकसान को कम कर सकता है। बात ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाए एवोकाडो, यानी शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने में एवोकाडो भी काफी हेल्दी माना जाता है। इससे ब्रेन में ऑक्सीजन का प्रवाह सही तरीके से होता है जिससे शरीर में ऑक्सीजन के स्तर में सुधार ला सकते हैं। बात नींबू की। नींबू है असरदार। नींबू अगर आप शिकंजी में मिलाकर पीते हैं तो जाहिर सी बात है नींबू यूं कहें कि शिकंजी के बगैर अधूरी है। नींबू अगर आप सलाद में डालते हैं तो सलाद स्वादिष्ट हो जाता है। नींबू पानी पीते हैं तो वो आपकी सेहत के लिए बड़ा ही लाभदायक है। शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर नींबू के रस का सेवन करें। नींबू के रस में मौजूद गुड़ शरीर में ऑक्सीजन लेवल को कंट्रोल करने में असरदार होता है। इसके साथ ही इसमें मौजूद पोटेशियम आपके माइंड को अलर्ट रखने में असरदार होता है। बात तरबूज की। जी हाँ, तरबूज गर्मी के सीजन में हर रोज अगर आप खाते तो निश्चित तौर पर आपको इसका फायदा मिलेगा और गर्मी के मौसम में बहुत तादाद में देखा जाता है तरबूज। जी हाँ, तरबूज से ऑक्सीजन की कमी से राहत मिलती है। कैसे जानते हैं? शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने के लिए आप तरबूज का सेवन कर सकते हैं। दरअसल तरबूज में अल्कालाइन की अधिकता होती है जो आपके शरीर के पीएच लेवल को बनाए रखने में मददगार साबित हो सकते हैं। इसके अलावा तरबूज में बीटा कैरोटीन और लाइकोपिन मौजूद होता है जो शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को बनाए रखने में असरदार है। तो कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही है कि अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें और हाँ, नेचर का ख्याल रखें। नेचर का ख्याल रखेंगे तो भरपूर मात्रा में आपको ऑक्सीजन मिलती रहेगी। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मेरे यानी गगन के साथ।

प्रेमी साथियों, बहुत खुशामद की निर्भाग उर्मिला ने, लेकिन उन कमबख्त नीरज के माँ और बाप के दिल में ये बात ना आई कि हत्या नहीं कर

आग जलनी शुरू हो गई और उर्मिला ने शोर शराबा मचाना शुरू कर दिया। मेहरबानों, जिसका दुनिया में कोई साथी नहीं होता, उसका परमपिता परमात्मा हिमाद्री बन के आता है। उर्मिला की आवाज पड़ोसी पड़ोसी ने सुन लिया। दिन का पहर था, लोग इकट्ठे हो गए। उसकी जिंदगी थी, हाथों को तोड़ दिया और उर्मिला को जिंदा बचा लिया। मेहरबानों, गांव के लोगों ने थाने में खबर भेज दी। अब तो पुलिस आ गई और दरोगा ने जब उर्मिला की हालत को देखा तो किस तरह से उसे बयान लेने लग गया। सुनिए इस रागनी में।

0: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
1: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
0: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
1: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
0: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
1: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
0: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
1: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
0: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
2: कम एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट व्हिच मेक्स यू इंडस्ट्री रेडी।
3: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशादा 90.8 एफएम कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
2: सो वेयर आर यू, द वर्ल्ड इज हियर at Sharda University.
4: नमस्कार, मैं हूँ साकिब शेख और आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM। और आज इस कार्यक्रम में हम एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण बात को लेकर हाजिर हुए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा को लेकर हाजिर हुए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप रेडियो का वॉल्यूम बढ़ाकर हमारे करीब आए और इस चर्चा में शामिल हों। श्रोताओं, आज हम इस कार्यक्रम में बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि ये कार्यक्रम जो है आप 90.8 FM यानी सुनो शारदा और स्मार्ट के सौजन्य से सुन पा रहे हैं। और आज इस कार्यक्रम में हम बात करने जा रहे हैं लैंगिक हिंसा किशोरवय के लिए क्यों मायने रखती है। इसमें हम आज खास तौर से बात करेंगे लैंगिक हिंसा के संदर्भ का कारण और लैंगिक हिंसा की परिभाषा के बारे में बताएंगे कि एक जो प्रॉपर परिभाषा है वो क्या है। और खास तौर से हम बात करेंगे जीवन चक्र के दौरान कौन कौन सी लैंगिक हिंसा हमारे समाज में क्रूतियां के रूप में मौजूद है। और खास तौर से आज हम बात करने जा रहे हैं जन्म से पहले कौन कौन सी क्रूतियां हैं, जैसे जेंडर आधारित लिंग चयन, गर्भावस्था के दौरान पिटाई, महिलाओं के भावात्मक और शारीरिक प्रभाव, भावी शिशु प्रभाव और अत्याचार के कारण गर्भधारण, उदाहरण के लिए युद्ध में सामूहिक बलात्कार। और फिर उसके बाद हम शैशव गुण के बारे में भी बात करेंगे, यानी कन्या हत्या, भावात्मक तथा शारीरिक दुर्व्यवहार, बालिका शिशुओं से भोजन उपलब्धता तथा चिकित्सा के देखभाल के मामले में भेदभाव। और हम बात करेंगे बालिकाओं का बचपन यानी बाल शीघ्र विवाह, यौन उच्छेदन, पारिवारिक सदस्य तथा अजनबियों द्वारा यौन दुर्व्यवहार, भोजन, शिक्षा तथा चिकित्सा देखभाल तथा पशुओं में भेदभाव। और अंत में बात करेंगे बाल वेश्यावृत्ति यानी चिल्ड्रन प्रोस्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर। आपसे ढेर सारी बातें करनी है, तो आप रेडियो के थोड़ा करीब आ जाइए और अपने वॉल्यूम को बढ़ा लीजिए। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि आप हमारी वो दो माध्यम नोट कर लीजिए जिसके जरिए से आप अपनी राय, प्रतिक्रिया या फिर फीडबैक दे सकते हैं। तो आज हम मोटा मोटी यूँ कह लीजिए कि आज हम क्या बात करने जा रहे हैं, यौन हिंसा के बारे में बात करने जा रहे हैं। हमारा वो दो माध्यम फोन नंबर और ईमेल एड्रेस है। हमारा फोन नंबर है 01204060205 यानी 01204060205 एंड हमारा ईमेल एड्रेस है 90.8fm@sharda.ac.in। ये हमारा ईमेल एड्रेस है। तो चलिए बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर। ज्यादातर इस कार्यक्रम को लेकर हमारे सहयोगी गगन आप तक पहुंचते हैं और आपसे बातचीत करते हैं। आज मैं हाजिर हूं और ढेर सारी बातें कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि लैंगिक हिंसा किशोरवय के लिए ये क्यों मायने रखती है, आज हम इस टॉपिक, इस विषय पर बातचीत कर रहे हैं। तो चलिए आज हम मुद्दे की बात करते हैं, लैंगिक हिंसा संदर्भ।

दोस्त गरिमा, सुरक्षा और उनकी छवि पर प्रहार करती है या यूं कह लीजिए कि उनको नुकसान पहुंचाती है। इसके प्रभाव बहुआयामी होते हैं। शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक यद्यपि पुरुष और महिलाएं दोनों ही अपने सामाजिक लिंग की वजह से हिंसा का सामना कर सकते हैं, लेकिन सामाजिक लिंग आधारित कठोर विभेद तथा समान शक्ति संबंधों की वजह से महिलाओं में लड़कियां इनके प्रति खास तौर से असुरक्षित होती हैं। महिलाओं की श्रेणी के अंदर भी अनेक सामाजिक सांस्कृतिक कारकों की वजह से किशोरियां एक विशेष असुरक्षित समूह होती हैं। आशा करता हूँ कि आप जो है लैंगिक हिंसा को भली भांति समझ पा रहे हैं, और फिर भी हम चाहेंगे कि आपको हम लैंगिक हिंसा की परिभाषा बताएं। लैंगिक हिंसा की क्या परिभाषा होती है? श्रोताओं, किसी हानिकारक कृत्य के लिए एक सामाजिक शब्द जो किसी व्यक्ति की इच्छा के खिलाफ उसके साथ किया गया हो और पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक रूप से आरोपित लैंगिक अंतरों पर आसाद किया गया हो और पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक रूप से आरोपित लैंगिक अंतरों पर आधारित हो, उसे हम लैंगिक हिंसा कहते हैं। तो ये थी परिभाषा, जहाँ पुरुष और लड़के विशेषकर यौन हिंसा के प्रति असुरक्षित हो सकते हैं, वहीं पुरुषों और लड़कों की तुलना में महिलाओं और लड़कियों पर यौन हिंसा का अधिकार अधिक प्रभाव पड़ता है। लैंगिक हिंसा शब्द इन प्रकार के कृत्यों के लैंगिक आयाम रेखांकित करता है। दूसरे शब्दों में, समाज में महिलाओं के निम्न स्तरीय दर्जे तथा हिंसा के प्रति उनकी बढ़ी हुई असुरक्षित दशा के बीच संबंध है। तो आप भली भांति जान चुके हैं कि लैंगिक हिंसा क्या होती है। किसी हानिकारक कृत्य के लिए एक सामूहिक शब्द जो किसी व्यक्ति की इच्छा के खिलाफ उसके साथ किया गया हो और जो पुरुष तथा महिलाओं के बीच सामाजिक रूप से आरोपित अंतरों पर अधिकारित हो। अब हम ये बात करेंगे कि कौन कौन सी अवस्था है, कौन कौन सी एज है जिसमें किस प्रकार से महिलाएं हिंसा का शिकार होती हैं। लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि आप तक एक गीत पहुंचाएं, एक नगमा पहुंचाएं, और उसके बाद हम हाजिर होंगे और आपसे बातचीत करेंगे। और फिर से एक बार हम चाहेंगे कि हम अपना वो दो माध्यम आप तक पहुंचाएं जिसके ज़रिए से आप इस कार्यक्रम के बारे में फीडबैक दें या इस प्रकार के कार्यक्रम आप जब भी सुन

में जानकारी दे सकते हैं। सुनो शारदा 90.8 FM पर आप बने हुए हैं साकिब के साथ, और वो दो माध्यम जिसके जरिए से आप अपना फीडबैक और राय प्रतिक्रिया देते हैं वो है फोन और ईमेल एड्रेस। हमारा फोन नंबर है 01204060205 यानी 01204060205 एंड हमारा ईमेल एड्रेस है 90.8fm@sharda.ac.in। इट मीन्स 90.8fm@sharda.ac.in। तो श्रोताओं आइए लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और हम बात करेंगे कि किस किस अवस्था में महिलाओं पर किस प्रकार के अत्याचार किए जाते हैं, किस प्रकार से हिंसा किए जाते हैं, किस प्रकार से यौन हिंसा किए जाते हैं। तो आइए लेते हैं एक

से स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त साकिब शेख। श्रोताओं, बहुत सारी बातें हम ब्रेक पे जाने से पहले कर चुके हैं। जैसा कि हमने बताया कि आज हम बात कर रहे हैं लैंगिक हिंसा के संदर्भ में, और इस कार्यक्रम में हम क्या क्या चीज़ें शामिल करने जा रहे थे स्टार्टिंग में हमने वो भी बताया। ब्रेक पे जाने से पहले हम परिभाषा बात कर रहे थे कि लैंगिक हिंसा जो है शब्दों में या यूँ कह लीजिए कि असल वाक्यों में किसे कहते हैं, और हमने वादा किया था कि ब्रेक पे आने के बाद हम आपसे बातचीत करेंगे कि वो कौन कौन सी अवस्था है जिसमें हम लैंगिक हिंसा को देखते हैं, या यूँ कह लीजिए कि जीवन चक्र के दौरान लैंगिक हिंसा कौन कौन सी है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जन्म से पहले यानी जब भ्रूण में बच्चा होता है उस वक्त उनके ऊपर किस तरह से अत्याचार किए जाते हैं, या फिर उस महिला को जो गर्भवती है उस पर किस तरह से हिंसा किया जाता है। जेंडर आधारित लिंग चयन चीन, भारत, कोरिया, गणतंत्र का गर्भावस्था के दौरान पिटाई, महिलाओं पर भावात्मक और शारीरिक प्रभाव, भावी शिशु पर प्रभाव और अत्याचारों के कारण गर्भधारण, उदाहरण के लिए युद्ध में सामूहिक बलात्कार, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रखती हैं। हम आपको बता दें, सबसे पहले हमने क्या कहा कि चीन और भारत, कोरिया, गणतंत्र जो ये डेवलपिंग कंट्रीज है, जो ये विकासशील देश है, उनमें जो गर्भावस्था के दौरान अक्सर देखा जाता है कि इन देशों में महिलाओं पर बहुत बड़ा अत्याचार किया जाता है, उनको पिटाई की जाती है, और जिसकी वजह से काफी प्रभाव पड़ते हैं उनके शरीर के ऊपर, काफी प्रभाव पड़ जाते हैं, और जो एक बहुत स्वस्थ बच्चे को जन्म देने वाली महिला होती है जिसके दिमाग का विकास बहुत अच्छा होना होता है लेकिन वो नहीं हो पाता, क्यों? क्योंकि उसे, उस महिला के ऊपर बहुत बड़े बड़े अत्याचार किए जाते हैं जब वो गर्भ अवस्था में होती है। अत्याचार के कारण गर्भधारण, उदाहरण के लिए युद्ध में सामूहिक बलात्कार इत्यादि इसमें बहुत ज्यादा शामिल है। इन सारे देशों में ये सब चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन युद्ध के समय की बात करें तो अभी तो ये चीजें नहीं है, लेकिन हाँ, जब भी ये चीजें होती है तो महिलाओं के ऊपर एक बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर कोई एक समूह दूसरे समूह से युद्ध करता है तो वो उसकी महिलाओं के ऊपर टारगेट करता है और उसकी महिलाओं का शोषण करते हैं। अब बात यहाँ पर ये समझ में नहीं आती कि अगर आपका युद्ध किसी एक देश से है, किसी एक समुदाय से है, किसी एक अलग समाज से है, तो इसमें महिलाओं का क्या दोष है, आप क्यों उनको टारगेट करते हैं? खैर, ये बात है। फिर शैशव गुण की बात हम करें तो कन्या हत्या, भावात्मक तथा शारीरिक दुर्व्यवहार, बालिका शिशुओं में भोजन उपलब्धता तथा चिकित्सा देखभाल के मामले में भेदभाव होते हैं। अब इनको हम अगर विस्तार से बात करें तो देखा जाता है कि ज्यादातर लोग असामाजिक तत्वों को अपनाते हैं और क्या करते हैं कि महिलाओं को, कन्याओं को गर्भ में ही मार देते हैं, कन्या हत्या कर देते हैं, या फिर कन्या अगर पैदा हो जाती है यानी लड़की के रूप में अगर आपके घर में कोई आता है तो आप सोचते हैं कि काफी सारा दहेज देना पड़ेगा, काफी सारा जो है हमारा खर्चा होगा इसकी शादी में, तो इससे बेहतर है कि इससे निपटारा किया जाए या इसे इसी वक्त जो है खत्म कर दिया जाए। ज्यादातर तो यही देखा गया है कि जब महिला गर्भवती होती है और उसका अल्ट्रासाउंड करवाते हैं और उसके बाद पता करवाते हैं कि इसके गर्भ में जो है बालक है या बालिका है, बालिका है तो वो उसकी हत्या गर्भ में ही कर दी जाती है और बालक है तो वो सेफ है। तो ये तो सबसे बड़ा हमारे समाज की विडंबना है, या यूं कह लीजिए कि हमारे समाज में ये बहुत बड़ी कुकृति है। और यौन उच्छेदन की बात करें तो अक्सर ये देखा जाता है कि महिलाओं के ऊपर बहुत बड़ा, खासतौर से किशोरियों के ऊपर ये बहुत बड़ा जो है अत्याचार है। आपने अक्सर सुना होगा, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा और बहुत सारे समाचार में सुना होगा, आपने न्यूज स्टेशन पे यानी रेडियो स्टेशन पे, टीवी पे आपने ये सुना होगा कि आज जो है एक किशोरी के साथ उसके घर वालों ने अत्याचार किया या उसके चाचा ने, उसके पड़ोसियों ने अत्याचार किया। तो महिलाएं या यूं कह लीजिए कि ये किशोरियां जो हैं, ये जो लड़कियां हैं, ये कहाँ पर सेफ हैं? आप किन से बात कर रहे हैं? आप अपने समाज के उन वर्ग से बात कर रहे हैं जो आपके समाज को एक विकास की ओर ले जा सकता है, लेकिन आप उसमें बाधा डाल रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप एक नाबालिग उम्र की, कम उम्र की लड़की के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, उनका यौन शोषण कर रहे हैं। मेरा मतलब आपसे मतलब ये नहीं कि आप जो हमें सुन रहे हैं उनकी बात हम कर रहे हैं, लेकिन हाँ, आपसे भी यही मतलब है कि आप अगर सुन रहे हैं और आपके समाज में ये हो रहा है, कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है और आप ये जानते हैं, इसका मतलब आप भी इसमें शामिल है अगर आप खामोश हैं तो। इसीलिए यहाँ पे हम
आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो श्रोताओं, इस कार्यक्रम में और भी बहुत सारी बात करेंगे, जैसा कि अभी हमने बाल कन्या हत्या और भावात्मक और शारीरिक दुर्व्यवहार के बारे में बात की, और बालिका शिशुओं में अब हम बात करेंगे भोजन उपलब्धता तथा चिकित्सा के देखभाल के मामले में हम भेदभाव के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले

आपके साथ आपका दोस्त आपका होस्ट साकिब शेख। और आज हम बात कर रहे हैं लैंगिक हिंसा के बारे में और खास तौर से उत्पीड़न के बारे में और खास तौर से अत्याचारों के बारे में, और वो अत्याचार जो महिलाओं के ऊपर, किशोरियों के ऊपर और कम उम्र की लड़कियों के ऊपर किए जाते हैं। तो ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कन्या हत्या के बारे में, बात कर रहे थे भावात्मक तथा शारीरिक दुर्व्यवहार के बारे में, बात कर रहे थे और हमने वादा किया था कि बालिका शिशुओं से भोजन उपलब्धता तथा चिकित्सा के देखभाल के मामले में भेदभाव के बारे में हम बात कर रहे थे। तो श्रोताओं, इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हम आपसे साझा करना चाहते हैं कि हमने कहा था कि आपसे हम ये बातें तो करेंगे, लेकिन आप भी अपने समाज में देख रहे होंगे कि ज्यादातर जो ये किशोरियां होती हैं, यानी मेरा कहने का मतलब है कि आपके घर में अगर एक लड़का है एक लड़की है, दोनों के भोजन में बिल्कुल अलग प्रकार का भेदभाव होता है। अगर लड़का है तो उसे अच्छा खाना देंगे, लड़कियां हैं तो उसे खराब खाना देंगे, या यूं कह लीजिए कि बासी खाना दे देंगे, या यूं कह लीजिए कि रात का बचा हुआ खाना उसके लिए होता है। दूसरी चीज़ें क्या भेदभाव होती हैं कि न्यूट्रिशन वैल्यू जो लड़कों को दी जाती है वो लड़कियों के लिए नहीं। अक्सर देखा जाता है कि दूध फल ये सब चीज़ें लड़कों के लिए स्पेशली इंतज़ाम किए जाते हैं, कहते हैं ये तो कुल का दीपक है, और लड़कियों के लिए इन चीज़ों का अभाव होता है, या यूं कह लीजिए अगर बच गया तो ठीक है, नहीं तो लड़कियों को जूठन होता है, या यूं कह लीजिए कि जो बचा हुआ खाना होता है उसके ऊपर हमेशा निर्भर रहना पड़ता है, या फिर खाने की क्वालिटी ज्यादा अच्छी नहीं होती। तो किशोरियों के साथ ये अक्सर भेदभाव हमारे देश में पाया जाता है, ये हमारी सामाजिक विडंबना है, हमारे समाज की बनावट है, इस सच्चाई से हम भाग नहीं सकते। लेकिन इसके समाधान है, क्यों नहीं है, बिल्कुल हम इससे दूर जा सकते हैं, हम इस बुराई को ख़त्म कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने ये कहा कि आप ही अत्याचारी हैं, अभी ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको ही संबोधित कर रहे थे, क्योंकि आप समाज का हिस्सा हैं। आप अगर समाज के अंदर किसी अत्याचार को होते हुए देख पा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप उस अत्याचार में शामिल हैं, या फिर आप जो हैं उस अत्याचार के हिस्सा हैं अगर आप उसको रोक नहीं पा रहे हैं। कहते हैं कि रोकने की कई सारी सीमाएं होती हैं, अगर आप बलि नहीं हैं, अगर आप बलि हैं तो अपनी ताकत से उसे रोक दीजिए, बलि नहीं हैं तो कम से कम आप जो हैं किसी न्यायालय या फिर पुलिस स्टेशन का सहारा लेकर उसे आप रोक सकते हैं। अगर वो भी आप नहीं कर सकते तो कम से कम आप अपने मन से उसको बुरा तो कह ही सकते हैं। ये बहुत तुच्छ और बहुत ही छोटा सा एक उदाहरण है जिसके जरिए से आप अपने आप को समाज में यूं कह सकते हैं कि आप अपने आप को उस व्यक्ति के अंदर नाप सकते हैं कि आपके अंदर भी इंसानियत बाकी है। तो श्रोताओं, हम बात कर रहे थे बालिका शिशुओं में भोजन के बारे में जो भेदभाव किए जाते हैं उसके बारे में बात कर रहे थे। अब हम बात करने जा रहे हैं कि किस प्रकार से चिकित्सा की देखभाल में भी भेदभाव होते हैं, यानी अगर आपके घर में लड़का और लड़की दोनों मौजूद हैं तो आपने ये देखा होगा, अक्सर ही आपने, या फिर आपके घर में नहीं तो आप अपने पड़ोस में समाज में ये देखा होगा कि दोनों के बीच अक्सर भेदभाव। अगर लड़कियां बीमार पड़ती हैं तो लड़कियों को जल्दी डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाता, या यूं कह लीजिए कि लड़कियों को जो है सही चिकित्सा से महरूम रखा जाता है, या यूं कह लीजिए कि लड़कियों को अक्सर देखा जाता है कि उसे जो है घरेलू दवाओं से सरोकार करना पड़ता है, या फिर आसपास के वैद्य या फिर झोला छाप डॉक्टर को ज्यादा से ज्यादा करते हैं, घर वाले आसपास के डॉक्टर को बुला देते हैं। तो इससे क्या, किन चीजों पर असर पड़ने वाला है? बार बार मैं यही कह रहा हूँ कि इससे जो है हमारे समाज के ऊपर असर पड़ने वाला है। तो चिकित्सा में भेदभाव, अगर आप कहते हैं कि लड़कों को अच्छे से अच्छे डॉक्टर के से दिखाया जाए, अगर उसे कोई परेशानी आती है, शारीरिक व्यवहार में कोई परेशानी आती है, शारीरिक बदलाव में कोई परेशानी आती है, तो आप फटाक से अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं और कहते हैं कि अरे बाप रे मेरे लड़के को ये हो गया। हल्का सा पेट में दर्द हो या आँख में दर्द हो तो आप अपने लड़के को लेकर बड़े मेडिकल में भागते हैं, लेकिन वहीं अगर किशोरी या लड़कियों की बात आती है तो आप क्या करते हैं, आप ये करते हैं कि उनके साथ भेदभाव करते हैं, झोला छाप डॉक्टर का इस्तेमाल करते हैं, या अपने घर में कोई दवा रखी होगी या गलत सलत दवा उठाकर उनको दे देते हैं, या फिर आप यूँ करते हैं कि घरेलू, कहते हैं ये तो खान पान से ठीक हो जाएगा। खान पान भी आप सही ढंग से कहाँ देखभाल कर पाते हैं, उनको तो खान पान का भी सही आपने भागीदारी नहीं बना रखा है, उनको हक ही नहीं देते आप। तो ये बात हम कर रहे हैं कि आपके समाज में, हमारे समाज में ये अत्याचार हो रहे हैं, खास तौर से लड़कियों के ऊपर कन्या हत्या किया जाता है उनका, और शारीरिक दुर्व्यवहार, अगर गलती से लड़कियां पैदा हो जाए तो उसके आस पड़ोस जैसे कि जानवर
के रूप में उनसे पेश आते हैं और उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। बालिका शिशुओं से भोजन उपलब्धता में आप भेदभाव करते हैं, चिकित्सा में भेदभाव करते हैं, और अगर उसके साथ कोई ऊंच नीच हो जाती है तो आप उसे बिल्कुल समेटने की कोशिश करते हैं, छुपाने की कोशिश करते हैं। अरे बाप रे, बेटी है, अगर ये समाज जान गया तो उनकी शादी नहीं होगी। आप पुलिस के पास उनको न्याय दिलाने के लिए नहीं ले जा पाते हैं। क्यों? ये सब चीजें हमारी कुरीतियों में शामिल है, हमारे समाज की कुरीतियों में शामिल है। तो ये बात हम कर रहे हैं कि आज हम जीवन चक्र के दौरान लैंगिक हिंसा के बारे में, कौन कौन सी जीवन चक्र है, जन्म से पहले क्या क्या चीजें हैं, और शैशव गुण में क्या क्या लैंगिक हिंसा हमारे समाज में पाए जाते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं बालिकाओं का बचपन। अब उस अवस्था में कौन कौन सा जो अत्याचार हम अपने समाज में देखते हैं या हम अपने घरों में देखते हैं। हम तो डायरेक्ट बात करना चाहते हैं कि हम अपने घरों में इन चीजों को देख पाते हैं, लेकिन हम इतने बेशरम हैं कि हम उसे रोक नहीं पाते। खैर, फिलहाल प्रोग्राम में वक्त है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे। श्रोता, ये कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा है आप हमें दो माध्यम से बता सकते हैं, यानी फोन नंबर के जरिए से और ईमेल के जरिए से। और आप हमें फोन करेंगे 01204060205 पर, यानी 01204060205, एंड आप हमें 90.8 FM @sharda.ac.in यानी इंटरनेट के माध्यम यानी ईमेल के माध्यम से भी आप हमें फीडबैक या फिर राय प्रतिक्रिया दे सकते हैं। तो आइए लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक।

म्यूजिकल ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त साकिब शेख। और ब्रेक पे जाने से पहले हमने बहुत सारी बातें कर ली हैं, जैसे जन्म से पहले जो है हम, चलिए हम सबसे पहले बताते हैं कि आज हम किस बारे में बात कर रहे हैं। आज हम स्मार्ट के सौजन्य से, यानी सुनो शारदा पर यह कार्यक्रम आप स्मार्ट के सौजन्य से सुन पा रहे हैं। और जीवन चक्र के दौरान जो लैंगिक हिंसा है उसके बारे में हम बात कर रहे थे। और आज हम बात कर रहे हैं खासतौर से महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार के बारे में, यानी लैंगिक हिंसा के बारे में बात कर रहे हैं। तो जन्म से पहले क्या क्या अत्याचार हो रहे थे ये भी हमने बातचीत की। शैशव गुण क्या, कन्या हत्या, भावात्मक और शारीरिक दुर्व्यवहार, बालिका शिशुओं से भोजन उपलब्धता और चिकित्सा देखभाल के मामले में भेदभाव के बारे में हमने ब्रेक पे जाने से पहले बातचीत की। अब बालिकाओं का बचपन जो होता है, जब बालिकाएं छोटी होती हैं, उसके ऊपर किस प्रकार से भेदभाव है, या यूं कह लीजिए कि उसके ऊपर लैंगिक हिंसा किस प्रकार से होती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो बाल शीघ्र विवाह, यौनांग उच्छेदन, पारिवारिक सदस्यों तथा अजनबियों द्वारा यौन दुर्व्यवहार, भोजन, शिक्षा तथा चिकित्सा देखभाल तथा पहुँच से भेदभाव, बाल वेश्यावृत्त इत्यादि। तो आइए एक एक करके इस विषय को हम कवर करते हैं। बाल शीघ्र विवाह की बात करें तो हम देख सकते हैं कि हमारे देश में भी कई राज्य ऐसे हैं, जैसा कि शुरुआत में हमने ये कहा था कि कई सारे ऐसे देश है जैसे भारत है, चीन है, कोरिया है और अफ्रीका है, इन सारे डेवलपिंग कंट्रीज में जो ऐसा होता है कि लड़कियों के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार किए जाते हैं। तो हमारे देश में, अगर हम अपने देश की बात करें, तो बाल विवाह का जो चलन है बहुत ही जोरों पर अभी भी है। हालांकि हम 21वीं सदी में हैं, लेकिन हमारे कई सारे राज्य ऐसे हैं जिसमें बाल विवाह बहुत चरम पर है। जैसे कि इनमें सबसे ज़्यादा जो है बात आती है वो है उत्तर प्रदेश है, बिहार है और खासतौर से राजस्थान और हरियाणा है। तो ये दोनों राज्य, राजस्थान और हरियाणा, सबसे ऊपर जो कहेंगे कि अगर इस दर्जे में आते हैं तो सबसे ऊपरी दर्जे में ये दोनों राज्य आते हैं, जहां बाल विवाह जैसी कुरीतियां बहुत ज्यादा हमारे समाज में पाई जाती हैं। तो इसको रोकथाम के लिए हम किसी न किसी प्रोग्राम में हम बात करेंगे, लेकिन आज हम आपको ये आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे समाज में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जो हैं पाई जा रही हैं, लेकिन हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। बाल विवाह का मतलब ये होता है कि बच्चों की किशोर अवस्था में ही बच्चियों की शादी कर दी जाती है। इसका मतलब ये है कि अगर उसके बुद्धि का विकास होना होगा तो वो नहीं हो पाएगा। कैसे हो पाएगा? क्योंकि उसे आगे जाके उसकी पढ़ाई रोक दी जाएगी और उसे ससुराल में कई प्रकार से अपने जो परिवार है उसका बोझ उठाना पड़ता है, चूल्हा चौका है, घर के काम काज हैं, या फिर यूं कह लीजिए कि जो औरतें हैं जो बाल अवस्था में ही शादी हो जाती हैं, जिन लड़कियों की, वो अपने ससुराल में जाती हैं तो उनको वक्त कहाँ मिल पाएगा कि वो पढ़ पाएंगे या फिर कुछ ऐसे कार्य कर पाएंगे जिससे उनका विकास हो सके या उनके बुद्धि का विकास हो। उनका बुद्धि का विकास तो वहीं पर रुक गया जब उनकी शादी हो गई। अब उस अवस्था में अगर उसका गर्भ धारण हो जाता है या यूं कह लीजिए कि बच्चा होने वाला होता है, तो फिर अब वो उसका हमेशा उसी पर ध्यान रहेगा। किस प्रकार से उस कच्ची सी उम्र में उसके सेहत पर प्रभाव पड़ेगा, उसके दिमाग पर प्रभाव पड़ेगा, उसके शारीरिक बनावट पे प्रभाव पड़ेगा, उसके बहुत सारी ऐसी अवस्थाएं जिस पर बहुत सारे प्रभाव पड़ने हैं। तो जो ये कुरीति है यानी बाल विवाह है, वो समाज का हमारे कड़वा सच है और इसे हमें मान लेना चाहिए और हम इसे देखते भी हैं और हम इसे रोक नहीं पाते। अब बात करते हैं यौनांग उच्छेदन की, बात करते हैं। कई सारे हमारे राज्य हैं जिसमें इस प्रकार के कल्चर हैं कि लड़कियों का खतना किया जाता है। मैं इस बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं करना चाहता। आप अगर समझदार हैं, आप हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं, तो आप जो है क्या कर सकते हैं, आप गूगल पर इसके बारे में जान सकते हैं कि कई सारे ऐसी कुरीतियां जो हमारे समाज में हैं और जो इस प्रकार के अवस्था को अपनाते हैं, जैसे लड़कियों का खतना के बारे में, तो उनकी क्या सोच है? उनकी बस एक ही सोच है कि लड़कियों के ऊपर जो है कोई ऐसा दुर्व्यवहार ना हो या लड़कियों का जो है कोई यौन शोषण ना करने पाए। तो ये बहुत ही एक तरह से हम कह सकते हैं कि अत्याचार जैसी बातें, आप उस बालिका के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। और हमने ये कहा था कि हम बतलाएंगे आपको कि अजनबियों के द्वारा किस प्रकार से यौन दुर्व्यवहार किए जाते हैं। आपने देखा होगा अक्सर जो है कोई लड़की अगर कभी बाहर निकली है तो पांच लड़के खड़े होकर उसको क्या करते हैं, उसको एव टीजिंग करते हैं या फिर उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं या फिर उसका दुपट्टा खींच लेते हैं या फिर उसके साथ कई सारे ऐसे कार्य करते हैं जो समाज

लिए उचित नहीं है। फिर वही समाज आ गया और फिर वही उचित वाली बात है। जब ये समाज के लिए उचित नहीं है तो ये फिर हमारे समाज में वो ही क्यों रहे। खैर छोड़िए, इन पहलुओं पर हम बातें नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे थे कि अजनबियों द्वारा यौन दुर्व्यवहार किस प्रकार से किया जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि स्कूल जाती लड़कियों को रास्ते में रोककर उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ या यौन उत्पीड़न हुआ या उनके साथ कोई अत्याचार हुआ। तो ये चीजें शामिल हैं हमारे समाज में, ये देखा जाता है। ये इससे हम गुरेज नहीं कर सकते या यूं कह लीजिए कि उसका निपटारा हम बहुत मुश्किल से कर पा रहे हैं। हम देख पा रहे हैं, हम मौन हैं, हम खामोश हैं, हम इन चीज़ों को रोक नहीं पा रहे हैं। श्रोताओं दोस्तों, और अब ये घड़ी जो है हमें ये इशारा कर रही है, इस कार्यक्रम को हमें यहीं पे विराम देना चाहिए और अगले कार्यक्रम के लिए हमें बढ़ना चाहिए। लेकिन हम आपसे यही कहेंगे कि आज दी गई जानकारी के बारे में आप हमें कुछ न कुछ तो बताइए, या फिर आप भी इस कार्यक्रम के बारे में कुछ जानकारी रखते हैं तो आप हमें वो दो माध्यम से, अभी थोड़ी देर में हम आपको वो दो माध्यम बताने जा रहे हैं जिसके जरिए से आप हमें फीडबैक या फिर अपनी जानकारी या फिर अपनी राय प्रतिक्रिया दे सकते हैं। तब तक आप अपना फोन या फिर डायरी निकाल लीजिए, तब तक हम आपसे बताते हैं कि आज हमने इस कार्यक्रम में क्या क्या बातें की हैं। आज हम इस कार्यक्रम में खासतौर से लैंगिक हिंसा के शुरुआत के लिए क्यों मायने रखती है। उम्मीद करता हूं कि आप जो हैं इस कार्यक्रम का लाभ उठाएंगे, अपने समाज में इन कुरूतियों को रोकने की कोशिश करेंगे और सुनो शारदा के माध्यम से, सुनो शारदा के सहयोग से आप अपने समाज में जो है आगे बढ़ सकते हैं। इस तरह की अगर कोई चीजें आपके समाज में पाई जाती हैं तो आप जो है बेधड़क होकर हमारे इस सुनो शारदा से संपर्क कर सकते हैं, हम आपकी सहायता करेंगे। और श्रोताओं, हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो संस्था है उसके बारे में बात की थी, ब्रेक थ्रू एक संस्था, मानव अधिकार संस्था, उसके बारे में बात किया था। तो जाते जाते हम थोड़ा सा उनके बारे में एक बार फिर से बता दें, जो महिला और लड़कियों के खिलाफ होने वाली हिंसा और भेदभाव को समाप्त करने के लिए काम करती है। कला, मीडिया, लोकप्रिय संस्कृत और सामुदायिक भागीदारी से हम लोगों को एक ऐसी दुनिया बनाने के लिए प्रेरित करते हैं जिसमें हर कोई समानता और न्याय के साथ रह सकते हैं। इन सब के बारे में एक संस्था है जो ब्रेक थ्रू है, वो भी कार्य करता है। तो अगर आप चाहे तो इनके साथ भी संबंध बनाकर अपने समाज में हो रही कुरीतियों को रोक सकते हैं। और हमने आपसे ये भी कहा कि आप सुनो शारदा के माध्यम से सुनो शारदा को भी संपर्क कर सकते हैं और आप हमसे मिलकर इस कुरीतियों को मिटाने में सफल हो सकते हैं। हम इसके बारे में अलग से प्रोग्राम बना सकते हैं, हम इसके बारे में रीच आउट कर सकते हैं अलग अलग संस्थानों को और अलग अलग एनजीओज को। तो आप सुनो शारदा के माध्यम से ज़रूर जुड़िए और इन बातों पर ख्याल रखते हुए आगे बढ़िए। तो आज हमने इसमें खास तौर से लैंगिक हिंसा का संदर्भ तय करना और जीवन चक्र के दौरान लैंगिक हिंसा किस प्रकार से होती है, खास तौर से जन्म से पहले और शैशव गुण और बालिकाओं का बचपन, इन सब चीज़ों के बारे में बात कर चुके हैं। और हम बालिकाओं के बचपन के बारे में थोड़ा सा और बात करेंगे अगले कार्यक्रम में, और किशोर अवस्था के बारे में भी हम अगले कार्यक्रम में बात करेंगे। फिलहाल तो हमने आपसे ये कहा कि आप हमें जो है अलविदा कहिए और अगले कार्यक्रम के लिए बने रहिए। अरे हाँ, माफ कीजिएगा, वो दो माध्यम तो हमने बताए नहीं जिसके जरिए से आप हमें संपर्क करेंगे, अपनी राय प्रतिक्रिया या फिर फीडबैक देंगे। हमारा वो दो माध्यम है 01204060205, यानी हमारा फोन नंबर है। फोन नंबर एक बार फिर से सुनिए, 01204060205, और हमारा ईमेल एड्रेस है 90.8fm@sharda.ac.in। वंस अगेन वुड लाइक टू रिपीट फॉर यू, 90.8fm@sharda.ac.in। और अब इसके साथ ही साकिब शेख को दीजिए इजाजत, बने रहिए आप अपने सामुदायिक रेडियो पे। नमस्कार।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। मैंने टीवी को बहुत करीब से देखा है और हराया भी है। सही सुना आपने, बड़े धैर्य की लड़ाई थी वो। पहले मैंने टीबी के लक्षण सही पहचाने, फिर डॉक्टर की सलाह लेकर टीबी का कोर्स पूरा किया और टीबी हार गया। इलाज के दौरान थोड़ा राहत महसूस करते ही कोर्स अधूरा ना छोड़ दीजिएगा। बस इसी गलती से ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो सकता है आपको, इसीलिए टीबी का कोर्स पूरा कीजिए। यही है इसका पक्का इलाज। और सुनिए, टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। मेरी तरह आप भी पूरा इलाज कीजिए और टीबी पे जीत पाइए। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
3: हाय, मैं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा @90.8 FM।

0: भाई, भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की में आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो एक गंभीर विषय है। जी हाँ, पेशाब जिसे हम कहते हैं मूत्र, अगर इसमें खून आ रहा है तो आप एक परेशानी से जूझ रहे हैं। एक्सपर्ट क्या कहते हैं, क्या समस्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो बात सामने आती है कि पेशाब में खून आने की ज्यादातर वजह जैसे कुछ

अगर जल्दी पता लगा लिया जाए तो मूत्र पथ के कैंसर का भी अच्छा पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। मूत्र में रक्त दिखाई देने के अधिकांश मामले आपातकालीन स्थिति नहीं होते हैं। हालांकि यदि आप चक्कर आना, पेशाब करने में असमर्थता या अत्यधिक दर्द जैसे लक्षणों का अनुभव कर रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। लेकिन जिन लोगों के पेशाब में खून की अधिक मात्रा आ रही है, पेशाब करते समय अधिक दर्द हो रहा है, पेशाब करने में कठिनाई या अक्षमता महसूस हो रही है, तो उन्हें उसी समय डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं तो बात सामने आती है कि धैर्य रखना क्यों जरूरी है। अगर आप जिंदगी में धैर्य रखते हैं तो निश्चित तौर पर तमाम बीमारियों से आप अपने आप को बचा कर रख पाएंगे। एक्सपर्ट कहते हैं कि धैर्य मन का वो गुण है जिसके होने से मनुष्य विपत्ति के समय भी विचलित नहीं होता है।

0: खिलाफ साजिश रच रही है। तो ये खास जानकारी आपको कैसे लगी बताइएगा जरूर। ऐसी खास अपडेट्स के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: छोटा सा बदलाव ही जिंदगी की एक बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है।
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता लिखते हैं,
0: कार्यक्रम में दलितों के मुक्तिदाता, आधुनिक भारत में स्त्री शिक्षा के जनक और बाल विवाह एवं अनमेल विवाह के प्रबल विरोधी ज्योतिबा फुले के प्रेरणादायक व्यक्तित्व पर नाट्य

0: आपकी पूरी टीम को हार्दिक धन्यवाद। प्रश्न का उत्तर है अरावली पर्वत श्रृंखला पर जानकारी बहुत अच्छी लगी। अगला संदेश हमें मिला है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना भावना बिंदु गोलू कुसुमबाई बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार ढाकसे जी का। संदेश भेजते हुए लिखते हैं,
1: नमस्कार जी, हमें आपका उमंग कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। हम परिवार के सभी सदस्य नियमित रूप से आपके इस मनोरंजन और ज्ञान से भरपूर कार्यक्रम का बहुत आनंद लेते हैं। धन्यवाद।
0: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्यारे संदेश के लिए। और अगला संदेश हमें मिला है ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया जी का। आपने लिखा है,
1: आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी, जलीय पौधों के बारे में जो जानकारी दी बहुत बढ़िया लगी। जो हमें पता नहीं था वो हमें उमंग कार्यक्रम सुनकर मिली और आगे भी मिलती रहेगी। ऐसी आप महानुभावों से हम उम्मीद करते हैं।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्यारे संदेश के लिए। श्रोताओं, और अब बारी है प्रश्नों के उत्तरों को सुनने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, सूर्यमुखी फूल किस अवस्था तक सूर्य का अनुसरण करता है?
1: इसका उत्तर है, साथियों, सूर्यमुखी अपने शैशव से लेकर युवावस्था तक सूर्य का अनुसरण करता है और परिपक्व होने पर पूर्व दिशा में स्थिर हो जाता है।
0: अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, ब्रह्म कमल पुष्प को देखना दुर्लभ क्यों है?
1: इसे देखना दुर्लभ इसलिए है कि अक्सर ये बहुत कम खिलता है
0: जी।
1: यदि खिलता भी है तो असली फूल पत्तों के आवरण से ढका रहता है
0: जी। और अब सुनिए हमारा एक और प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था। हमने पूछा था कि माउंट एवरेस्ट के दो नाम और बताइए।
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। माउंट एवरेस्ट के दो और नाम हैं, सागरमाथा और चोमोलिंगमा।
0: और हमारा अगला प्रश्न था, नील कुरिंजी के फूल पिछली बार सन 2018 में खिले थे, ये अगली बार कब खिलेंगे?
1: नील कुरिंजी फूल क्योंकि हर 12 वर्ष के बाद खिलते हैं, इसलिए इसके खिलने की संभावना अब 2030 में है।
0: और श्रोताओं, अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था। हमारा अंतिम प्रश्न था, कमल को राष्ट्रीय फूल कब घोषित किया गया?
1: कमल को राष्ट्रीय फूल हमारे पहले गणतंत्र दिवस के अवसर पर यानी 26 जनवरी 1950 को घोषित किया गया
0: जी। तो ये थे हमारे द्वारा पूछे गए पिछले सप्ताह के प्रश्नों के उत्तर। और अब सुनिए आज का प्रश्न। तो आज का प्रश्न है, ओडिशा के सूर्य मंदिर को किसने बनवाया था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: ओडिशा के सूर्य मंदिर को किसने बनवाया था
0: जी। हमारा IVRS नंबर है 8800440559 और हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। आप हमें यहाँ अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, लिंक्डइन, फेसबुक और एक्स पर भी आप हमें यानी CIET NCERT को फॉलो जरूर कीजिए।
0: और श्रोताओ, आप प्रस्तुत हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो सुनते हैं सबसे पहले कार्यक्रम बरसात और मेंढक।
1: ये कार्यक्रम NCERT की कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें विशेष रूप से बच्चों को ये संदेश दिया गया है कि जीव जंतुओं का विशेष ध्यान रखना चाहिए और उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए।
0: बरसात और मेंढक।

0: सोमारू और कमली जंगल घूमने गए। लौटते समय उन्हें जोर की भूख लगी। उन्हें एक गाय दिखी। कमली ने गाय से कहा,
1: गाय गाय जरा सा दूध दे दो तो भूख मिटेगी।

0: घास थोड़ी सी घास ले ले।
1: पर घास तो सूख कर पीली हो गई थी। घास ने कहा,
2: मुझे पानी दो तो मैं खाने लायक बनूं।
1: कमली और सोमारू चले पानी लाने।
0: नदी नदी हमें थोड़ा पानी दे दो ना।
1: पर नदी तो सूखी हुई पड़ी थी। नदी ने कहा,
2: बरसात हो तो मुझे पानी मिले।
1: कमली और सोमारू चले बादल लाने।
0: बादल, तुम यूं मुंह लटकाए क्यों टंगे हो? थोड़ा बरस जाओ ना।
1: बादल बोले,
3: मेंढक टर टर बोले तब तो हम बरसें।
1: कमली और सोमारू चले मेंढक के पास। मेंढक बोले,
4: हम बाहर निकलते हैं तो बच्चे हमें पत्थर मारते हैं।
5: जो हुआ उसके लिए माफ करो, अब से तुम्हें कोई पत्थर नहीं मारेगा।

0: टर टर सुनकर बादल आए और झूम कर बरसे। नदी में पानी बहने लगा। कमली और सुमारू ने नदी से पानी लाकर घास को दिया। घास हरी हो गई। दोनों घास लेकर गाय के पास गए। गाय ने घास खाकर दूध दिया। कमली और सुमारू ने दूध पीकर अपने घर की राह ली।
1: तो बच्चों, सुना आपने? बरसात नहीं हुई तो सब परेशान हो गए। नदी सूख गई, घास सूख गई और दूध भी नहीं मिला। तो जरा सोचो तो बच्चों, यदि वर्षा नहीं होगी तो और क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं? इसके बारे में अपने बड़ों से पूछो। और हाँ, याद है मेढक ने की थी एक शिकायत कि बच्चे उसे पत्थर मारते हैं। तो बच्चों, हमें पशु पक्षियों जीव जंतुओं को सताना नहीं चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। हाँ,
2: अभी आप सुन रहे थे NCERT की कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम बरसात और मेंढक। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, कलाकार ममता मलकानी और बाबला कोचर, बाल कलाकार सोहम, वान्या और लवीश, ध्वनि संपादन, निर्देशन एवं निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम बरसात और मेंढक, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है शांति गीत।
3: इस सुंदर गीत में आह्वान किया गया है कि समाज के सभी वर्ग मिलजुल कर रहें और परस्पर सहयोग की भावना रखते हुए अच्छे नागरिक बनें। ऐसा करने से ही देश शक्तिशाली बनेगा और उन्नति करेगा।

0: शांति गीत अभी आपने सुना और इस गीत के बाद प्रस्तुत है कार्यक्रम नृत्यांगना सुधा चंद्रन।
1: इस कार्यक्रम में सुप्रसिद्ध नर्तकी सुधा चंद्रन के जीवन के संघर्ष और कला के क्षेत्र में उनकी उल्लेखनीय गाथा और योगदान का नाट्य रूप में वर्णन किया गया है। विशेष रूप से ये बताया गया है कि यदि दृढ़ संकल्प हो तो असंभव से लगने वाले कार्य भी सिद्ध हो सकते हैं और लोगों के लिए महान प्रेरणा बन सकते हैं।
2: जीवन के किसी भी क्षेत्र में शिखर तक पहुंचने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति और कठिन परिश्रम की आवश्यकता पड़ती है। कई लोग ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने शारीरिक अक्षमता के बावजूद संघर्ष किया है और लक्ष्य प्राप्त किया है। ऐसा ही एक नाम है सुधा चंद्रन। पैर खराब होने के बावजूद वो चोटी की नृत्यांगना बनी। सुधा चंद्रन की माता श्रीमती थंगम एवं पिता श्री के डी चंद्रन की हार्दिक इच्छा थी कि उनकी पुत्री राष्ट्रीय ख्याति की नृत्यांगना बने। इसीलिए मुंबई के प्रसिद्ध नृत्य विद्यालय कला सदन में प्रवेश के लिए पहुंचे। पहले पहल तो नृत्य विद्यालय

0: सिस्टर इसका एडमिशन कर लो। सुधा बेटे कल से आप यहाँ नृत्य सीखने के लिए आएंगे, ठीक है?
1: सच?
0: हाँ।
2: सुधा की प्रतिभा देखकर सुप्रसिद्ध नृत्य शिक्षक श्री के एस रामास्वामी भागवतार ने उसे शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया और सुधा उनसे नियमित प्रशिक्षण प्राप्त करने लगी। जल्द ही सुधा के नृत्य कार्यक्रम विद्यालय के आयोजनों में होने लगे। नृत्य के साथ साथ अध्ययन में भी सुधा ने अपनी प्रतिभा दिखाई, लेकिन सुधा के स्वप्नों की इंद्रधनुषी दुनिया में एकाएक 2 मई 1981 को अंधेरा छा गया।
1: क्या हो गया? बहुत दर्द हो रहा है।
2: उनकी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दुर्घटना में सुधा के बाएं पांव की एड़ी टूट गई और दायां पांव बुरी तरह जख्मी हो गया। प्लास्टर लगने पर बायां पांव तो ठीक हो गया, किंतु दाएं टांग में गैंग्रीन यानी एक प्रकार का कैंसर हो गया। ऐसे में डॉक्टरों के पास सुधा की दाएं टांग काट देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। अंततः दुर्घटना के 1 महीने बाद सुधा की दाएं टांग घुटने के 7.5 इंच नीचे से काट दी गई। एक टांग का कट जाना संभवतः किसी भी नृत्यांगना के जीवन का अंत ही होता। सुधा के साथ भी यही हुआ।
1: अब तो पैर में इतनी चोट लग गई है कि मैं नाच तो सकती ही नहीं, पढ़ाई पर ही ध्यान देना होगा। यही ठीक है, मैं अपनी पढ़ाई ही पूरी कर लेती हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा, पढ़ाई में मन भी नहीं लग रहा, क्या करूं? मैं दोबारा नाच सकूंगी? छोड़ो ये सब बातें, मैं अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान देती हूँ, सब फिजूल है। नहीं, पर मैं नृत्य को कैसे भूल सकती हूँ?

0: सुधा ने लकड़ी के गुटके के पांव और बैसाखियों के सहारे चलना शुरू कर दिया और मुंबई आकर वो पुनः अपनी पढ़ाई में जुट गई। इसी बीच सुधा ने मैग्सेसे पुरस्कार विजेता सुप्रसिद्ध कृत्रिम अंग विशेषज्ञ डॉक्टर पीसी सेठी के बारे में सुना। वो जयपुर गई और डॉक्टर सेठी से मिली।
1: ये पैर थोड़ा सा उठा, बस बस बस, ज्यादा नहीं, बस ये ये ये स्टूल के ऊपर अपना पैर रखो, मुझे एग्जामिन करना। बस बस, दैट्स इट, गुड गुड, वेरी गुड।
2: डॉक्टर साहब, मेरा पैर ठीक तो हो जाएगा ना?
1: पहले एग्जामिन तो करने दो। अच्छा, ये एड़ी थोड़ा सा इधर करो। बिल्कुल, तुम बिल्कुल पहले की तरह सामान्य ढंग से चल सकोगी सुधा।
2: पर क्या मैं नाच सकूंगी?
1: चलने की नहीं, नाचने की फिक्र है तुम्हें।
2: जी।
1: हाँ भाई, क्यों नहीं, प्रयास करो तो सब कुछ संभव है।

0: डॉक्टर सेठी ने सुधा के लिए एक विशेष प्रकार की टांग बनाई जो एल्यूमिनियम की थी और इसमें ऐसी व्यवस्था थी कि वो टांग को आसानी से घुमा सकती थी। सुधा एक नए विश्वास के साथ मुंबई लौटी और उसने नृत्य का अभ्यास शुरू करना चाहा। किंतु इस प्रयास में कटी हुई टांग से खून निकलने लगा।
1: सुधा,
2: क्या हो गया मेरे पैर को? ये मेरे साथ क्या हो रहा है?
0: कोई भी सामान्य व्यक्ति इस तरह की घटना के बाद दोबारा नाचने की हिम्मत कतई नहीं करता, किंतु सुधा साधारण मिट्टी की नहीं बनी थी।
2: मैं कमजोर नहीं हो सकती, मैं नृत्य कर सकती हूँ।

0: जल्दी ही उसने अपनी निराशा पर काबू प्राप्त किया और अपने नृत्य प्रशिक्षक को साथ लेकर डॉक्टर सेठी से पुनः मिली।
1: थोड़ा सा मूव करो पैर को, दर्द हो रहा है यहाँ पे? अच्छा मैं यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ, दर्द महसूस होता है? होता है? कितना? कितना? बस बस बस बस बस समझ गया मैं, समझ गया। तो समस्या ये है
2: डॉक्टर साहब, आपने तो कहा था कि मैं चलने लगूंगी, नाचने लगूंगी।
1: मैंने कहा था और मैं अब भी यही कह रहा हूँ। एक मिनट रुको सुधा, ये देखो नृत्य की तुम्हारी विशेष जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ये मैंने, ये देखो
2: ये तो
1: एक विशेष टांग बनवाई है तुम्हारे लिए, देखो देखो देखो।
2: पर
1: तुम इसे पहनो, पहनो इसे एक मिनट के लिए, फिर से इसको पहनो, पहनो पहनो पहनो पहनो पहनो, अच्छी तरह से पहनो, गुड, स्ट्रैप करो, स्ट्रैप करो, बस बस बस हो गया हो गया, स्ट्रैप कर दो, स्ट्रैप हो गया, हाँ टाइट है, अब जरा खड़ी हो जाओ, इसके ऊपर खड़ी हो, हाँ गुड, कुछ नहीं होगा, यू आर अ ब्रेव गर्ल सुधा, यू आर, हाँ खड़ी हो जाओ, गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो सुधा, एक बात तुम्हें मैं बहुत साफ कह देना चाहता हूँ, जो कुछ मैं कर सकता था
2: जी,
1: मैंने कर दिया है, और अब तुम्हारी बारी है।
0: सुधा ने पुनः नृत्य का अभ्यास प्रारंभ किया। शुरुआत बहुत अच्छी नहीं रही, कटे हुए पांव के ठूंट से खून रिसने लगा, किंतु सुधा ने कड़ा अभ्यास जारी रखा। ।28 जनवरी 1984 को मुंबई के साउथ इंडिया वेलफेयर सोसाइटी के हॉल में एक अन्य नृत्यांगना प्रीति के साथ सुधा ने दोबारा नृत्य के सार्वजनिक प्रदर्शन का आमंत्रण स्वीकार कर लिया। ये दिन सुधा की जिंदगी का संभवतः सबसे कठिन दिन था, उस दिन से भी ज्यादा जब उसका पांव काट दिया गया था। सुधा का ये प्रदर्शन बेहद सफल रहा, चहेतों ने उसे देखते देखते पलकों पर उठा लिया और वो रातों रात एक ऐतिहासिक महत्व की व्यक्तित्व हो गई। उनकी अद्भुत जीवन यात्रा से प्रभावित होकर तेलुगु के फिल्मकार ने उनकी जिंदगी को आधार बनाकर एक कहानी लिखवाई और मयूरी नाम से तेलुगु में एक फिल्म बनाई। अपने पात्र को सुधा ने स्वयं पर्दे पर जीवंत कर दिया। फिल्म को अद्भुत सफलता मिली और इस फिल्म में अभिनय के लिए सुधा को भारत के 33वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह में विशेष पुरस्कार प्रदान किया गया। मयूरी की सफलता को देखते हुए इसके निर्माता ने ये फिल्म हिंदी में भी नाचे मयूरी के नाम से प्रदर्शित की। और सुधा ने पूरे भारत को अपनी प्रतिभा का मुरीद कर दिया। आज सुधा एक व्यस्त नृत्यांगना ही नहीं, फिल्म कलाकार भी हैं। सुधा को उनके असामान्य साहस और श्रेष्ठ उपलब्धियों के लिए कई पुरस्कार भी प्राप्त हो चुके हैं।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम नृत्यांगना सुधा चंद्रन। और श्रोताओं, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब मुझे यानी अजीत
4: और मुझे यानी विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
3: नमस्कार।
5: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in। नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मेरे यानी गगन के साथ स्मार्ट संस्था के साथ मिलकर हम एक खास कार्यक्रम चला रहे हैं, जिसका नाम है सेहत से ही लाभ गई। इसी के अंतर्गत एक खास बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। दोस्तों, जब भी हम सफर पर निकलते हैं या निकलने से पहले हर चीज की प्लानिंग करते हैं, नया स्कूटर या कार खरीदने से पहले हर विकल्प पर सोचते हैं, तो फिर अपने परिवार की योजना बनाने से पहले क्यों नहीं सोचते? ये तो जिंदगी भर का फैसला है। आपके परिवार को नियोजित रखने के लिए आपके पास गर्भ निरोधक के कई विकल्प हैं। जब आपके पास सही जानकारी होगी, तभी आप अपने स्वास्थ्य, अपने शरीर, अपने जीवन और अपने भविष्य के बारे में सही फैसला ले पाएंगे। तो झिझके नहीं, आज ही अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और अपने सभी गर्भ निरोधक विकल्प जानें। ये खास जानकारी सुनो शारदा 90.8 FM के माध्यम से स्मार्ट के सहयोग से सेहत सही लाभ कई के अंतर्गत मैं आप तक पहुंचा रहा था। अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है, और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in। The world is here.

0: हाय, मैं हूं रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। मैं आज हम बात करने वाले हैं डाइजेशन के विषय में। अगर आपका पाचन तंत्र मजबूत है तो निश्चित तौर पर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो नहीं सकती। लेकिन अगर आपका पाचन तंत्र मजबूत नहीं है, डाइजेशन सिस्टम कहीं ना कहीं गड़बड़ा रहा है, तो दिक्कतें परेशानी आपके सामने आती रहेगी। कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यह कि खराब से खराब डाइजेशन को एक दिन में सुधार देंगे, यानी कि ये 5 जूस। वो कौन कौन से 5 जूस हैं जिसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और जूस पीने का सही तरीका भी। चलिए विस्तार से बात करते हैं। खराब डाइजेशन कई बीमारियों का कारण बन सकता है, इसलिए डाइजेशन को दुरुस्त रखने के लिए 5 हेल्दी जूस जरूर पिएं। बेहतर पाचन के लिए हेल्दी जूस बहुत आवश्यक है। पाचन से जुड़ी समस्याएं बहुत असहज हो सकती हैं, काफी दर्दनाक भी, लेकिन बहुत से तरीकों से इन समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। ऐसा करने का एक सबसे आसान तरीका है हेल्दी जूस पीना, जो विटामिन, मिनरल्स और डाइजेस्टिव एंजाइम से भरपूर होते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसी हेल्दी जूस के बारे में जो आपके पाचन तंत्र के लिए काफी लाभदायक हो सकते हैं। बात करते हैं अदरक का जूस के विषय में। तो बात सामने आती है कि अदरक का जूस एंटी इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है, जो पेट के डिस्कम्फर्ट से राहत दिलाता है और हेल्दी डाइजेशन होने में मदद करता है। अदरक का जूस बनाने के लिए आपको अदरक छील लेना है और उसे छोटा छोटा काट लें। अब थोड़े से पानी के साथ इसे ब्लेंड कर लें और इसके पल्प को छान लें। आप स्वादानुसार नींबू का रस या फिर शहद भी मिला सकते हैं, इससे ये आपको कड़वा नहीं लगेगा। अब बात अनानास का जूस। जी हाँ, अनानास में ब्रोमेलिन नाम का तत्व अधिक मात्रा में होता है, जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर सकता है और इन्फ्लेमेशन कम करने में सहायक होता है। अनानास के जूस का सेवन करने से पाचन में लाभ मिल सकता है और ब्लोटिंग जैसी समस्याओं से भी छुटकारा मिल सकता है। आपको केवल ताजा अनानास लेना है, उसे थोड़ी से पानी के साथ ब्लेंड कर लेना है। अब इसे छानकर पी सकते हैं। अब बात नींबू के रस की। नींबू का रस भी प्रकृति में अम्लीय होता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। नींबू की साइट्रिक प्रकृति गुर्दे की पथरी की संभावना को कम करने में मदद करता है। बात एलोवेरा जूस की। एलोवेरा अपनी हीलिंग गुणों के लिए जाना जाता है। इससे इन्फ्लेमेशन कम होने में मदद मिलती है। इससे पेट में हेल्दी बैक्टीरिया का उत्पादन बढ़ता है और पाचन में भी मदद मिलती है। आपको केवल एलोवेरा जेल को थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड कर लेना है। गाजर का जूस। गाजर में फाइबर अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है और ये पाचन तंत्र को रेगुलेट करने में मदद करता है। इससे हेल्दी बाउल मूवमेंट्स में भी मदद मिलती है। अगर आप इसे नियमित रूप से पीते हैं तो पेट में इन्फ्लेमेशन भी कम हो सकती है और पेट में हेल्दी बैक्टीरिया के उत्पादन में भी मदद मिलती है। आपको केवल गाजर को थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड करके छान कर पी लेना है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
2: भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
3: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो शारदा
4: 90.8 FM। दूर होते होते वो आवाज डूब गई, सुनने के लिए सिर्फ यादें रह गईं। चंदन चला गया और इतनी दूर चला गया कि आरती के लिए वो फासले तय करना नामुमकिन हो गया। मुड़ के जब भी देखा, चंदन का चेहरा नजर नहीं आया। गूंजते हुए माजी से सिर्फ इतना ही सुनाई दिया, नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है अगर याद रहे।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: हाय, मैं हूं विदिता बाघ और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: राम राम दोस्त, राम सत श्री अकाल आदाब। मैं हूं गगन, आपके साथ वो गगन जो हमेशा गगन को छूने की बातें किया करता है, दिलों को जीतने की हम कोशिश करते हैं एक खास प्रोग्राम के जरिए जिसका नाम है कम्युनिटी कनेक्ट। और इसके अंतर्गत हमने एक प्रोग्राम को नाम दिया है राब्ता, यानी कि हम एक खास मेहमान से राब्ता करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और वो अपने एक सब्जेक्ट के साथ हमारे साथ जुड़ते हैं या जुड़ती हैं। जहां आप काम कर रहे होते हैं किसी भी संस्थान में, तो जाहिर सी बात है कि आप चाहते हैं बड़ा खुशनुमा माहौल रहे। अगर कहीं कोई दिक्कत या परेशानी आ जाती है तो सच बात तो यह है कि एक कमेटी होती है और कमेटी से जुड़े हुए लोग भी होते हैं। वो कमेटी क्या काम करती है, किस तरीके से काम करती है, इसी सब्जेक्ट पर बात करने के लिए आज मेरे साथ एक खास गेस्ट आप जुड़ रही हैं। आप हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर ICC यानी इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी की प्रिसाइडिंग ऑफिसर डॉक्टर एकता चौधरी। मैम सुनो शारदा 90.8 FM पर आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू मिस्टर गगन, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार।
1: मैम सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ, जो हमने जिक्र किया ICC, ये है क्या?
2: इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी जो बनाई गई थी सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस एक्ट के तहत, जो कि 2013 में लागू हुआ था, जिसको हम सब पॉश या GS कैश के नाम से भी जानते हैं। फिर 2017 में द नेम वाज फॉर्मुलेटेड एंड गिवन एज ICC, दैट इज इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी। इसका जो मेन एजेंडा है वो है प्रोवाइड सेफ एंड कॉन्फिडेंशियल एंड फेयर सिस्टम जो सेक्सुअल हैरेसमेंट रिलेटेड इश्यूज एट वर्कप्लेस को हैंडल करे।
1: जी सोलिसिटर्स, मैं समझता हूँ कि इस बात को आप जान गए हैं, समझ गए हैं। हर कोई यही चाहता है कि अगर आप जिस जगह काम कर रहे हैं तो कहीं कोई दिक्कत परेशानी न हो, लेकिन जब कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आपको आपके राइट्स पता होना बहुत जरूरी है कि अगर परेशानी है तो इस परेशानी का हल कहाँ हो सकता है, किसके पास जाकर हो सकता है। क्या कोई इस तरीके की बॉडी बनी हुई है जहाँ हम अपनी बात रख पाएं, कह पाएं? तो मैम ने इसके बारे में अपनी बात रख दी। तो मैम मैं जब आगे बढ़ता हूँ तो बात निकल कर ये सामने आती है कि ये जो कमेटी है किस तरीके से काम करती है।
2: जो ICC कमेटी है इसमें जैसे कि पहले बताया हम मैंने कि इट वर्क्स ऑन प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल ऑफ एनी कंप्लेंट। सो तो इसमें एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है हु इज अ सीनियर वुमेन एम्प्लॉई, और एटलीस्ट दो मेंबर्स होते हैं जो फैकल्टी टीचिंग मेंबर्स होते हैं, दो नॉन टीचिंग मेंबर्स होते हैं, और इसमें जो सबसे ज्यादा जरूरी है एक एक्सटर्नल मेंबर होता है जो कि किसी NGO से या जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए या फीमेल की लिए काम करता हो। और इसमें फिर तीन स्टूडेंट मेंबर्स भी होते हैं जिसमें कि एक ग्रेजुएट होता है, एक पोस्ट ग्रेजुएट होता है और एक रिसर्च स्कॉलर होता है।
1: जब आप स्टूडेंट्स का जिक्र कर रहे हैं तो उनका जो बायोडाटा है तो वो किसी भी फील्ड से हो सकते हैं, यानी कि लॉ के ही होना जरूरी है या स्कूल ऑफ मीडिया के होना जरूरी है या डेंटल का होना जरूरी है या किसी भी फील्ड से आ सकते हैं?
2: नहीं, स्टूडेंट जो है वो किसी भी फील्ड से आ सकते हैं, पर उनका एक झुकाव और एक इंटरेस्ट होना चाहिए कि वो इस क्षेत्र में कुछ काम करना या कुछ अपना योगदान देना चाहें। उस तरीके से हम स्टूडेंट का
1: इन्वॉल्वमेंट रखते हैं। सो लिसनर्स, यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ये जो बातों का सिलसिला है लगातार जारी है सिर्फ और सिर्फ सुरशादा 90.8 FM पर। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑन योर सुरशादा 90.8 FM।

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ कम्युनिटी कनेक्ट के प्रोग्राम के तहत हम राब्ता कर रहे हैं। आज हमारे साथ हमारी गेस्ट जुड़ी हुई हैं, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी की प्रिसाइडिंग ऑफिसर आप हैं डॉक्टर एकता चौधरी, जो कि इस फील्ड की जानकार हैं, बहुत सीनियर हैं, और ये किस तरीके से काम करती है ये कमेटी इसके बारे में हम मैम से जान रहे हैं। तो मैम ब्रेक के इस पार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू गगन जी।
0: ब्रेक पर जाने से पहले हमने जाना कि ये कमेटी क्या है, किस तरीके से काम करती है। आपने हमें बताया कि इसमें कई लोग जुड़े होते हैं, जाहिर सी बात है कि जैसे कि आपके पास बहुत बड़ा अनुभव है, उस अनुभव के साथ आप आते हैं। स्टूडेंट्स का जो इन्वॉल्वमेंट है वो भी अलग अलग फील्ड से हो सकते हैं, लेकिन एक जिज्ञासा होना बहुत जरूरी है कि वो इस फील्ड में कुछ करना चाहते हैं या यूं कहें कि अपने अधिकारों को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तो मैं जो स्टूडेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है उसके बारे में जानना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ कि क्या वाकई उनका इंटरेस्ट होता है या नहीं होता।
1: स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट होता है, पर यूजुअली जो केसेस हम सोच समझ के स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट रखते हैं, जैसे कि अगर स्टूडेंट का कोई कंप्लेन आती है तो हम स्टूडेंट को इन्वॉल्व करते हैं, पर यदि अगर कोई सीनियर फैकल्टी की या फैकल्टी हो तो हम उसमें कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट ना रखा जाए। क्योंकि उसमें उस केस में ये होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कॉन्फिडेंशियल होती हैं और कुछ लेवल ऐसे होते हैं जिसमें कि चीज़ें कई बार गलत साबित होती हैं, उस केस में हम नहीं चाहते कि स्टूडेंट को ज़्यादा इन्वॉल्व किया जाए। पर अदरवाइज वो किसी भी फील्ड का कोई भी स्टूडेंट जो थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड हो और जिस जो कमिटेड हो वुमेन्स राइट के लिए हेल्प करने के लिए, उन स्टूडेंट्स को हम एनरोल करते हैं।
0: यानी कि अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स आते हैं जो जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि हमारे राइट्स क्या हैं, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है उसका सॉल्यूशन कैसे दिया जाएगा। अब मैं आपसे ये जानना समझना चाहता हूँ कि जब हम स्टूडेंट्स का जिक्र कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि कभी कभी झूठी बातें भी आपके सामने आती होंगी, तो उस समय आप कैसे उसको समझ पाती हैं कि ये गलत बात है, इसको हम यहाँ रोक सकते हैं, आपने झूठी बात रखी है। या कभी कभी कोई रिटर्न में आ जाती है, जैसे आप ऑफर हमें बता रही थी कि अगर बात आगे तक बढ़ जाती तो जाहिर सी बात है कि उसमें इन्वॉल्वमेंट सभी का हो जाता है, एचआर होता है, आपका एक अलग भूमिका होती है, कभी कभी पुलिस या लॉ के अधिकारी भी जुड़ जाते हैं, तो वो क्या सीन होता है, किस तरीके से कंप्लेंट को आप लोग लेते हैं, हैंडल करते हैं?
1: आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं गगन जी, ये बहुत ही आम सी बात है। ऐसे किस को बहुत सारे केसेस में होता है कि बच्चे को एक बार पहली बार में समझ नहीं आता कि वो एक्चुअली किस तरीके से और कहाँ तक कंप्लेंट ले जाना चाहता है। तो एक इसमें आईसीसी में एक है गाइडलाइंस में कि देर इज अ वे टू फॉर अ कंसिलिएशन ऑल्सो। तो उस केस में हम स्क्रीनिंग कमिटी बनाते हैं पहले और दोनों पार्टीज को सुनते हैं, द कंप्लेनेंट एज वेल एज द रेस्ट्रेंट। तो उसमें ये होता है कि अगर हमें लगता है कि दोनों पार्टी आपस में सुलह करने के लिए तैयार हो जाती हैं, कई बार उनको समझ आ जाता है हमारी बात से ही या समझाने से, और उनको आपस में भी लगता है कि हमें आगे फर्दर कंप्लेन को बढ़ाने की या उस चीज को ले जाने की जरूरत नहीं है इतने सीरियस नोट पे, तो वो कंसीलिएशन के थ्रू उस कंप्लेन को वहीं की वहीं हम खत्म भी कर सकते हैं। पर अगर मैटर बहुत सीरियस होता है और हमें खुद लगता है तो हम उसको फिर आगे स्टेज ले जाते हैं।
0: ये तो रही एक बात, दूसरे पहलू को अगर मैं जानूं तो क्या आपने लोगों को दोस्त बनते हुए देखा है, अरे यार मैं नादान था, गलती कर गया, किसी ने मुझे उकसा दिया इस बात के लिए तो ये कंप्लेंट मैं लेकर आ गया या दर्ज करा दी?
1: हाँ, ऐसा भी होता है, पर क्योंकि ये एक्चुअली केसेस जो होते हैं आईसीसी में सारे सेक्सुअल हैरेसमेंट से रिलेटेड ही आते
0: जी,
1: हैं
0: जी।
1: तो उस केस में ये है कि हम बहुत किसी भी चीज को ना नजरअंदाज या आप कहें कि हम उसको सीरियसली ना लें, वो नहीं हो पाता। पर कभी कभी कुछ केसेस में होता है कि बच्चे नादानी में थोड़ा सा चीज को सीरियस नोट पे ले जाके उसको बढ़ावा देने के लिए या किसी को डराना भी हो थोड़ा बहुत तो आके कंप्लेन कर देते हैं। पर उस केस में हमारी कोशिश यही रहती है कि फिर दोनों पार्टीज को थोड़ा थोड़ा समझाया जाए और बताया जाए कि ऐसे चीजें ना ले जाके आप उसको ठीक नोट पे भी एंड कर सकते हैं।
0: बहुत खूबसूरत। सो लिसनर्स, कहने का मतलब ये कि इन बातों को जानना समझना बहुत जरूरी है। एक अच्छे सब्जेक्ट के साथ हम बात कर रहे हैं डॉक्टर एकता चौधरी से, जो कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं आईसीसी कमेटी शारदा विश्वविद्यालय से, और बहुत बड़े अनुभव के साथ मैम आती हैं और किस तरीके से ये कमेटी काम करती है, तो ये जानना समझना आपके लिए भी बहुत जरूरी है। ब्रेक के उस पार आएंगे तो बातों का जो सिलसिला है लगातार हम उसको कंटिन्यू करेंगे, जारी रखेंगे। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑन योर शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ।

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। सामुदायिक रेडियो स्टेशन का जब हम जिक्र करते हैं तो समुदाय की बातें होती हैं, आपकी बातें, हमारी बातें, और हर एक सब्जेक्ट पर हम यहां से बातें कर रहे होते हैं। आज ज्ञान विज्ञान की बातों के अलावा, पढ़ने पढ़ाने की बातों के अलावा, जिस सब्जेक्ट को हमने चुना है कॉलेज के समय में, ये जानना समझना बहुत जरूरी है जहां आप काम कर रहे हैं कि एक महिला के अधिकार क्या हैं। जब आप जान पाते हैं, समझ पाते हैं, तो मैं समझता हूं कि आप अपनी बात को आगे लेकर जा पाते हैं और उसके बाद एक खुशनुमा माहौल आप महसूस करते हैं कि हाँ, ये वर्किंग प्लेस बहुत अच्छा है। और इसीलिए कहा जाता है कि वेयर आर यू, द वर्ल्ड इज हियर एट शारदा यूनिवर्सिटी। जी हाँ, शारदा यूनिवर्सिटी में स्कूल कॉलेजेस खुल चुके हैं और अच्छा माहौल यहाँ है, और यही वजह है कि दूर दराज से स्टूडेंट्स आते हैं। लेकिन जाने अनजाने में कहीं कोई दिक्कत परेशानी हो जाती है तो एक एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है कि अपनी बात को हम आगे लेकर कहां जाएं। उस समय एक कमेटी काम करती है जिसका नाम है इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। उसकी प्रेसाइडिंग ऑफिसर आप हैं डॉक्टर एकता चौधरी मैम। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये रूपरेखा बनानी पड़ती, बहुत ज्यादा मैं बोल गया। मैं अब आपसे ये जानना चाहता हूं कि वो क्या बात है, वो क्या आधार है जिसकी वजह से कंप्लेंट आपके सामने आती है। जैसे कि अमूमन मैं समझना चाहूंगा आपसे, या तो मैं ऊंचा सुर आपको लगा गया, या मैंने आपकी शान में और कुछ गुस्ताखी कर दी, या कुछ और। मैं आपसे समझना चाहूंगा कि वो कंप्लेंट कौन कौन सी हो सकती है, ताकि जो लिसनर्स हैं वो अलर्ट रहें, स्टूडेंट्स भी अलर्ट रहें, या एक एम्प्लॉय भी अलर्ट रहें।
1: ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है गगन जी। इससे क्योंकि लोगों को कई बार बहुत चीजों को लेके गलत फहमी होती है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट के तहत या ICC के अंदर एक्चुअली क्या चीजें आती हैं जिसपे हम कंप्लेन कर सकते हैं। तो सेक्सुअल हैरेसमेंट जो है ना, सिर्फ फिजिकल हैरेसमेंट को ही नहीं माना जाता है कि आपने फिजिकली किसी के साथ कुछ गलत किया है तो वो सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट में आएगा, नहीं। और बहुत सी चीजें हैं, जैसे कि अगर आप अनवेलकम कोई फिजिकल एडवांसमेंट भी दिखाते हैं, या कोई रिक्वेस्ट या कोई एक्स्ट्रा फेवर्स भी किसी से मांगते हैं, तो वो भी सेक्सुअल हैरेसमेंट में आता है। और पासिंग सेक्सुअल कलर्ड रिमार्क्स,
0: जी,
1: आप अगर किसी को सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स भी करते हैं, पीछे से कमेंट मार रहे हैं, या पीछे से उसको अनवेलकम जेस्चर

0: दे रहे हैं या इशारों में भी कुछ बोल रहे हैं, कोई आपका कैसा भी अनवेलकम कंडक्ट जो दूसरे किसी को अच्छा ना लगे, फीमेल्स उसको ना पॉजिटिवली लें, आपका चाहे वो वर्बल हो या नॉन वर्बल हो या फिजिकल हो, जिसको कि वो सीखना उनको लगे, उनको अनकंफर्टेबल महसूस कराए, तो जिसकी वजह से आपका काम सफर कर रहा हो या फीमेल को लगे कि वो डिस्टर्ब्ड हो गई हैं या अपनी वर्क प्लेस पे वो कंफर्टेबल सेफ ना फील करे,
1: जी।
0: तो ये सब चीजें सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंदर ही आती हैं।
1: मैम एक बात बताइए, मैं इससे अलग हटकर बात कर रहा हूँ और लाइट नोट पर बात करना चाहूंगा, फिर तो मुझे लगता है कि अरे मैम आगे जैसे होता है ना कि टीचर आता है, कोई प्रोफेसर आता है, कुछ तो दोस्त आपके बहुत ज्यादा होंगे या बहुत ही लिमिटेड होंगे, कैसा है आपका अनुभव?
0: बहुत पॉजिटिवली लेते हैं, हमारे लिए काम जरूर ऐसा है पर हम चीजों को इट्स नॉट दैट, एक होता है ना हम वी ट्राई टू पैसिफाई, इट्स नॉट लाइक एग्जैजरेटिंग, कुछ चीजें होती है हमें पता है, आजकल की तो आप नॉर्मल टोन में भी आप देखेंगे बच्चों की आम भाषा ही यही हो गई
1: मैम, ये तो आपने बहुत,
0: हम अगर हर चीज को अगर इसमें करने, क्योंकि अब्यूजिव लैंग्वेज ऑल्सो कम्स अंडर दिस सेक्सुअल हैरेसमेंट, अगर हम अब्यूजिव लैंग्वेज को देखें तो बच्चे आजकल आपस में नॉर्मल टोन में ही इसी भाषा में बात करते हैं,
1: जबकि बहुत गलत है।
0: हाँ।
1: क्योंकि हम कहीं ना कहीं एक समझने की कोशिश करते हैं कि किस माहौल से आप आते हैं, किस परिवेश में आप रहते हैं या किस तरीके से आपकी परवरिश हुई है। एक इशारा भी है कि आप गाली गलौज से अपने आप को दूर रखिए। निश्चित तौर पर आप नहीं चाहते कि आपके सामने कोई ऐसी भाषा का इस्तेमाल करे, आप नहीं चाहते कि आपके परिवार जहां आपकी माँ हो बहन हो उनके सामने कोई इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करे। सो प्लीज आप अपने बारे में अलर्ट रहना चाहते हैं तो ऐसी जब खुशनुमा माहौल आप दूसरों को देंगे तो मैं समझता हूँ कि एक खुशनुमा माहौल हम क्रिएट कर पाएंगे और उसके बाद आपकी भी एक पहचान बनती है। विकसित भारत जब हमें बनाना है तो उसमें आपका योगदान बहुत जरूरी है, एक युवा का योगदान बहुत जरूरी है। जिस सब्जेक्ट पर हम बात कर रहे हैं तो दिल की गहराइयों से मैं मैम का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी ICC के बारे में हम बातें कर रहे हैं और मेरे साथ जुड़ी हुई है डॉक्टर एकता चौधरी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ICC शारदा विश्वविद्यालय से। यहाँ पर एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, बातों का जो सिलसिला है लगातार जारी रहेगा। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड, ऑल योर शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।

0: नेड़े हो के भी दूरियां रहिंदियां ने, कुछ मुहब्बतां अधूरियां रह के भी पूरियां रहिंदियां ने।
1: एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी कनेक्ट प्रोग्राम। मेरे यानी गगन के साथ राबता है, राबता हम कर रहे हैं। हमारे साथ एक खास गेस्ट आप जुड़ी हुई हैं और जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। आपका नाम है डॉक्टर एकता चौधरी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ICC शारदा यूनिवर्सिटी से। मैम, ब्रेक के बाद आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू।
1: इस कमेटी से हम समझ पा रहे हैं कि महिलाओं की बातें हो रही हैं, एक लड़की की बात हो रही है, फीमेल की बात हो रही है, क्या एक पुरुष की जब हम बात करते हैं तो उसके भी कुछ राइट्स हैं? वो कैसे अपने आप को बचाव कर पाए कि उसके साथ सही हो रहा है या गलत हो रहा है? कभी कभी झूठे केसेस भी आपके सामने आ जाते होंगे, तो मैं इसी बात को आगे लेकर जाना चाहूंगा। तो किस तरीके से, अगर मतलब बात वही आ रही है कि कंप्लेंट को आगे लेकर जाए और अगर झूठा केस आ रहा है तो कैसे उस वक्त आप जजमेंट कर पाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है?
2: एकदम सही बात है गगन जी। इस केस को जैसे आपने बताया है कि कभी कभी गलत कंप्लेंट्स भी आती हैं, उसके ऊपर भी लॉ है। इट्स नॉट दैट कि मेल्स डोंट हैव एनी राइट। आदमियों के लिए भी होता है कि कई बार अगर किसी ने गलत कंप्लेंट कर दी है और अगर बिल्कुल प्रूफ के साथ एंड इट इज प्रूवन, जो कि थोड़ा सा मुश्किल होता है प्रूफ करना, क्योंकि इस केस में सारे जो फैक्ट्स हैं या प्रूफ्स हैं वो रेस्ट्रेंट पार्टी को देनी पड़ता है। पर अगर ऐसा कुछ लगता है कि गलत कंप्लेन आई है एंड वी फाइंड ऑल गेट ऑल द प्रूफ, तो उस केस में वी कैन ऑलवेज हैव अ पनिशमेंट फॉर अ कंप्लेनेंट एज वेल। सो इट गोज एज अ
1: जो शिकायत कर रहा है, अगर उसका गलत पाएगी तो उसको दंड का अधिकारी है।
2: इट्स अ मैलफिस कंप्लेन, सो इट गोज एज अ फॉल्स एलिगेशन।
1: यस,
2: तो वो उस केस में फिर हम दूसरी पार्टी को भी कर सकते हैं रेस्ट
1: पनिशमेंट कर सकते हैं। वेरी गुड। इससे पहले जो बात आती है, बात यही आती है कि मैं अपनी कंप्लेंट को कैसे दर्ज करूं, और साथ साथ मैं अब ये समझना चाहूंगा कि ये तो हम स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, कोई फैकल्टी है तो उसके भी ये राइट्स उसी ICC में ही आते हैं?
2: एकदम बिल्कुल, फैकल्टी के और स्टूडेंट्स के, कोई भी जो भी फीमेल स्टाफ हो या स्टूडेंट हो, कोई भी फीमेल उस वर्क प्लेस के अंदर है, चाहे वो टीचिंग हो या नॉन टीचिंग हो, किसी भी तरीके का एम्प्लॉय हो और कोई भी स्टूडेंट, सब ICC के।
1: मैम, आपसे मुझे बहुत सीखने को मिल रहा है, मैं बहुत अलर्ट रहने वाला हूँ इसके बाद, क्योंकि रेडियो इंडस्ट्री, मीडिया इंडस्ट्री ऐसी है कि आप लोगों को देखेंगे, बातचीत करेंगे, उनके बारे में आप बोलेंगे, लेकिन आपको देख के लग रहा है कि नहीं बेटा गगन, अलर्ट हो जाना, पता नहीं कब कौन कोई बात को दिल पे लेगा तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं। लेकिन खैर, ये आपको आना चाहिए, ये कला है कि आप कब कहाँ कैसे बात कर रहे हैं। अगर ये सब नहीं आता तो आप सीखिए समझिए, क्योंकि अगर आप सीखेंगे समझेंगे तो मैं समझता हूँ कि आपकी पर्सनैलिटी में चार चांद लग जाएंगे। और सच बात तो ये कि आप इज्जत चाहते हैं अपनी फैमिली की, फिर से मैं वही शब्दों को दोहराऊंगा, तो जब आप इज्जत सम्मान दूसरी महिलाओं को आप देंगे, अपने कुलीग को देंगे, तो निश्चित तौर पर फिर वही बात कि खुशनुमा माहौल आप बनाकर रख पाएंगे। तो मैम, आपके पसंद का कोई गाना हो जो आप सुनना चाहती हो, सुनाना चाहती हो हमारे लिसनर्स को, क्योंकि ये बहुत एक गंभीर विषय है लेकिन मैं चाहता हूँ कि बहुत हल्के फुल्के अंदाज में हम इसको आगे लेकर चले, तो कोई गाना जो आप सुनना या सुनाना चाहती हो?
2: अपने आप से प्ले,
1: आप अपने आप से। चलिए, मुस्कुराहट भरा एक खूबसूरत गाना मैं आपके लिए प्ले करना चाहता हूँ, मुस्कुराने की वजह तुम हो। सच बात तो ये कि मुस्कुराने की वजह आप यानी कि हमारे लिसनर्स हैं, क्योंकि आपको देखकर ही हमें एक एनर्जी मिलती है। वक्त एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑल यू सुरशादा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। और आज जिस सब्जेक्ट पर हम बात कर रहे हैं, कम्युनिटी कनेक्ट प्रोग्राम के तहत हम राब्ता कर रहे हैं, और राब्ता इस प्रोग्राम का नाम है, हमारे साथ जुड़ी हुई है इंटरनल कंप्लेंट कमेटी यानी ICC की प्रेसाइडिंग ऑफिसर आप हैं डॉक्टर एकता चौधरी फ्रॉम शारदा यूनिवर्सिटी से। तो मैम एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल, वेलकम। सो लिसनर्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कॉलेज वर्कशॉप के माध्यम से, सोशल मीडिया के जरिए और रेडियो वार्ता के माध्यम से स्टूडेंट्स को, फैकल्टी को, सभी को अलर्ट करता है कि हमारे राइट्स क्या हैं, ये कमेटी किस तरीके से काम करती है, अगर कहीं कोई दिक्कत परेशानी है तो कहां हम जाएं, कैसे अपने ऑफिसर से हम मिलें, कैसे अपनी बात को हम उन तक लेकर जाएं, और कैसे कभी कभी ऑनलाइन कंप्लेंट को दर्ज करें। तो इसी संबंध में मैम मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कैसे आपसे कोई कनेक्ट करे, कंप्लेंट दर्ज करे, या आपका ईमेल आईडी या कॉन्टेक्ट नंबर या आपका ऑफिस नंबर कौन सा ब्लॉक है जहां आप लोग, ये हमारा ऑफिस है।
1: अनफॉर्चुनेटली अगर किसी को जरूरत पड़ती है बाई चांस कभी हमारे पास आने की या कंप्लेन करने की, तो इसके कुछ है कि अगर आपको लगता है, आप स्कूल लेवल पे पहले अपने हेड को बोल सकते हैं
0: जी,
1: या आप हॉस्टल लेवल पे वार्डन्स को बोल सकते हैं और उनको लगता है कि वो हमारे को फॉरवर्ड कर दें अगर कंप्लेन सेक्सुअल हैरेसमेंट से रिलेटेड है, तो वो हमारे पास पहुंच जाती है। या फिर जो कंप्लेनेंट है वो डायरेक्टली ICC को भी आके कंप्लेन कर सकते
0: हैं। ओके।
1: तो ये कंप्लेन जो है किसी भी इंसिडेंट के 3 महीने के अंदर अंदर होनी चाहिए। 3 महीने पहले तक इंसिडेंट हुआ है उसके अंदर विदिन 3 मंथ्स कंप्लेन कर सकते हैं। पर उसके में भी है आपके पास कि अगर आप इनकेस नहीं भी कर पाते हैं और उसके बाद भी करना चाहते हैं, तो आफ्टर लुकिंग आफ्टर द फैक्ट एंड अ वैलिड रीजन दिस डेडलाइन ऑल्सो कैन बी एक्सटेंडेड। तो आप 3 महीने के बाद भी कर सकते हैं अगर ICC कमेटी को लगता है कि नहीं बहुत वैलिड रीजन है आपका
0: जी।
1: तो आप उसके बाद भी हम कंप्लेंट ले लेते हैं। फिर ICC अपने लेवल पे इंक्वायरी करती है, एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाती है। अगर स्क्रीनिंग कमेटी में उनको लगता है कि कंसिलिएशन या कुछ बातचीत से बात हो सकती है, तो हम उस तरीके से उसको लेके जाते हैं। अगर मैटर बहुत ज्यादा है, सीरियस है, और फिर हम पूरी इंक्वायरी कमेटी, पूरी ICC की कमेटी बैठती है, देन फॉर्मल इंक्वायरी कंडक्ट होती है। फिर उसके बाद हम अपनी जो भी हमारी रिकमेंडेशंस होती हैं या आफ्टर द फाइनल इंक्वायरी, देन इट गोज टू द VC ऑफिस फॉर द अप्रूवल।
0: ओके।
1: देन आफ्टर द रिकमेंडेशन देन द पनिशमेंट इज डिसाइडेड ऑन दोज रिकमेंडेशंस एंड देन द ऑफिस ऑर्डर्स आर इशूड फ्रॉम द हायर अथॉरिटी।
0: इस प्रोसेस को कितना समय लग जाता है
1: मैम? वी एक्चुअली हैव अ डेडलाइन ऑफ 90 डेज। हमें किसी भी इंक्वायरी को करने के लिए वैसे 90 डेज होते हैं, बट वी ट्राई टू काइंड ऑफ गिव जस्टिस, या हम किसी भी एक नतीजे पे कोशिश करते हैं कि हम 20 दिन, 15 से 20 दिन में आ जाए।
0: Okay.
1: तो थोड़ा सा ताकि, और इस अगर कुछ ज्यादा होता है तो उस बीच में हम एक रेस्ट्रेन ऑर्डर सा इशू कर देते हैं, जो भी रिस्पोंडेंट होता है उसके लिए।
0: क्या कभी ऐसा होता है कि, या ये प्रावधान है कि कोई चाहता है कि उसकी जो आइडेंटिटी है, जो पहचान है, वो रिवील ना हो, ऐसा होता है?
1: ICC के जितने भी मैटर्स होते हैं, जो भी ऐसा कुछ होता है वो बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल होता है। कभी भी किसी कंप्लेनेंट की आइडेंटिटी अपनी ICC की तरफ से कभी भी रिवील नहीं होती है, कहीं पे भी नहीं जाती। हम जब कभी भी कंप्लेन भी भेजते हैं या UGC में जब हम डेटा भी भेजते हैं, तो उसमें भी सारा मास्ट होता है। कंप्लेनेंट का नाम और रिस्पोंडेंट का नाम कहीं जिक्र नहीं होता, इट इज ओनली द ऑर्डर नंबर या केस नंबर के नाम से। तो इट इज एवरीथिंग इज कॉन्फिडेंशियल।
0: ठीक है मैम, कोई ईमेल आईडी जो आप यहाँ जिक्र करना चाहें, कोई ब्लॉक जहाँ ये ऑफिस है?
1: ICC पे अगर कंप्लेन आप डायरेक्ट डालते हैं, वैसे शारदा यूनिवर्सिटी में ग्रीवेंस पोर्टल है, एक ग्रीवेंस पोर्टल के अंदर भी ICC प्लेटफॉर्म है, तो आप वहाँ पे भी डाल सकते हैं। नहीं तो ICC की एक मेल है icc@sharda.ac.in, तो डायरेक्टली कंप्लेन आप उसमें भी भेज सकते हैं।
0: ठीक है,
1: जिसमें मोस्टली वही उसी के थ्रू ज्यादा आती है। और फिर जो इसका ऑफिस है, अगर आप मुझसे मिलना चाहें, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर का ऑफिस है ICC का, दैट्स इन डेंटल बिल्डिंग, सेकेंड फ्लोर, रूम नंबर 5।
0: ग्रेट। फाइनली मैम, चूंकि आप एक्सपर्ट हैं, आप प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं, बहुत सारे केसेस आप देखती हैं, जानती हैं, समझती हैं, तो मैं फाइनली एक संदेश आपसे लेना चाहता हूं अपने लिसनर्स के लिए। एक तरफ तो ये काम हो रहा होता है और जो मोरल बातें हैं उनको भी कहीं ना कहीं लोग याद रखें, तो एक मैसेज क्या होगा कि किस तरीके से ये कंप्लेंट्स कम हों, यहाँ तक लोग ना पहुँचें, हाँ, अगर कहीं कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो लिसनर्स नो डाउट कि आपको पहुंचने की बहुत जरूरत है। मेरा मानना तो ये है कि ये बातें हम जानते हैं, समझते हैं कि बड़ों का अदब करिए, अपने साथी का ख्याल रखिए, किसी से ऊंची आवाज में बात ना करिए, और जिस तरीके से मैंने कहा कि आप अपनी फैमिली का एक सम्मान रिस्पेक्ट चाहते हैं, जब आप किसी को रिस्पेक्ट देंगे तो मैं समझता हूँ कि नेचर भी आपके

0: कहीं कुछ गलत होने नहीं देगी, ये मेरा मानना सोचना है। तो मैम फाइनली आपकी तरफ से क्या मैसेज जाता है?
1: एक्चुअली देयर शुड बी जीरो टॉलरेंस फॉर सेक्सुअल हैरेसमेंट, इट इज द शेयर्ड रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ऑल। अगर हम सब मिलके इस चीज को समझेंगे तो कहीं पे किसी भी तरीके की कोई दिक्कतें इस तरीके से आएंगी ही नहीं। अगर हम आपस में ही जो एक जेंडर कम्युनिकेशन गैप है ना, उसको अगर हम फिल कर पाए वो बहुत जरूरी है। आप हम सोचें कि सब लोगों से हम अपनी तरीके से ही बात कर सकेंगे, सेम जेंडर हमारी चीज को उसी तरीके से एक्सेप्ट करेगा या अब्सॉर्ब करेगा, वो गलत है। अगर हम एक लेवल पे आके उनको भी समझें और उनके तरीके से बात रखें, जैसे कि सीनियर जूनियर एम्प्लॉयज में बहुत होता है,
0: जी जी,
1: सीनियर एम्प्लॉय है जूनियर है, फीमेल्स प्रॉब्ली अगर आप थोड़ा सा शाउट करते हैं वो नहीं एक्सेप्ट कर पाती है। तो अगर आप वो एक जेंडर गैप को समझेंगे ना तो आप उनको उसी तरीके से हैंडल करेंगे। और जब एक चीज ये चीज आपको आ जाएगी, बिकॉज हर चीज हर तरीके का कम्युनिकेशन सेम नहीं हो सकता, मेल्स हैव अ डिफरेंट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग, फीमेल्स हैव अ डिफरेंट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग, तो वो थोड़ा सा वो चीज को हम वर्क प्लेस में अगर अपना ले आए तो ये यहाँ पे खत्म।
0: वेरी गुड, वेरी गुड। यानी कि लिसनर्स, मैंने एक इशारा कर दिया है, नेक्स्ट टाइम ऐसी कुछ हम वर्कशॉप रखने वाले हैं मैम, और आप जरूर रखिएगा वर्कशॉप, और थैंक्स मुझे जरूर बोलेगा, गगन ने मुझे ये इशारा कर दिया कि जल्दी इस पर हम वर्कशॉप करेंगे ही करेंगे। तो मैं यही कहूँगा कि बड़े से बड़े मसले हल हो जाते हैं बात करने से, बात बनती है। मैम का इशारा यही है कि जो कहीं गैप आ रहा है, और आप अपने साथी को जानिए, समझिए उसे क्या अच्छा लगता है। जैसे आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं ना कि मेरा वो दोस्त है वो ये खाता है ये पीता है, उसको छोटी छोटी बातें अच्छी लगती है, छोटी छोटी बात वो नाराज हो जाता है, खफा हो जाता है, पसंद नापसंद का ख्याल रखेंगे तो बड़ी से बड़ी समस्या का हल हो जाएगा। वक्त का इशारा मुझे कह रहा है कि मैं आपसे अनुमति लूं, तो बस यही कहूंगा कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, खुशियों के साथ गुजारते चले जाइए। और मेरा फंडा यही है, अगर मैं इस बात का एक समअप करूं या निष्कर्ष निकालूं कि ना टेंशन लेने का ना टेंशन देने का, ये मेरा मंत्र है। क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि लोग टेंशन कहते हैं ना कि लेने का नहीं देने का, नहीं, हम कहते हैं कि ना टेंशन लेने का ना टेंशन देने का। मैम बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए और बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने हमारे लिसनर्स तक पहुंचाई, दिल की गहराई से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: सो लिसनर्स, आप थी हमारे साथ इंटरनल कंप्लेंट कमेटी यानी कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर आप आईसीसी से डॉक्टर एकता चौधरी। ये वार्ता, ये टॉक आपको कैसी लगी, 01204060205 पर आप हमें कॉल कर बताएगा। इसके अलावा 90.8 FM @sharda.ac.in पर भी आप हमें मेल कर सकते हैं, और जब भी आपको लगे कि शारदा यूनिवर्सिटी के रेडियो FM जाना है तो मुलाकात कर सकते हैं। वक्त का इशारा, मैं हो रहा हूं 9:11, अपना ख्याल रखिएगा, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन, सुनो शारदा 90.8 FM। टाटा बाय, नमस्कार, थैंक यू।

0: अपना उसकी चिंता सभी मुक्ति पाओ।
1: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
2: मैं 15-20 वर्षों से खेती कर रहा हूँ, मेरे पास 3 हेक्टेयर लगभग जमीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा हमें आर्थिक मदद करती है। सब 23-24 में खरीफ की फसल में 48,900 रुपए मिला। हमारे जो संपर्की किसान हैं, मैं उनको समझाऊंगा बताऊंगा, जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है ऐसे अन्य लोगों को भी हो।
3: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
4: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
3: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
0: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
6: बिल्कुल सोचा है पापा।
5: क्या सोचा है?
6: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
5: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
6: जी पापा।
5: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
6: हाँ पापा बिल्कुल।
7: The programs under Sharda School of Media.

0: हाय, मैं हूं रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। जिंदगी में तनाव बहुत ज्यादा है और हर कोई ये चाहता है कि तनाव से मुक्त आप रहें, हम रहें। यही एक वजह की बात हेल्थ की में आज हम बात करना चाहते हैं कि तनाव को कैसे दूर भगा सकते हैं। मैं समझता हूं, अगर आप एक अच्छी सी मुस्कान अपने ऊपर रख कर चलते हैं, धारण कर चलते हैं, तो निश्चित तौर पर आप तनाव से अपने आप को बचा कर रख सकते हैं। कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही है कि मुस्कान कितनी जरूरी है आपकी जिंदगी में। या यूं कहें कि आज का जो विषय है वो विषय है स्माइल प्लीज। बात करते हैं, मुस्कुराहट एक ऐसी दवा है जो इंसान को न केवल मुफ्त में मिलती है बल्कि ये उसके ज्यादातर शारीरिक और मानसिक रोगों के निदान में बहुत कारगर साबित होती है। मुस्कुराते रहने वाले मनुष्य की सेहत दुरुस्त रहती है और उसका मिजाज भी हमेशा बढ़िया रहता है। आइए जानते हैं मुस्कुराने के 10 हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। प्रतिदिन सुबह मुस्कुराहट के साथ उठना, नई ऊर्जा से भरकर अपने दिन का स्वागत करना प्रसन्नता से जीवन जीने का सर्वोत्तम धन है। नंबर 2, मुस्कुराने से हमारा मन अपने आप ही चिंताओं से मुक्त हो जाता है और मन को एक आत्मिक सुकून मिलता है। नंबर 3, हंसी के ठहाकों के साथ तालियां बजाने से जीवन में उत्साह का संचार होता है तथा जब हम तालियों के साथ हंसी का व्यायाम करते हैं तो शरीर की सुप्त अवस्था में रहने वाली कोशिकाएं भी जागृत हो जाती हैं, जिससे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 4, मुस्कुराना कई रोगों की अचूक औषधि है। ये एक ऐसी दवा है जिसका हमारे शरीर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नंबर 5, मुस्कुराते रहने से मनुष्य का इम्यूनिटी सिस्टम सक्रिय होता है। इससे प्रकृति किलर सेल्स में बढ़ोतरी होती है जो वायरस जनित रोगों और ट्यूमर सेल को खत्म करने का कार्य करती है। मुस्कुराहट या दिल खोलकर हंसना हृदय के लिए एक सर्वोत्तम व्यायाम है जिसे टी सेल की संख्या में बढ़ोतरी होती है। नंबर 7, मुस्कुराने से एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोब्यूलिन ए की मात्रा बढ़ती है जो श्वसन नली में होने वाले इन्फेक्शन से बचाव करती है। मुस्कुराने से तनाव को जन्म देने वाले हार्मोन्स का स्तर घटता है। पाचन तंत्र सही रखना, वजन घटाना और चर्बी कम करने में भी हंसी अहम भूमिका निभाती है। जोर से हंसने या मुस्कुराने से हमारे शरीर में एक तरंग सी दौड़ जाती है जिसमें एंड्रोफिन हार्मोन भी होता है जो प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर का दर्द निवारक है। ये शरीर में स्फूर्ति बढ़ाने और स्वस्थ बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। नंबर 9, मुस्कुराने से मस्तिष्क के दाएं और बाएं दोनों भागों की सक्रियता बढ़ती है जिससे आपकी मेमोरी शार्प होती है। मुस्कुराना एक ऐसी संजीवनी बूटी है जो मनुष्य की मनोस्थिति को बदलकर उसे खुश रहते हुए जीने का अंदाज सिखाती है। हमेशा मुस्कुराना एक सकारात्मक भावना है जिसमें व्यक्ति को ऊर्जावान और शांतिपूर्ण बनाने के सभी तत्व उपस्थित रहते हैं। जैसे उदास एवं मुरझाया हुआ चेहरा किसी को भी नहीं भाता है तो वही एक मासूम बच्चे की खिलखिलाती सी मुस्कुराहट हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, क्योंकि मुस्कुराना एक ऐसा एहसास है जो मन को सुकून प्रदान करता है। अतः हमें ये बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि मुस्कुराने के लिए कोई दिन कोई समय तय करने की जरूरत नहीं है। बस हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कान कायम रखिए और सेहतमंद बनने के साथ साथ दूसरों को भी सेहतमंद बने रहने में काफी मदद कीजिए। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
2: भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
3: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
4: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
5: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
3: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: हाय, मैं हूँ नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: तुम्हारी सरकारी नौकरी पक्की हो गई है।
3: अरे मम्मी सरकारी नौकरी लग गई।

0: भाई, भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
0: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
2: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
1: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: सफाई ही आधा ईमान है, यानी स्वच्छता में ही ईश्वर का वास है। और ये भी तय है, स्वच्छ रहकर ही हम तमाम बीमारियों को मात दे सकते हैं। कैसे, कब कब हाथ धोने चाहिए, चलिए ये हम आपको बताते हैं। खाना बनाने से पहले, खाना खाने से पहले, बच्चों को खाना खिलाने से पहले, शौचालय के प्रयोग के बाद, बच्चों के मल को साफ करने के बाद, बाहर से आने के बाद, पशु को छूने और उनके मलमूत्र को साफ करने के बाद, खांसने और छींकने के बाद साबुन और साफ पानी से अपने हाथों को धोएं और हर बार हाथों को कम से कम 40 सेकंड तक धोएं। हमारा भविष्य हाथों में है, हम साथ मिलकर आगे बढ़ें। यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी। शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: होके भी दूरियां रहिंदियां ने, कुछ मोहब्बतां अधूरियां रह के भी पूरियां रहिंदियां ने।
1: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
2: The world is here.

0: सुबह 45 मिनट योग करने से बीमारियां दूर रहती हैं और आप स्वस्थ रहते हैं। योग एक ऐसा विज्ञान है जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत उपयोगी है।
1: आओ करें सब योग।
2: आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: सुना शारदा 90.8 FM
1: ब्यूटीफुल सॉन्ग्स इंकलाबी जिद्दी फ्रॉम द मूवी गांधी टॉक्स और इसको धुन से सजाया है AR रहमान वोकल्स श्रेया घोषाल लिरिक्स कुमार ऑल योर सुनो शारदा 90.8 FM इंकलाबी

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: हाय, नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स हैं, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज़ पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रैवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: कम एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, व्हिच मेक्स यू इंडस्ट्री रेडी।
0: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरक्षा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: सो वेयर आर यू, द वर्ल्ड इज हियर at Sharda University।
0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है, और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
3: The world is here।

0: हाय, मैं उरन विजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
3: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
4: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
5: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
0: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
2: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।

0: Sharda School of Media, Film and Entertainment is a temple of creativity. यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें। इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज़ पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो? तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: कम एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट व्हिच मेक्स यू इंडस्ट्री रेडी।
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुनो शारदा 90.8 एफएम कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: सो वेयर आर यू? द वर्ल्ड इज हियर at Sharda University.

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: Papa कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
1: बिल्कुल सोचा है पापा।
0: क्या सोचा है?
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
0: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
1: जी पापा।
0: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
1: हाँ पापा बिल्कुल।
2: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
3: So where are you? The world is here at Sharda University.
4: Hi, मैं हूँ रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा at 90.8 FM.

0: FM नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।

0: महामारी के दौरान स्वच्छता का महत्व और बढ़ जाता है। महामारी के दौरान स्वच्छता के लिए आप विविध साधनों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि पैड, टेम्पू, महामारी कप या साफ कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: यदि आप पैड का उपयोग करते हैं तो उसको जितना हो सके उतनी बार बदलें। दिन में कम से कम 2 से 3 बार पैड को बदलना चाहिए।
0: महावारी में सबसे अच्छा संभावित विकल्प महावारी कप है, जिससे पर्यावरण भी प्रदूषित नहीं होता है।
1: महावारी कप सैनिटरी पैड और टैम्पोन के मुकाबले 5 गुना ज्यादा खून की मात्रा को एकत्र कर सकते हैं।
0: महावारी कप बैक्टीरिया के संक्रमण के जोखिम को कम करता है।
1: इसका दोबारा प्रयोग भी किया जा सकता है, इसमें खर्च भी कम होता है।
0: महामारी के दौरान साफ कपड़े का भी प्रयोग किया जा सकता है। एक साफ कपड़े को मोड़कर पैंटी में रखें। प्रयोग के बाद उसे साबुन और पानी से अच्छे से साफ करके धूप में सुखाएं।
1: प्रयोग किए गए कपड़े को छूने से पहले हाथों पर दस्तानों या प्लास्टिक की थैली को हाथ में पहन लें।
0: गंदे कपड़े का 1 हिस्सा क्लोरीन और 9 हिस्सा पानी के घोल में कम से कम 20 मिनट तक भिगो कर रखें। अगर क्लोरीन नहीं है तो कम से कम साबुन के पानी में 20 मिनट के लिए भिगो कर रख दें। पानी में साबुन की सही मात्रा को सुनिश्चित करने के लिए देख लें कि पानी को घोलने और हिलाने पर उसमें बुलबुले हों।
1: हाथों पर दस्तानों या प्लास्टिक की थैली को हाथ में पहनकर गंदे कपड़े को सामान्य तरीके से साबुन और पानी से साफ करें।
0: साफ किए गए कपड़े को धूप में सुखाएं। बचे हुए साबुन के पानी को फेंकने के लिए गड्ढा खोदकर उसमें डाल दें।
1: अपने हाथों से दस्ताने या पॉलिथीन को निकाल दें और हाथों को पानी और साबुन से अच्छे से धो लें।
0: महामारी संबंधी अधिक जानकारी के लिए नजदीकी ANM या आशा से संपर्क करें।
1: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
2: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: अरे भैया रामू।
2: हाँ भैया श्याम।
1: बड़े ढीले ढीले लग रहे हो, क्या हाल?
2: अरे भैया श्याम, हाल बेहाल है और ये पथरी का दर्द है, निकलवानी है और जेब भी खाली है।
1: बस इतनी सी बात? चल ग्रेटर नोएडा के शारदा अस्पताल मेरे साथ, जहाँ छोटी मोटी सर्जरी सिर्फ 2,500 और बड़ी सर्जरी सिर्फ 6,000 रुपए में हो रही है।
2: अच्छा तो भैया लेके चल, अभी चल।
3: तो अभी चलो।
0: अगर आप भी हैं ग्रामीण और गरीब तबके से, तो ग्रेटर नोएडा का शारदा अस्पताल दे रहा है अच्छे इलाज का वादा। छोटे ऑपरेशन के 2,500 और बड़े ऑपरेशन के मात्र 6,000 रुपए। मरीज को बस देना होगा इम्प्लांट और सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले सामान का खर्च। अधिक जानकारी के लिए 7428292462 या फिर 9803742732 पर संपर्क करें।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनोशादा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। मैं आज हम बात करने जा रहे हैं कि सर्दियों में ठंडे पानी से नहाने के आश्चर्यजनक फायदे। तो एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडे पानी से नहाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, परिसंचरण में सुधार होता है, मांसपेशियों की रिकवरी में मदद मिलती है, चयापचय में वृद्धि होती है, मूड में सुधार होता है और नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है। ये त्वचा और बालों के स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद हो सकते हैं।

जाने देता है। गर्म स्नान की बात करें तो ये ठंडे स्नान के प्रभाव को उलटते हुए रक्त को त्वचा की सतह की ओर ले जाने का कारण बनता है। ठंडे पानी से नहाने से धमनियों को मजबूत बनाने और रक्तचाप को कम करने में मदद मिल सकती है। इस प्रकार आप जीवन भर फिट और फाइन रह पाएंगे। ये आपकी त्वचा और बालों के लिए बहुत अच्छा है। ठंडे पानी से नहाने से क्यूटिकल्स और पोर्स टाइट हो जाते हैं, जिससे वो बंद होने से बच जाते हैं। ये त्वचा और स्कैल्प में छिद्रों को भी सील कर सकता है, जिससे बाहरी गंदगी शरीर के अंदर नहीं जा पाती। विषय है अब इसी के अंतर्गत बात सामने आती है कि ठंडा पानी इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। कैसे, तो बात समझते हैं। यदि आप ठंडे पानी से स्नान करते हैं तो सफेद रक्त कोशिकाओं का प्रतिशत अधिक होगा और उच्च चयापचय दर होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि ठंडे स्नान के दौरान शरीर खुद को गर्म करने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया में सफेद रक्त कोशिकाओं को छोड़ने और प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करने की प्रवृत्ति होती है। ये तेजी से मांसपेशियों को ठीक करने में सहायता करता है। तो एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडा पानी मांसपेशियों की अकड़न को दूर करने में मदद करता है। ये कोल्ड कंप्रेशन जैसा है। तो बात ये भी सामने आती है कि ठंडा पानी डिप्रेशन से निपटने में मदद करता है। इसके अंतर्गत एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडे पानी का हमारे शरीर

0: इसी से हटकर थोड़ा एक विषय हम जानना चाहते हैं कि अक्सर हम सुबह सुबह गुनगुना पानी पीते हैं, क्या ये पानी पीना चाहिए या नहीं। एक अच्छा विषय। तो इसके अंतर्गत सामने आती है बात कि गुनगुना पानी पीने से शरीर डिटॉक्सिफाई होता है, जो कोलेजन के उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ साथ ये त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद करता है। सर्दियों के मौसम में मोटापे की समस्या से निजात पाने के लिए आप रोजाना गुनगुने पानी का सेवन करें। गुनगुना पानी पीने से मेटाबॉलिज्म तेज होता है, जिससे फैट को तोड़ने में मदद मिल सकती है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुरुशादन 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।
1: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार और स्वागत है आपका टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में। आज के सब्जेक्ट को ध्यान से सुनिए और टीबी को हराने में मदद कीजिए। टीचर जी,
2: जी
1: प्लीज कैरी ऑन।
2: थैंक यू सर। आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स में जीरो लापरवाही। टीबी की जांच में देरी ना करें, बलगम की सही जांच कराएं। टीबी की दवाइयों के कोर्स को नियमित रूप से लें, नहीं तो इलाज मुश्किल हो जाएगा।
1: तो मतलब इस क्लास का सार है, लापरवाही करना टीबी से सिर्फ आधी लड़ाई जीतना।
2: यस सर, बिल्कुल करेक्ट।
1: तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़े। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
3: हाय, दिस इज शालमली खोलगरे एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग

फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in। The world is here.

0: हाय, मैं हूं रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सेहत सही लाभ कही और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर। जैसा कि आप जानते हैं, सुनो शारदा 90.8 FM और स्मार्ट मिलकर के एक स्वास्थ्य जन जागरूकता मुहिम चला रहे हैं जिसका नाम है सेहत सही लाभ कही, ताकि हमारे जो समुदाय के लोग हैं वो सब जागरूक रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपने देश की तरक्की में अपना योगदान दें। और आप सभी जानते हैं इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है और ऐसे में बीमारियां भी होती हैं, तो कौन कौन सी चीज़ें हमें खाने चाहिए, कैसे बचना चाहिए, क्या बीमारियां हो सकती हैं, तो इन सब बातों की जानकारी के लिए आज हमारे साथ में हैं डॉक्टर R.K. शर्मा जी, उनसे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है।
2: धन्यवाद
1: डॉक्टर साहब। गर्मी का मौसम है, गर्मी पड़ रही है, चिलचिलाती धूप है, तो किस तरह से लोग अपना इस मौसम में ध्यान रखें?
2: इस मौसम में सबसे पहले ये कि धूप में काम कम से कम करें, सुबह शाम

0: बेलपत्थर का जूस या जो भी जूस लेकर चल सकते हैं वो लेकर चले इंसान, ताकि बीच में कहीं उसे पी सकें।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, वो गर्मी हो या मौसम ख़राब हो, जो काम करने वाले उनको तो अपना काम करना ही है, जाना ही है,
0: काम बहुत ज़रूरी है, काम बिना तो कुछ नहीं है।
1: तो काम पर जो लोग जाते हैं, खास करके जो शारीरिक परिश्रम करते हैं, तो उनको कैसे अपना ध्यान रखना चाहिए?
0: उनको यही सिर पर कपड़ा रखना है हर समय
1: जी।
0: दूसरा ये कि कम से कम जो है मतलब ऐसे ही समझ लीजिए, देखें बहुत ज़्यादा चीज चलाती है, धूप है, दो घंटे का टाइम, एक बजे से लेकर 3 बजे, उस समय थोड़ा सा जो है कम काम करें या रेस्ट।
1: और
0: सुबह बहुत जल्दी से काम कर सकते हैं, शाम को देर तक काम कर सकते हैं, उस समय थोड़ा ठंड रहती है, गर्मी में जो है सब ज़्यादा परेशान रहती है।
1: तो आपके कहने का मतलब ये है कि जो काम है उसको, जो मौसम ठंडा ठंडा होता है थोड़ा, तो उसी में निपटा दें, और जो धूप होती है
0: उसमें आराम करें,
1: उसमें आराम करें।
0: जगह मिल जाए, अपना लेबर है तो अपना कहीं पेड़ है कुछ है या शेड है, कहीं भी किसी तरह की जगह उनको मत करना।
1: तो डॉक्टर साहब, ये तो बात रही कि धूप से गर्मी से कैसे अपना बचाव कर सकते हैं, अब ये जो मौसम होता है ना, बीमारियां भी हो जाती हैं, तो कौन कौन सी बीमारियां ज़्यादा होती हैं इस मौसम में?
0: खासतौर से जो है आपको एक तो उल्टी दस्त आते हैं, दूसरा बाजार का खाना पीना कहीं खा लिया, कोल्ड ड्रिंक पी ली तो गला खराब हो जाता है, पेट खराब हो जाता है, उससे लूज मोशन हो जाते हैं, तो बचाव करें। बाजार का खाना कम से कम ना खाएं तो अच्छा है, और यदि बहुत ज़्यादा मजबूरी है तो बहुत हल्का या कम खाएं।
1: तो जैसे आपने बताया कि दस्त की बीमारी हो जाती है, उल्टी की बीमारियां भी हो जाती हैं,
0: हीट स्ट्रोक
1: हो जाता है,
0: बुखार आ जाता है,
1: बुखार भी आ जाता है, अब बच्चों में जैसे डायरिया भी होता है, तो इसके क्या कुछ कारण हैं?
0: डायरिया का भी मेन कारण है धूप में, यदि घर में रहते तो नहीं होता था, लेकिन बाहर के आना जाना रखते हैं, औरतें हैं बच्चों को लेकर के रिश्तेदारी में आना जाना कर रही हैं, और धूप में गर्मी में है तो उनको उल्टी दस्त के ज़्यादा चांस है।
1: तो जिन बच्चों को मान लीजिए डायरिया हो गया है, कभी ऐसा देखा जाता है उल्टी भी है और उसको
0: लूज मोशन
1: भी है, तो किस तरह से इस बीमारी पर

0: लिए एंटीबायोटिक देनी पड़ सकती है, इन्फेक्शन नहीं है पेट में ज़्यादा तो खाली जो है दूध में उसी के लिए उसको टैबलेट वगैरह या लिक्विड नहीं दे सकते।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है कि बहुत दूर दराज में कोई रहते हैं, मान लीजिए रात में ये दिक्कत हो गई या वो डॉक्टर साहब के पास जा नहीं सकते उस दौरान, तो उस दौरान वो क्या कुछ उपाय अपना सकते हैं ताकि

0: हर गांव में एक आध कहीं ना कहीं स्टोर है, तो वहाँ से उल्टी की दवा तो ले ही सकते हैं।
1: तो डॉक्टर साहब, जैसे अभी आप ORS की सिफारिश बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए क्या चीज़ है ORS?
0: एक जीवन रक्षक घोल है जी, और खाली दस्त उल्टी के लिए नहीं, ये किसी भी हीट स्ट्रोक में, गर्मी के समय में, या आप तो देख रहे हैं कि हमें थकान भी हो रही है, कहीं पर कमजोरी महसूस कर रहे हैं, तब भी ORS का घोल देता काम।
1: तो कहने का मतलब आपका यही हो गया कि अगर मान लीजिए कोई हमें बीमारी भी नहीं है गर्मी के मौसम वाली,
0: तब भी
1: हम उसको ले सकते हैं। अच्छा, हम जानना चाहेंगे कि अगर कोई अपने आप को स्वस्थ रखना चाहता है कि भाई हम अपने

0: आखिर में हमारे जो सुनने वाले हैं श्रोता हैं उनके लिए क्या संदेश देंगे?
1: गर्मी से बचें, थोड़ा सा कम हो सकता है जितना हो सकता है, जिन्हें का काम बंद कर दें, बाहर का बाजार का खाना कम से कम खाएं, बहुत ही मजबूरी में बाहर का खाना खाएं, घरेलू लिक्विड जो मट्ठा हो, कोई मैंगो का जो आजकल जैसे पना बना लेते हैं वो ले लो, बेल पत्थर का जूस ले लो, ORS का पानी ले लो, ये घर से लेकर चलें और घर से एक बोतल पानी भी लेकर चलें।
0: बिल्कुल डॉक्टर RK शर्मा जी, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी है रेडियो के माध्यम से, और हमारे जो सुनने वाले हैं समुदाय के लोग हैं ज़रूर आपकी बातों का ध्यान रखेंगे और जो भी

0: 90.8 FM नए अंदाज में
1: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारनकू ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।

7 ईयर्स भी कभी कभी देखने में आया है, तो काफ़ी सालों के बाद ये केसेस रिपोर्ट होते हैं। और हाथी पाँव, जैसा कि आप लोगों ने देखा भी होगा कि पैरों में सूजन, लिम्फ नोड्स से प्रभावित हो जाते हैं, एलिफेंटियासिस

और अगर हम व्यक्तिगत स्तर पर बात करें तो इन जगहों की

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: इतना बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
1: बिल्कुल सोचा है पापा।
0: क्या सोचा है?
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है, और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
0: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
1: जी पापा।
0: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
1: हाँ पापा बिल्कुल।
2: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
3: So where are you? The world is here at Sharda University.